जिसे प्यार शिकवा दीवाना है दीवाना।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

उनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ और हमारा आज का विषय है योग। हाँ, योग क्या है? हाँ, तो आज योग के बारे में ही हम बातें करते हैं। ऐसी तो प्रकृति के बने हुए बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन सबका रिलेशन कहीं ना कहीं है। जैसे प्रकृति के बने हुए सभी पदार्थ के परमाणुओं के समूह के बने हैं, यद्यपि हमें इन आंखों से ऐसा प्रतीत होता है मानो वैज्ञानिक बताते हैं कि ये परमाणु गतिमान है, स्थिर नहीं है। इस दृष्टिकोण से हर एक मानव देह भी असंख्य परमाणुओं से बनी है और वे जो है एक तीव्र गति से हाँ प्रकंपित हो रहे हैं। यूं मानिए कि परमाणु स्वयं ही अपने से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, न्यूट्रॉन आदि अंशों से बने हैं। परंतु हम मोटे तौर पर अगर ये मान लेते हैं कि जितने भी शरीर हैं वे अग्रणी परमाणु ही के बने हैं, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे भी इस नियम का अपवाद नहीं है। उनके शरीर भी हमारी देह ही की भांति परमाणुओं के समूह थे। देखने को तो शरीर की एक ही अविच्छिन्न सत्ता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में यह छिछला सा है और परमाणुओं के बीच असंख्य अत्यंत न्यून रिक्त

स्थान है तथा ये परमाणु गतिमान है। अतः किसी भी दैहिक आकृति पर, चाहे वह किसी देवता की आकृति हो या किसी महान पुरुष की, एकाग्र करना निरर्थक है, क्योंकि उनका शरीर एक है ही नहीं, वह तो असंख्य परमाणुओं का बना हुआ है। पुनश्च वे परमाणु तो स्वयं भी अस्थिर है, चंचल है, गतिमान है। अतः जो भी जो चंचल है वह अनिल पर मन की एकाग्रता कैसे हो सकती है? हाँ, योग का मतलब समझ में आना और योग लगाना। अगर हम चाहते हैं कि हम किसके साथ योग लगाएं, अगर हमें इसके भी समझ नहीं है तो योग का मतलब क्या है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे आकर फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आगे की चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है योग। यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकृति के बनाए हुए जितने भी सभी पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील हैं। हाँ, वे क्षण क्षण पल पल घटते बढ़ते हैं या बदलते टूटते रहते हैं। ये सभी क्या है, नश्वर है। अंत में क्या होता है, वे इस रूप में न रहकर नष्ट हो जाते हैं और उनके तत्व अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं। आज किसी शिशु का शरीर छोटा है तो एक वर्ष के बाद वह बड़ा हो जाएगा। आज यदि कोई देह पतली है तो दो वर्ष के में भी वो मोटी हो सकती है। इस प्रकार जो सदा परिवर्तनशील है और आखिर नश्वर है आखिरी में, तो उसी आधार बनाकर योग साधना का क्या अर्थ है, उससे योग कैसे लगा सकते हैं? योग तो मन के जो स्थिर अथवा बुद्धि को अपने ही लक्ष्य में स्थिरता का नाम है। अतः योग तो उससे लगाना है चाहिए जो स्वयं स्थिर है वो, वरना परिवर्तनशील हो जाएगा। तो हमारा योग का मतलब क्या होता है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं मनुष्य का जो रहन सहन है, हाँ, वो जीविकोपार्जन जो है, उनके साधन जो भी रहने की बहुत तीव्र गति से बदलते जा रहे हैं। विज्ञान के इस तीव्र वेगी जो विकास के मनुष्य हैं, वो भौतिक सुख सुविधा और मनोरंजन के अनगिनत साधन दिए हैं। फलतः मनुष्य जो है वैज्ञानिक साधनों पर अधिक निर्भर करने लगा है। उसकी आवश्यकताएं तथा प्रलोभन के विषय भी अधिक बढ़ गए हैं, जिससे उसके जो मस्तिष्क पर अभूतपूर्व दबाव है, इस दिमागी थकावट के हालत जो है में मनुष्य क्या कर सकता है, दैनिक कार्यों में जो निर्णय लेता है वे भी ऐसे त्रुटिपूर्ण होते हैं कि वे उनसे और समस्याएं खड़ी हो जाती है तथा वह और उलझ जाता है। यह हाल न केवल मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से है, बल्कि आज देश विदेश अंतर्देशीय में भी स्थित है। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि योग लगाना किससे है, योग करना किससे है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान और अतीत में सबसे जो मुख्य अंतर यह है कि आज हर मानव के मन में तनाव सा बना हुआ है और शहरों का भी यही हाल है। शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहर चारों ओर जो है चारों ओर फैल रहे हैं और इनमें

मोटर कारों की ओंपों और धूं, कारखानों की जो खड़खड़, स्कूटरों की आवाज इत्यादि जो है कर्कश ध्वनि, और बड़े बड़े बाजारों में अनियंत्रित भीड़ का ऐसा शोर है जो मनुष्य की नस नस नाड़ियों में इतना बुरा प्रभाव डाल रहा है कि वह सारा दिन चिड़चिड़ापन और थकावट अनुभव करता है। पहले ना तो कभी इतने बड़े शहर थे, ना यातायात के ऐसे मतलब साधन थे, ना इतने कारखाने थे और ना ही इतना शोर था। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए कुछ सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योग। योग की जो अभिलाषी है वो कहते हैं हम आत्मा का परमात्मा से मिलन मनाना चाहते हैं। उनकी यह अभिलाषा सच्ची और सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसके लिए साथ ही उन्हें क्या करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए कि परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है। आज बहुत से लोग हैं, हाँ आज बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा है, इच्छा रखते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि वे दोनों तो एक हैं। एक ओर तो वे परमात्मा को शिव मानते हैं और दूसरी ओर शिवोहम कहते हैं, तो इसका स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार उनके अपने ही मंतव्य परस्पर विपरीत हैं। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर प्रभु मिलन कैसे कर सकते हैं? मिलन तो किन्हीं दो में होता है ना, किसी संबंध के आधार पर होता है। मिलन का अपना एक विशेष जो है सुख होता है। जब कोई बिछड़े हुए प्रेमी मिलते हैं, हाँ, तो उनके हृदय भी उनसे मिलकर अपने में गदगद

के साथ अपने संबंध से उत्पन्न सहज स्नेह अथवा वात्सल्य के कारण ही उसकी सेवा में, उसके पालन पोषण में लगी रहती है। सखा अपने सखापन के संबंध के कारण ही अपने दिल का सारा हाल बता देता है, जो वह अन्य जनों से गुप्त रखता है। पति पत्नी के साथ अपने विशिष्ट संबंध के कारण ही उसे अपना स्नेही भाजन बनाता है तथा उसके लिए वस्तु वस्त्र की व्यवस्था करने में जुट जाता है। इन संबंधों के कारण ही मनुष्य सर्दी गर्मी निंदा स्तुति भूख प्यास आदि को सहन करता है। ये संबंध ही मनुष्य में एक दूसरे के लिए उत्सर्ग एवं सेवा की भावना पैदा करते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो हमारा आज का विषय है योग। यहाँ पर सभी जानते हैं, अध्यात्म में ये भी कहा जाता है कि ये जाना बहुत आवश्यक प्रश्न है कि परम आत्मा के साथ आत्मा का क्या संबंध है। यह मालूम होने से विषय का महत्व ठीक समझ में आता है। हर एक योगाभिलाषी को मालूम होना चाहिए कि परमात्मा आत्मा का परम पिता है, वह उसकी माता भी है, उसका शिक्षक और सदगुरु भी है। आत्मा चिरकाल से उससे इछड़ी हुई है। अब क्या अपने उस सर्व संबंधों से मिलन मनाना ही तो योग है? स्वयं ही को शिव अथवा

आत्मा ही को परमात्मा मान लेना तो योग का विपरीत भाव है। हाँ, परमात्मा के साथ अपना संबंध मनाने में, हाँ अपना संबंध जो मानते हैं, हाँ संबंध ही को मानने से ही उसके प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होता है, और प्रेम ही तो मन को मग्न करने एवं जोड़ने का साधन है। अतः हर एक योगाभ्यासी जो होते हैं, हर एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस सत्यता का मनन करते हुए इस भाव में, हाँ इस भाव में लवलीन हो कि परमात्मा हमारा परम प्रिय परम पिता है, वह हमारी ममता भरी माँ है और वही हमारा परम मित्र भी है तथा अविनाशी शिक्षक और सद्गुरु भी है। परमात्मा के साथ हाँ माता पिता का संबंध होने से ही तो हमें उनकी ईश्वरीय संपत्ति पवित्रता और शांति आदि की प्राप्ति होगी। उसके साथ शिक्षक विद्यार्थी का संबंध जोड़ने से ही तो हमें उससे क्या होगा, ईश्वरीय विद्या का लाभ होगा और मार्गदर्शन मिलेगा, हाँ तथा गति और सद्गति प्राप्त होगी। इन संबंधों के प्यार में हाँ बगे रहना तथा इनकी याद बरस लेते रहना ही योग है। तो हम समझते हैं योग का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध, परमपिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जब जुड़ता है तो यही होता है योग। तो आज का कार्यक्रम हम इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

man maler. Lad på bare derne. Dream का पौधा फलता फूलता है, जीवन का सफर सुखद बन जाता है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार

0: किया होगा, 10 बार किया होगा, 10 लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। रिश्तों को जब नए नजर से देखा, नए अंदाज से देखा, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो ये कि जब भी एक रिश्ते में हम हैं तो उसमें जो मुझे चाहिए उसे अगर मैं देना शुरू कर दूं तो वो मुझे ही मिलता है सबसे पहले, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे वो खुशी की बात है। और जब भी हमने अगर पिछली कड़ी को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि जब हम झगड़ा हो रहा होता है या नाराज हो रहे होते हैं, एक सेकंड अगर हम रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ही होकर गुजर रहा है जो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं या वो हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, बेसिकली वो खुद दर्द में है। उनके उस दर्द को अगर मैंने अंदर ले लिया या मैंने अपने अंदर क्रिएट किया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, तो मैं खुद दर्द में चला जाता हूं और मैं तब तक किसी और की मदद नहीं कर सकता अगर मैं स्टेबल नहीं हूंगा। ये तो बात बहुत क्लियर सामने आई थी और हमने हर बार की तरह कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करके देखें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रिश्तों को उस नजर से देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कुछ खालीपन है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अगर पिछली कड़ी को थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशंस थी, सिचुएशंस बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं। अभी तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसलिए सिचुएशंस मुश्किल नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम उन सिचुएशंस में होते हैं और हम में से हर कोई उससे दो चार हो रहा है, चाहे वो सुबह घर से निकलते वक्त है या शाम घर पहुंचते वक्त है, एक्चुअली देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस पूरा जो होता है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम वो दर्द को लेना चाहते हैं या हम उस पर स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा हम और उसके ऊपर जाएंगे कि आप हमें हमारे से बात करें।
1: यू जस्ट सेड दैट द होल प्रोसेस इज वेरी पेनफुल। प्रोसेस इज नॉट पेनफुल, आई क्रिएट पेन व्हाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस। सो दैट्स द ओनली शिफ्ट जो चाहिए। अभी तक हम कहते हैं प्रोसेस इज पेनफुल, सिचुएशन इज डिफिकल्ट, chaotic, ये जो वर्ड्स भी है ना सिर्फ मतलब जो हमारी थॉट्स हैं, जस्ट क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थॉट्स मेक्स द होल थिंग वेरी बिग। सिर्फ यहाँ पर अगर एक शिफ्ट शुरू कर दे, प्रोसेस इज व्हाट इट इज। लाइक आपने कहा सिचुएशंस तो आनी है। अब जैसे आपने कहा सुबह उठकर जो सीन क्रिएट होता, लेकिन ये तो रोज होना है ना। रोज होना है। Either I withdraw from the situation, I can't do that. Either I try to change the situation, I can't
0: actually
1: do that.
0: We start doing these things, you know. Withdraw करके हम फिर चुप हो जाते हैं, हम फिर कहीं और अपना दिमाग लगाने लगते हैं, मतलब कहीं कहीं और शिफ्टिंग शुरू हो जाती है।
1: लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशंस। आप एक परिस्थिति से विड्रॉ करेंगे, एक रिलेशनशिप से विड्रॉ करेंगे, दूसरे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी जस्ट टीचेस अस, यस सिचुएशंस आर देयर, यस रिलेशनशिप्स कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग, फोकस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सिचुएशन अपने आप ठीक होती जाएगी। सिर्फ थोड़े दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपना फोकस अपने आप चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी मुझे ध्यान अपना रखना है, बस उतना करना है। जैसे बड़ी से बड़ी बीमारी में भी ध्यान किसका रखते हैं पहले?
0: अपना,
1: राइट? चाहे एक छोटा सा वायरस है या एक बड़ा सा एपिडेमिक फैल गया हो पूरे देश में, ध्यान किसका रखा जाता है? अपना, कि हम कैसे बचे। ये थोड़ी ध्यान रखा जाता है कि वायरस को कैसे रोका जाए। सो फोकस इज वेरी क्लियर। तूफान आया है, ध्यान किसका रखा जाता है? हम कैसे बचे। तूफान के साथ थोड़ी जाके लड़ते हैं बैठकर कि तूफान को रोकते, नहीं, हम कैसे बचे। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जबकि फिजिकल चीजों में हमारा फोकस हमेशा राइट होता है कि मुझे अपने को बचाना है, तो फिर इमोशनल में भी तो सेम ही करना। सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं एंड आपकी गाड़ी यहां से आ रही है, मेरी गाड़ी यहां से आ रही है, लेट्स से मे बी दैट आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, यू नो, बट व्हाट विल यू डू इफ आई एम ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड? आप क्या करेंगे?
0: मैं अपने आप को बचाऊंगी, यू नो।
1: तो इजंट दैट ऑलवेज द फोकस कि ठीक है, जो सामने वाला आ रहा है, ही और शी इज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, मुझे क्या करना है? आई डोंट वॉन्ट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, आई विल जस्ट डाइवर्ट, चेंज माई रूट, वट एवर। लेकिन जब रिश्तों में आते, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, सो वट डू आई डू? हैड ऑन कोलिजन, क्यों? क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, सो आई हैव टू कम एंड टेल यू दैट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड.
0: दूसरे को सुधारना भी तो कई बार हम जो सामने वाला गलत आ रहा होता है उसको गाली भी तो दे रहे होते कि देखो कहां.
1: लेकिन पहले क्या करते हैं?
0: पहले अपने आप को बचा देते हैं.
1: ऑलवेज पहले अपने को बचाना, पहले अपने को बचाना. अब वहां अपने आप को बचाते हैं ना कि कहीं मेरी गाड़ी को न लग जाए, कहीं मुझे न लग जाए. और यहां जो सारा दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां ये ध्यान नहीं रखते. वहां कहते हैं वो रॉन्ग साइड से आ रहा है तो मैं क्यों ना उसी साइड से जाकर मैं भी उसको बोल कराऊं. एंड देन कोलिजन. एंड ये जो कोलिजन सारा दिन हो रहे हैं कितना इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं. मुझ आत्मा पर भी इम्पैक्ट छोड़ते हैं और मेरी गाड़ी पर भी इम्पैक्ट छोड़ते हैं और रिश्तों पे तो इम्पैक्ट रहता है. तो सिर्फ एक फोकस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दिस फोकस. अब आप देखो वही सिचुएशन, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको इजिली क्रॉस कर जाएंगे जस्ट बिकॉज द अटेंशन इज आई हैव टू क्रॉस द सिचुएशन सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दर्द में जाकर कौन सी सिचुएशन क्रॉस की जाएगी? फिर तो वो सिचुएशन ही पेनफुल लगती है
0: एक्चुअली. और हर मॉर्निंग जो हम कहते हैं बार बार कर रही हूं मैं, वो बिल्डअप भी तो हो रहा होता है. वो उठते ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अब ये होगा और सीक्वेंस वैसे वैसे वैसे ही होने लगते हैं.
1: अब जहां तक ये मॉर्निंग सीन की बात आती, ये तो एक तूफान है जो पहले से ही पता है कि ये तो रोज ही वो सीन आता है. तो जबकि पहले से पता है कि ये परिस्थिति आती है, डोंट यू थिंक वी कैन प्रोग्राम आवर सेल्फ फॉर क्रॉसिंग इन द राइट वे? सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये एक एग्जाम है जो मुझे रोज देना होता है, तो इसको मैं अपने आप को तैयार करके दूं या रोज गुस्सा करके शोर मचा के? एंड उसके लिए मुझे एक ही चीज करनी है, एक दिन उसको आराम से क्रॉस करके देखना है.
0: इनफैक्ट और इसको मैं एग्जाम क्यों बनाऊं? एक्चुअली वो मैंने ही बनाया हुआ है बेसिकली.
1: एक्चुअली जितना हम दर्द में जाते हैं उतना हमें लगता है कि सिचुएशन बहुत बड़ी है. जितना हम स्टेबिलिटी से क्रॉस करेंगे हमें लगेगा सिचुएशन कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल एक सीन है जो रोज सामने आता ही है. सो इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल. जस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी.
0: यस, यू नो, इनफैक्ट यहां एक बात बहुत जरूरी सामने आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है और किसकी स्थिति. कोई भी सिचुएशन है रिश्तों में जब हम हैं, और रिश्ते कहीं पे भी हो सकते हैं, हम ऑफिस के भी रिश्तों की बात कर सकते हैं. हर रिश्ते में अब चेक सिर्फ ये करना है कि मैं क्या हूं, मैं किस सिचुएशन में हूं. वेरी गुड. इनफैक्ट इट विल बी टोटली फोकस ऑन माय सेल्फ. तो ये तो सिचुएशंस हो रही थी शिवानी जहां बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन जनरली भी रिश्ते बन नहीं रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई, ये जो विड्रॉल है इधर, मतलब आई डोंट वांट टू फेस, देयर इज नथिंग टू टॉक, आई डोंट फील रियली रियली कनेक्टेड, यू नो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है. यहां क्या करें हम? यहां फिर दूरियां इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो कहते हैं फिर कि उसके ग्रेविटी सर्कल से बाहर चला जाता है.
1: When we don't experience the connection with each other, it is because of three major reasons related to time. One is past. कि कोई past hurt है उस रिश्ते के अंदर, कोई past की बात है जो हर time सामने आकर खड़ी हो जाती है. तो जब भी अगर कोई ऐसे past की बात होती है तो हम एक barrier create करके रख देते हैं कि past में आपने मुझे hurt किया था
0: और वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है.
1: आपने कुछ ऐसा किया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था.

0: have let me down. You have done something which I disapprove of. You have offended me. You know, all this is you have done this. To jitna hum is tarah ke thoughts create karte, to hum ek andar ek story si bana lete hain apne rishte ko lekar. Aur is story ka jo, you know, prime scene hai, wo ye hai ki I am hurt. And mera hurt ka karan kaun hai? Aap. To kyunki maine ye ek scene because of a past incident. Incident could be very big. We're not denying that. Lekin maine wo past hurt ko pakad kar rakha hai. And wo dard mujhe abhi bhi mehsoos ho raha hai. And I hold you responsible for that hurt. To isliye jab bhi main aapke connection mein abhi bhi aati, I kind of have a barrier. Because pain is a barrier. Aur ye barrier jab beech mein aa jata hai, to energy will not flow. So we have to remember ke jo hamare past ki baatein hain, wo hamare present par influence karenge. Kyunki whenever I meet the person next, that past, ki past mein ye hua tha, I am not able to let it go.
1: Main bhulaun kaise? Bhul paana hi to possible nahi hai.
0: Sabse easy tarika bhulne ka fir se wohi mantra hai ki aapne mujhe hurt nahi kiya.
1: Maine khud create kiya hua ye hurt. आपने जो कुछ किया, स्पेशली अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ के
0: रिलेशनशिप, आई गिव अ सिंपल एग्जांपल. वन पेरेंट कॉल्स अप, कपल डॉक्टर हैं दोनों, एंड कॉल्स अप एंड सेज माय सन हैज लेट मी डाउन. 10th स्टैंडर्ड में सन है. सो व्हाट हैपेंड, एंड इट साउंडेड एज इफ पता नहीं बेटे ने क्या किया है. माय सन इज इन द 10th स्टैंडर्ड एंड ही इज हैविंग अ रिलेशनशिप इन स्कूल विद अ गर्ल. सेड ओके. Yes, fine. But it's a situation. Okay, maybe as a parent, aap us baat se approve nahi karte.
1: Maine usko itni freedom di. Maine itni independence di. Aur mere vishwas ko itne pata. I can actually write the script.
0: Now see, script. Yes, standard script ho gaya na hum sabka. Ab dekho, wo jo vicious cycle of thoughts shuru hota. You know, the parents said, मैंने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे, वो इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊं आपको सिस्टर, वो इतना अच्छा था. एंड इन दैट फोन कॉन्वर्सेशन ऑफ अबाउट 10 मिनट्स, 5 टाइम्स दैट ब्रदर सेड वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था. आई सेड था मतलब क्या? एंड देन ही जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज ही रियलाइज्ड व्हाट ही वाज सेइंग. आई सेड आर यू ट्राइंग टू से कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, एंड अब उसने कोई एक बात ऐसे कर दी है विच यू आर फीलिंग सो लेट डाउन, सो डिसअपॉइंटेड, कि नाउ व्हेन आई से वो इतना अच्छा था मीन्स कि अब वो अच्छा
1: नहीं है.
0: कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी?
1: पर वो मान ही रहे होंगे ना कि वो अच्छा नहीं है, बिकॉज आपने एक उनके उस पे उतरे नहीं, खरे नहीं उतरे हैं
0: किसी एक बात में ना. सो वी आर नॉट सेइंग, अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, कि दूसरा बिल्कुल वही करेगा जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग में.
1: पर मैं जीवन भर उसकी हर बात मानता रहा. मैंने उसको सब कुछ दिया जो उसने कहा, जो उसने मांगा, और वो इस तरह, मतलब वो.
0: सी, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से तो गलत ही नहीं कर रहा है. एंड एज अ पेरेंट, इफ यू डू नॉट अग्री विद व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू टॉक अबाउट इट. लेकिन वो कॉन्वर्सेशन के लिए भी एक एनर्जी चाहिए ना. एनर्जी तो चाहिए, एक कनेक्शन ही होगा ना. कॉन्वर्सेशन भी तो तब होगा व्हेन वी बोथ कनेक्ट. लेकिन जहां मैंने ये एनर्जी भेजनी शुरू कर दी कि आप इतने अच्छे थे, मैंने आपको इतने संस्कार दिए, आपने क्या किया उनका, इफ आई थ्रो दिस काइंड ऑफ एनर्जी एट यू, डू यू थिंक हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इसके बाद?
1: ओह नो, इनफैक्ट, और I can actually see a lot of parents doing it, you know, and they feel they are justified.
0: And this can be on small things or on little big things, but ye scenes to aane hi hai. This is a part of the parent child relationship. This is a part of the child upbringing.
1: In fact, yahan ek aur baat main aapse janna chahti hu. It's like about parent child only. Usually kya hota hai, 7th, 8th tak mother takes care of child's education usually. बच्चे के स्कूल से जुड़ी हुई या उसकी पढ़ाई की बात या उसकी, क्योंकि मे बी फादर जो है वो क्लाइंब कर रहा होता है अपने करियर में. जैसे ही 9th आता है, 10th आता है, हायर क्लासेस आ जाती है, विच आई हैव नोटिस्ड. हायर क्लासेस आते ही अब टेंशन शुरू हुई, अब ट्यूटर लगेगा, अब एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, अब करियर की प्रॉब्लम आएगी. फादर कम्स एंड टेक्स ओवर द एजुकेशन पार्ट. चाइल्ड डज नॉट इवन रिलेट टू द फादर. फादर इज नॉट इवन अवेयर कि बच्चे का मेरे पढ़ने का पैटर्न क्या है, उसको क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे वो पढ़ता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद सो मेनी पेरेंट्स. और यहां कॉन्फ्लिक्ट इतना मेजर होता है, तब बच्चे मेजर डिप्रेशन में.

0: ये तो है ही धोखे, यू नो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स ये जजमेंट्स पास कर दे
1: और हम अपनी पूरी जिंदगी उस पर ओ यस यू नो हम अगर और अपने अपने क्लोज रिश्तों में भी, इनफैक्ट हम अपने क्लोज रिश्तों में जितने जजमेंटल होते हैं ना उतने शायद बाहर कहीं नहीं होते हैं, और उनके साथ हम जीवन भी जी रहे हैं।
0: लेकिन जितना जितना हम जजमेंट्स पास करेंगे उतना एनर्जी फ्लो करना बंद हो जाएगी, देयर विल बी अ ब्लॉक नाउ बिकॉज मैंने जजमेंट ही पास कर दी, नाउ आई विल सी यू थ्रू दैट जजमेंट, तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? फ्री फ्लोइंग तो होगी नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो एक है पास्ट हर्ट, एक है प्रेजेंट आपका कोई बिहेवियर,
1: और इसमें बहुत आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंगली क्लियर नाउ कि स्पेशली अगर हम देखें सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज, और ये जो रिश्ते थे मामी चाची, ये जो सारे रिश्ते वो सारे ही क्लोज रिलेशन है, मुझे उनकी कोई एक चीज अच्छी नहीं लगी, मतलब कुछ एक बिहेवियर अच्छा नहीं लगा,
0: कोई ना कोई संस्कार
1: नहीं अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो वही है,
0: ये हो गया।
1: हाँ।
0: तो हमने अपने डिसलाइक पर एक जजमेंट पास
1: और कर। फिर मैं अच्छा देखने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों से वो पट्टी हटाना ही नहीं चाहती बिकॉज आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट माई डिसलाइक, यू नो दैट माई डिसलाइक इज राइट,
0: इज राइट, इट्स राइट, इट्स जस्टिफाइड, ये लेबल करेक्ट है जो मैंने लगाया है आपके,
1: इसलिए उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा अच्छा दिखाना भी चाहेगा, आई डोंट वॉन्ट टू हियर दैट।
0: अब एनर्जी कैसे फ्लो करे?
1: ओ यस, ब्लॉक, टोटल ब्लॉक।
0: सो बी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, मतलब फ्री फ्लोइंग एनर्जी, so that will not happen. So one is past hurt, dusra hai vartaman samay aapka vyavahar, aur teesra hai future threat. Aapse mujhe kuch ek feeling aati hai of insecurity, to kya hota, main ek barrier create kar leti hu, main pehle hi jaise ek deewar create kar leti hu taki main aapko chance hi nahi do
1: ki aap mere nazdeek aaoge.
0: Yes, so I will either overpower you or I will withdraw from you. कई बार तो हम डिफेंसिव मैकेनिज्म पर अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं आपके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती हूँ. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थ्रेट कि कहीं ना कहीं आप मेरी पोजिशन या मेरी जो पावर या पर्सनैलिटी है इसको कहीं आप ले न जाएं. दिस कैन हैपन इन एन ऑफिस, इट हैपन्स वेरी ऑफन इन एन ऑफिस, it happens in a mother in law relationship.
1: Yes.
0: Yeah, it happens very often there ki ek future threat hai ki kahin na kahin ye hi na pure ghar ke upar ya pure parivar ke upar ya mere bete ke upar, you know, whatever, to wo jab pehle se hi humne ek jo hua bhi nahi hai abhi kuch aisa hua hi nahi hai lekin maine already wo kahani पहले से ही क्रिएट कर दी, और जैसी कहानी फिर क्रिएट करेंगे तो एनर्जी फ्लो कैसा होगा?
1: वो होने लगती है फिर चीजें,
0: क्योंकि फिर थॉट्स लीड टू डेस्टिनी.
1: इवन रिलेशनशिप में, मतलब इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, अगर वाइफ पहले से ही सोच ले कि मैंने ये काम किया है या ओके मैंने ये साड़ी खरीद ली है बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, वो आएंगे और वो कुछ कुछ कुछ कुछ बोलेंगे एंड इनवेरिएबली इट स्टार्ट्स हैपनिंग कि वो वैसा ही बोलते हैं.
0: लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा बोला ना, कई बार आप देखो क्योंकि मैं पहले से ही वो आइडिया कंसीव कर लेती हूँ कि दूसरा ऐसा बोलेगा, तो उसके बोलने से पहले ही मैं कुछ और जोर जोर से बोल देती हूँ ताकि मैं आपको बोलने का चांस ही नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोच लिया था कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे. सो दिस वॉज समथिंग आई कॉन्सेप्चुलाइज्ड पहले से ही, और मैं डर गई और इसलिए मैं पहले से ही बोल. एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे कुछ टूट गया या कुछ, अब उनको पता है एक फ्यूचर उन्होंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया कि मुझे डांट पड़ने वाली है, डिफेंस मैकेनिज्म वो पहले से ही जोर से रोते
1: होने लग जाते.
0: दिस इज अ संस्कार जो हमारे साथ बिल्डअप होता है और हम बड़े होकर भी सेम चीज करते हैं कि आप मुझे क्या बोलोगे, मैं उसे पहले ही इतना जोर से बोलने लग जाती हूँ कि आपके पास बोलने का कोई चांस ही नहीं रहता. तो ये फिर भी हम एक बैरियर बना लेते हैं कि इनसे मुझे सिक्योरिटी नहीं है. सो अगेन आई क्रिएट अ बैरियर बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ एनर्जी डजंट टेक प्लेस. सो ये तीन फैक्टर्स समय को लेकर होते, पास्ट हर्ट कोई बात पकड़ी हुई है, वर्तमान समय आपका व्यवहार, या भविष्य में आपसे कोई इनसिक्योरिटी, इन तीन कारणों के वजह से हमारा जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो हो जाता एंड रिलेशनशिप इज नॉट फ्री फ्लोइंग.
1: बट एक्चुअली हमारा जो सवाल है वो यही है कि इनको बैरियर्स को तोड़ें कैसे.
0: राइट, फर्स्ट थिंग बैरियर्स को पहचान.

खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: छो वर्ष जनगणनेचो।
1: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल। या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत है। जीवन को एक नए नजरिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूँ तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के इमोशंस के बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर

0: हमें पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था, ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में?
1: बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है। क्योंकि एक तो हम ये समझे कि नींद की जरूरत क्यों है। ये सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है।
0: तो ये प्रोड्यूस क्यों होता है
1: लैक्टिक एसिड? तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है, जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इससे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वो सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीजें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, बल्कि कई लोग स्वीकार न भी करें परंतु स्वप्न आते हैं जरूर, और स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो।
0: अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते हैं। और कई बार सपने जो हैं वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं।
1: वो तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं। और स्वप्न में आप चीज जैसी है वैसी नहीं देखते हैं कि मैं आपके साथ नाराज हूं, तो वो बात स्वप्न में नहीं आएगी और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी, और हो सकता है कि वो नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए।
0: अच्छा, वही
1: स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए, कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कहीं इच्छाएं भी है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूं, तो भी मेरे अंदर वो सप्रेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा,
0: तो
1: ऐसे सिंबल्स आएंगे या मैं उड़ रहा हूं ऐसी कोई बात आएगी, और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा।
0: अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। तो सचिवानी, अगर स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना जरूरी है, दूसरा इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं आजकल? वी जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। आई मेट अ चाइल्ड, वो 13-14 साल की, एंड शी सेज कि मैं सोना ही नहीं चाहती, सोना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है।
2: सो यू गिवन द आंसर कि उनको लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि वो इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सो कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं जिसने वो अचीव करना है, इवन इफ इट्स एन अचीवमेंट, अगर मैं हेल्दी नहीं, मेंटली भी फिजिकली भी, आई विल नेवर बी एबल टू अचीव। हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ना सोकर हम इतना समय बचा लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका जो डैमेज हो रहा है, वी आर नॉट लुकिंग एट इट। दिस इज टोटली इग्नोरेंस ऑफ द सन। एक्चुअली ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं, इग्नोरेंट है हम टोटली अपने ही वेलबींग के बारे में।
0: वेरी ट्रू। इनफैक्ट नींद आती ही नहीं है।
1: मूल कारण को एक तो समझे, मूल कारण तो है हमारी चिंताएं, एंजाइटी, अंदर का टेंशन। नींद क्या है? वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है, जो हाइपोथैलेमस की बात कही थी ना, हाइपोथैलेमस बस वही स्विच

0: पीस है, स्लीप सेंटर जिसको कहते हैं, अगर वो स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इमीडिएटली नींद आने लगेगी। परंतु सारे दिन के टेंशन, एंजाइटी और चीजों को लेकर के आप वो स्लीप सेंटर्स को एक्टिवेट ही नहीं होना देते हैं, क्योंकि डिटैच नहीं होते। जब डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं।
1: वो कोई फिर बटन है उसका?
0: हाँ, बटन है वास्तव में, और वो नेचुरल है। वैसा कोई नहीं है कि उस इलेक्ट्रोड सचमुच इलेक्ट्रोड प्रेस करो, उसको स्टिमुलेट करो तो नींद आने लगी, परंतु ऐसा तो नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए।
1: हम सब ने जीवन में कोई ना कोई एक रात ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जब नींद नहीं आ रही थी। नॉट नेसेसरी कि पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मेरा रोज का टाइम 10 है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, एंड वो कोई ना कोई ऐसा दिन था व्हेन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड, कुछ हुआ है, कोई बात हुई है एंड वो चल रहा है मेरे माइंड में। इसका मतलब कि अगर मन में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, आप लेटे भी हुए हैं, आपका माइंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब मन की जो सोचने की गति है वो धीरे नहीं हो रही है। बेसिकली यही है कि मैं गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, वो स्टॉप पे आ ही नहीं रही, न्यूट्रल में जा ही नहीं रही है। कि अब क्या हुआ, ये हमें कभी कभी हुआ करता था, जिस दिन कोई चिंता थी, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी। अब चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो कई दिन ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है। रीजन, सारा दिन थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे थे, शाम को घर आए, क्या किया, टीवी देखा, कोई फिक्शन नॉवल पढ़ा, न्यूज देखी, कोई सीरियल देखा, कभी तो हॉरर शो है, कभी वायलेंट है। थॉट्स को स्लो डाउन करने के बजाय और फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट फिर अपने पर्टिकुलर टाइम पर जाकर लेट गए और सोचा लेटे तो नींद आ जाएगी, कैसे आएगी, माइंड को स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे। देन वी से कि आई वांट टू स्लीप बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन माय माइंड। जितना हम इस पर ध्यान दिन में रखते हैं, फिर रात को वो बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम अपने माइंड के थॉट्स पर सारा दिन ध्यान रखें, ये स्ट्रेस, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको स्लो डाउन करते जाएं, बीच बीच में पॉज करें, वो जो हर एक घंटे के बाद एक मिनट करें, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें, बहुत सारे भाई बहने हैं सेंटर पर आते हैं, कहेंगे नींद नहीं आती, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। अब आप उनको सबके साथ मेडिटेशन के लिए बिठाइए या अकेले भी मेडिटेशन के लिए बिठाइए, जैसे ही मेडिटेशन कमेंट्री शुरू होगी
2: आपको नींद आती,
1: आपको नींद आती।
2: आई नो, दिस हैपेंड विद मी आल्सो, यू नो,
1: विच इज अ साइन कि ये काफी समय से अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं। अब बहुत कहेंगे कि घर पे नहीं नींद आती, सेंटर पर आकर तो नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो मेडिटेशन कमेंट्री दी, वातावरण क्रिएट किया, सूदिंग म्यूजिक था, आपके माइंड स्लो डाउन होने लगा, क्योंकि मैं स्लीप डिप्राइव्ड हूँ। जैसे ही माइंड स्लो डाउन होने लगा, आई वेंट ऑफ टू स्लीप। सो दिस इज द थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड कि माइंड फास्ट है तो नहीं आती, जैसे ही मैंने उसको स्लो डाउन किया, आई विल बी एबल टू फॉल ऑफ टू स्लीप।
0: और भी कुछ कारण समझने चाहिए। एक तो कारण है, कई बार दिन में हम काफी सो लेते हैं। अगर दिन में आपने 2 घंटा नींद कर ली है तो फिर पॉसिबल है कि रात को आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। और एक कारण है कि इवनिंग में आपने चाय कॉफी ले ली, दे आर स्टिम्युलेंट्स, तो भी फिर रात्रि को आपको जो है जल्दी से नींद नहीं आएगी। और एक कारण जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, जो कहते हैं हम 2 मास से सो नहीं रहे, 4 मास से सो नहीं रहे, क्या होता है, एक बार तो जो शिवानी बेन ने बताया ऐसी परिस्थिति होती, कोई कारण हुआ, आपको 1-2 घंटा नींद नहीं आ रही थी और ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे वो विचार चलना शुरू हो जाती है, कल नींद नहीं आई थी, शायद आज भी नहीं आई थी, तो
2: एक स्ट्रेस क्रिएट होना हो रहा है, अब नींद नहीं आएगी, पूरा टाइम ऐसे ऐसे से करूंगा, आई नो, आई हैव गॉन थ्रू दैट,
0: आज नहीं आएगी, सब नेक्स्ट डे नहीं आई, तो फाइनल हो गया। थर्ड डे भी भले बहुत कोशिश, लेकिन पहले से कि अभी नींद नहीं आने वाली है, तो ऐसे करके वो एक प्रकार के संस्कार बन जाते हैं नहीं सोने के। तो ये कुछ एक कारण है।
2: डॉक्टर पटेल, तो अगर मैं नहीं सो रही हूँ, नहीं सो पा रहे हैं, मतलब जो भी वजह चल रही है, जैसा कि कहा जैसे शिवानी ने कि माइंड इतना फास्ट चल रहा है, लॉन्ग टर्म में ये मेरी बॉडी को या मेरे मन को ही कितना इफेक्ट करेगा?
0: एक तो जो हमने ऑलरेडी समझा है कि लैक्टिक एसिड लेवल कम नहीं हो गया, और लैक्टिक एसिड लेवल है वो न्यूरोटिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा लैक्टिक एसिड का है, तो न्यूरोटिक सिम्टम्स होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, नर्वस हो जाएंगे, एंजाइटी होगी,

0: स्ट्रेस हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड बढ़ने से जब नींद से डिप्राइव हुए तो इस प्रकार के न्यूरोटिक सिम्टम्स हो जाएंगे। और साथ साथ में नींद क्यों जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फिर से रिस्टोर करना है, जो नहीं कैटाबॉलिक सारे प्रोसेसेस चले सारा दिन, अब उसको रिस्टोर करना है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस चलने चाहिए। वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होंगे क्योंकि नींद नहीं आई, तो कैटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा और सभी बॉडी ऑर्गन्स को उससे भी डैमेज होगा।
1: अच्छा, जो उनकी एक्टिविटी है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी,
0: आपकी एकाग्रता पर इफेक्ट होगी, जो रिकॉल करने की कैपेसिटी है वो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, टॉलरेंस कम होगा।
2: अगर हम कोई एक दो दिन नहीं सोए ठीक से, या कई बार यू नो आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो आप पूरी रात काम कर रहे हैं, दो रातें, दो तीन दिन अगर हम नहीं सोते हैं, हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम रिएक्ट जल्दी करते हैं जो कि हम पहले नहीं करते थे। टिल फोर डेज बैक मैं इतनी छोटी बात पर नहीं रिएक्ट करती। तो हमें कहते हैं आप थके हुए हैं, आप रेस्ट कर ले ताकि फिर योर पर्सनैलिटी और नेचर विल कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अगर मैं बहुत दिनों से ठीक से नहीं सो रहा, एंड ठीक से सो रहा नहीं डजंट मीन कि मैं जागृत अवस्था में हूँ, इट ऑल्सो कैन मीन कि शरीर सो रहा है लेकिन मैं नहीं सो रहा अंदर, द माइंड इज स्टिल वर्किंग। तब हम हर रोज अगर थके हुए मन के साथ उठेंगे, फिर उससे काम करवाएंगे, फिर ठीक से नहीं सोएंगे, फिर काम करवाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये माइंड कैसा हो जाएगा, हाउ विल इट बिकम। अगर दो दिन लैक ऑफ स्लीप से हमारा व्यवहार इरिटेटेड हो सकता है, तो अ लॉन्ग टाइम ऑफ नॉट हैविंग स्लेप्ट प्रॉपरली हमारे व्यवहार पर क्या इफेक्ट लाएगा। आज मेजोरिटी हम इसलिए भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, इवन दो वी स्लीपिंग फॉर 6 to 8 hours, बट इंटरनली वी हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली, तो वो हमारा व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा, फिर और सारे। अगर जैसे ही माइंड को रेस्ट देना शुरू करते हैं दिन में भी और उसकी वजह से रात में भी, थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा।
1: तो लेकिन दिन में
0: डीप स्लीप, मतलब ये जो बात है ना कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बेन बता रहे,
2: जो रेस्ट पीरियड था वो
0: तो चार्जिंग पीरियड वाला है, डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको। स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं, एक REM स्लीप की जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज दैट डेल्टा स्लीप।
1: तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है?
0: टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है।
1: ये एक और जो आजकल का लाइफस्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं, खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है, वीकडेज पे तो चाहे जितने भी बजे सोए सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे, कहीं 2 बजे, तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है ये क्या ठीक है?
0: ये वास्तव में सही नहीं है। बाय चांस कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो। फिर भी इत्तेफाक कभी मास में एक दो बार ऐसा हो गया तो भी सवेरे तो उसी टाइम पर उठ जाओ, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है, आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम को। अगर रोज जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं तो हमें 4 बजे की वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उठ सकते हैं। चलो कोई 6 बजे भी उठता है तो उसी समय पर उठ जाओ, फिर ऐसा नहीं कि आज रात को देरी हुई थी तो सवेरे में 9 बजे तक सो रहा हूं, आपको लगेगा कि मैंने नींद ज्यादा की, परंतु उल्टा आप थके हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे। एक बार अगर 6 बजे उठ गए, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर आपने स्नान आदि कर लिया, तैयार हो गए, तो फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे। फिर ठीक है कि 4-5 घंटे के बाद आप समझते हैं कि आज ठीक से नींद नहीं मिली, तो तब फिर बस 20 मिनट की नींद करो, तब लंबी नींद नहीं करो।
1: तो कोई ऐसा टाइम है जो बेस्ट टाइम कहा जाए, जो आज एटलीस्ट हम ज्ञान तो प्राप्त करें?
0: दिन में आप कहते हैं?
1: नहीं, शाम को भी, रात को भी।
0: हाँ हाँ,
1: कोई ऐसा बेस्ट टाइम है जो जिसे बेस्ट माना जाए?
0: हाँ, सचमुच बेस्ट है कि जो नहीं, बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाश मणि जी थे, हमेशा कहते थे, कितने भी लोग है, कहते 10 माना बस, 10 बज गए अभी रेस्ट करनी है। तो 10 से 2 का समय है वो बेस्ट समय है, कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में

0: हो जाता है, तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे।
1: इससे वे कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोए डीप स्लीप को
0: बिल्कुल
1: अनुभव करें?
0: हाँ, उसकी कुछ बातें। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस, कोई कहेगा मैंने कहा अभी 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप थके हुए नहीं है तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली मतलब अच्छी तरह से थक जाए, बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा थक गए हैं तब भी आपको नींद नहीं आएगी। तो एक कहेंगे कि संतुलित मात्रा में मॉडरेटली हमें थकना है, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाए सवेरे से ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है, और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का यह भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 11:15 को आप सो रहे हैं तो भी नींद नहीं आएगी क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा, दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है। इसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है, तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं जब नींद आएगी सो जाऊंगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो, कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत होगी। सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो, हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वह हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन को सर्कुलेशन थोड़ा कम मिलेगा, तब भी ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा समय, मन को सचमुच पीसफुल बना करके फिर एक राइट पोजीशन ले लो। जैसे ना सीधे सोना भी अच्छा नहीं है, उल्टा सोना भी अच्छा नहीं है, एक्चुअली एक साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड एक कंफर्टेबल आप पोजीशन ले लो जहां कहीं अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, और फिर वैसे लेट जाओ। और बेस्ट तो चीज यही है, सोचो कि बस मैं रिलैक्स्ड हूं। आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अभी ये रेस्ट का समय है, जैसे मैं शरीर को आराम दे रहा हूं आत्मा को भी आराम की जरूरत है। ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको ये लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोमनिया के पेशेंट है सबको मैं ये बात बताता हूं कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए नींद आ जाएगी।
1: तो शिवानी, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की जरूरत है, आत्मा को आराम की जरूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ? आत्मा का
2: आराम, I just like to add little bit more to that, that we do is, रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो। जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी नेगेटिव है, जो हमने कई बार शेयर किया, सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन, रात को सोने से पहले। तो हम लोग जनरली रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज, एक पैराग्राफ, व्हाटएवर, ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी के चलेंगे। फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉकेजेस भी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज भी थे माइंड में, वो रिजोल्व हो जाएंगे। और एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू बाबा, एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट 5 मिनट्स, राइटिंग अबाउट वट एवर टूडे थॉट्स, फीलिंग्स जो आई, सिचुएशन आई, कहां मुझे और क्या, जो भी वो क्लॉटिंग है सारी अंदर, जस्ट राइट इट आउट, उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं एंड एज इफ पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया. कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज भी माइंड में चलते रहते हैं. थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को.
1: डॉक्टर साहब उल्टा चलते हैं, अभी तक नींद नहीं आ रही थी तो हमने देखा कि क्या कर रहा है, अब अच्छी नींद है तो क्या परिवर्तन महसूस करूंगी. आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा?
0: बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, इवन जो डिफिकल्ट है आपके सामने टास्क है उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई. तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी है क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी. आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी.
1: और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है, उसका भी कोई रेलेवेंस है?
0: नहीं, उसका देखो साइंटिफिक रीजन है. वास्तव में मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ. फिजियोलॉजिकल रीजन तो यह है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है. जो लेवल रात को सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 30%. तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना जरूरी है. आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया है? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में आप देखना 3-4 बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं. रीजन इज ए कॉर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय. तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कॉर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे. और वो कम हुआ तो जो उसकी हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे.
1: मतलब अगर सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम,
0: तो ये साइंटिफिक
2: रीजन, उस टाइम ज्यादा है ना, उसी टाइम ज्यादा है. तो अगर हम सो रहे हैं इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है. लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए तो डैमेज नहीं होगा ना.
0: मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी. और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीजन कि भी सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है. आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं, लेकिन आप देखना 2:30-3 के बाद तो सब सो जाते हैं. तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी है ना. तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है. कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूँ 30G हो जाएगा उस समय, क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा. और एक किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि भी अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं.
2: अगर नेट पर भी कोई हेवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं, जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है. इसी तरह जब मेजोरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है. आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हम सब नए नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज वेरी स्मूथ. जैसे जैसे 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, एवरीवन इज वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमोस्फियर बढ़ती जा रही है. अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है.
0: पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी. मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ.
1: आपने हाँ, ये मैं स्टूडेंट पे आने वाली थी कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्स के दौरान, और जैसा कि हम बार बार बात करें कि एक बार अगर वो रिदम टूटा, एक बार जब वो यू नो जो पूरा टाइम सेट किया हुआ था वो टूटता है तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है. तो अगर एग्जाम्स के दौरान वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे करें, तो वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, तब क्या करें?
0: एक बार बस

0: साइकिल को ठीक करना है। अगर आपने साइकिल को ठीक किया, अगर ये 4 बजे उठ गए, पढ़ाई की अच्छे से, अपना दिन का रूटीन किया, दिन में भले माइक्रो स्लीप ले ली, और अगर 4 बजे से आप जागे हो तो देखना 9:30-10 बजे तो गहरी नींद आने लगेगी और साइकिल आपका ठीक हो गया। भले 1-2 दिन लगेंगे, परंतु मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि भले दिक्कत भी लगे, कई ये कहते कि हम सवेरे उठ नहीं पाते, रात को कहो 3 बजे तक जाग लेंगे, भले 10 बजे भी सो गए हम 4 बजे नहीं उठ सकते, तो अगर एक बार 4 बजे उठ जाए, खड़े हो जाए, भले वॉकिंग करे, चाय पीने की आदत है चाय पी लो, या तो स्नान कर लो सबसे अच्छा है कि भी मेरा डे स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करके आप पढ़ना शुरू करो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपके 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है।
1: लेकिन उस दौरान कई बार नींद आ रही होती है,
0: स्नान कर लिया फिर नींद नहीं आएगी, ऐसे ही आप उठे मुंह धुलाई किया बैठ गए तो शायद नींद आ सकती है।
2: एफर्ट कम रिजल्ट ज्यादा,
1: जो जिसको हम कर रहे थे।
0: ऐसा स्नान नहीं करना है, ब्रश कर लो अच्छे से, हाथ पे ठीक से धुलाई कर लो, फिर फ्रेश होकर के बैठो तो नींद नहीं आएगी।
1: सुश्री शिवानी डॉक्टर पटेल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें नींद को हमने सबसे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमने समझा है, जो ज्ञान की प्राप्ति है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिजुविनेशन के लिए बॉडी और माइंड के, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए, तो वो सही टाइम पे और ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ अगर हम आगे बढ़े तो ना सिर्फ नींद ठीक से आएगी बल्कि उसके साथ की जुड़ी जितनी कॉम्प्लिकेशन है उनसे हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, अब प्रयास करेंगे, अनुभव हमारा होगा। आज अवेकनिंग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

संवाद और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम।
3: चाहे आसमान का सूरज बुझ जाए, ये मन का सूरज बुझने न दो। पथरीले रास्तों से कदम लहूलुहान हो जाए, पर बढ़ते कदम को रुकने न दो। रास्तों में आ रहे रुकावटों को

0: शिक्षा की तरह जीवन में लेना और उनको सीख समझकर जीवन को बहुमूल्य बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाना, यही सीखना है आज के हमारे गेस्ट के जीवन से। यशस्वी भारत के इस प्रोग्राम में आज हमारी गेस्ट है यशस्वी भारत की यशस्वी बेटी टिफनी ब्रार।
1: टिफनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
2: हम अच्छे हैं।
1: आपको आज स्टूडियो में पाकर हम बहुत ही हर्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे श्रोतागण भी आपको बहुत बहुत चाव से सुन रहे हैं और आपने हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए पहले ही मैं आपको थैंक यू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बिजी होते हैं और आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत ऊंचा आपका नाम हो रहा है। हाल ही में आपको राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है, जो कि भारत के लिए, भारत में रह रही सभी महिलाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ सम्मान है। तो पहले तो उसकी मुबारकबाद हो आपको।
2: थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे महिलाओं में माननीय राष्ट्रपति जी ने हमें चुना है, पुरस्कार के काबिलियत समझा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हर एक इंडियन महिला के लिए। और मैं अपने काम करती रहूं और इंडिया में बहुत सारी महिलाओं को ये रिकग्निशन मिले, इसके लिए मैं दुआ करती हूं भगवान से।
1: जी, मुझे इसी सिलसिले में आपसे पहला सवाल यही पूछना था कि जब इस अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट हुआ या आपको पता चला कि आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग? क्या कैसा फील कर रहा था, क्या आपके मन में चल रहा था, क्या वो फीलिंग थी, कौन से विचार घूम रहे थे मन में उस समय?
2: वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ तो मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हुआ कि ये होने वाला है, क्योंकि मुझे शाम के 6 बजे 5 तारीख को मुझे कॉल आया था, 4 तारीख या 5 तारीख को लगता है, और एक लेडी ने मुझे कॉल किया गवर्नमेंट ऑफिशियल ने और उन्होंने कहा कि यू हैव बीन अवार्डेड विद द नारी शक्ति पुरस्कार और यू विल हैव टू रीच दिल्ली बाय 7। तो मैंने कहा कि इतने कम समय में मैं कैसे दिल्ली पहुंचूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके टिकट्स की सारी चीजें हम देख लेंगे, कल ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, आज तो नहीं होगा, ये 5 अप्रैल को कहा है उन्होंने कि अनाउंसमेंट होने वाला है और ये है, तो आप अभी किसी से ना कहिएगा, किसी प्रेस से कांटेक्ट ना करिएगा, आप किसी से संपर्क ना करिए, लेकिन बस फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। और इसके 4 या 5 दिन पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस इंक्वायरी के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछे मुझसे कि आप क्या कर रहे हो, आपका ये काम में कौन आपका सहायता कर रहा है, आपके घर में कौन कौन है, आपके फैमिली के बारे में बताइए। और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने क्या गलती की है, क्यों पुलिस हमें इंक्वायरी कर रही है। ऐसे मैंने अपने दिल में 2-3 दिनों के लिए सोचा, फिर मैंने सोचा अच्छा भगवान तो सामने ला ही देगा, जो भी हुआ है भगवान हमें कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि ये हमें आत्मविश्वास था। फिर जब ये अवार्ड के बारे में हमसे कहा गया था, हमें बहुत ही खुशी हुई, लेकिन हमें ये भी लगा कि शायद ये स्कैम तो नहीं है, कि शायद ये ऐसे ही, क्योंकि पूरे कोरोना के दौरान बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स, बहुत सारे स्कैम कॉल्स भी आए कि आपको ये मिला, आपको वो मिला, आपको यहाँ जाना, आपको वहाँ जाना, तो मुझे ऐसे ही लगा। और फिर हम कुछ दिन ठहरे, फिर अच्छी हाँ 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को हमने टिकट्स बुक किए थे और वहाँ से इनविटेशन भी आए, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए थे तब तक, और 6 तारीख हम दिल्ली चले गए थे, क्योंकि 7th को हमें वहाँ पर रिहर्सल करना था और मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी इंटरेक्शन थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमें इसके लिए चुना गया, लेकिन जो पहले कॉल था उसमें तो मुझे लगा कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, इतने शॉर्ट नोटिस क्यों दे रही है, ऐसा लगा मुझे।
1: तो जब आपको, चलिए ये तो बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन था, लेकिन आपके आसपास में जो लोग आपके पड़ोसी हैं या जो आपके साथ काम करते हैं या जिन्होंने आपको देखा है, क्या उनका आपके साथ कुछ भी बिहेवियर में चेंज महसूस किया आपने, या व्हाट वाज देयर रिएक्शन?
2: वो लोग सब बहुत खुशी हुए। इनफैक्ट मेरी देखरेख करने वाली मेरी अडॉप्टेड मदर जो है, जिनका मैं जो मेरे पालन पोषण बचपन से कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा कि मैं उन्हें भी लेके जाऊं। और मेरी एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर भी मेरे साथ आए अपने बच्चे को लेके, हमने सबका टिकट बुक कर दिया लास्ट मिनट में और सब आए। और जो मेरे आसपास वाले पड़ोसियां हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने मुझे बधाइयां दी, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट की, बहुत अच्छा विश किया उन्होंने मुझे कि ये डेली ट्रिप आपके लिए सफल हो, ऐसे कहा था उन्होंने। और काफी अच्छा बिहेवियर था सबका, ऐसा कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन जो हमें डेली

0: देख रहे हैं उनका बिहेवियर ऐसा चेंज नहीं हुआ, उनका बिहेवियर का स्टाइल चेंज नहीं हुआ और ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत ओवर रिस्पेक्ट करना, आर्टिफिशियलिटी, ये सब हमें पसंद नहीं है। हमें हार्ट टू हार्ट वाला बिहेवियर पसंद है सबके दौरान। ये बिहेवियर हो और ऐसा ही हो हम आशा करते हैं। जो हमने जिन्होंने हमें बेटी समझा, जिन्होंने हमें दोस्त समझा, जिन्होंने हमें टीचर समझा, वो सब हमें ऐसे ही समझते रहे।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि अगर कुछ ऊंचाइयां छू लेने के बाद हमारे आसपास के लोग हमसे अलग तरीके से पेश आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे उनके साथ पहले के जो रिश्ते थे वो थोड़े अच्छे थे। और अगर रिश्ते बहुत अच्छे शुरू से रहे होंगे तो चाहे हमारे जीवन में उतार आए या चढ़ाव आए वो हमारे साथ बने रहेंगे। और ये संदेश आपके जीवन से भी मिलता है, आपके जीवन में।
0: हमें ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए कि जब हमारे जिंदगी में कोई चढ़ाई आती है तो हमें अपना आया हुआ रास्ता नहीं भूलना चाहिए। जिस रास्ते से हम आए थे, जिस चैलेंजेस का हमने फेस किया था, जो लोग हमारे साथ थे, जिस तरीके से हम पहले काम करते थे, वो तरीके को अचानक से भूल करके एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ना, दैट इज नॉट विक्ट्री। ये एक्चुअली जीत नहीं होती है। जीत ये होती है कि अपने विक्ट्री को एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके जैसे हम पहले थे, जितने भी हम्बल हो सकते हैं, जितने भी ऑनेस्ट, जितने भी डाउन टू अर्थ हम हो सकते हैं, और जितने हम लोगों के साथ, अभी हम ग्रास रूट लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, हम ब्लाइंड पीपल की हेल्प कर रहे हैं रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में, तो हमें अगर उनके साथ हमारा मेल नहीं हो रहा है, अगर हम उनके साथ पहले जैसे बिहेव ना कर पाए, या हम अपने वेट को बढ़ाए कि देखो मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, अब मेरे साथ ऐसा वैसा मत करो, अगर हम हमेशा के लिए ऐसे कर दें, हम किसी की मदद हम एक्चुअली कर नहीं सकते। बाइबल में भी कहा गया है कि हम्बल योर सेल्फ डाउन। तो जब तक हम अपने आप को हम्बल नहीं करते, अभी देखो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, अपने डिसाइपल्स के पैर धोए थे उन्होंने। आज गुड फ्राइडे का दिन है, आज हम उसके ऊपर भी मेडिटेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ही वॉश द फीट ऑफ हिज डिसाइपल्स, क्योंकि वो इतने हम्बल इंसान थे। और गौतम बुद्ध ने भी ऐसे बहुत सारी चीजें किए थे। सो दीज टू इंडिविजुअल्स वर वेरी हम्बल, एंड हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी अपने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनअप्रोचेबल बन जाते हैं अपना कुछ पुरस्कार पाने के बाद, या कुछ बहुत सारे लॉरल्स या अचीवमेंट्स के बाद, या अदर एक्ट्रेसेस एक्टर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अनअप्रोचेबल बनाते हैं। बहुत सारे एनजीओ के फाउंडर्स भी हैं जो खाली अपने वेलवेट कार्पेटेड ऑफिस में बैठ जाते हैं और बाहर कैसे हो रहा है, बाहर उनके मुख्य टीम मेंबर्स कैसे ग्रास रूट में जा रहे हैं, कैसे आउटरीच कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। वो खाली पेपर वर्क करते हैं, खाली अपने डेस्क के पीछे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं एज अ फाउंडर अपने स्टूडेंट्स के साथ हर दिन, इफ आई कैन हेल्प इट, अगर मैं बहुत बिजी हूँ तो उस दिन तो बात नहीं होती है, लेकिन हर दिन इफ आई कैन हेल्प इट मैं क्लास में जाती हूँ, क्लास लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, हम एक ही डाइनिंग रूम में एक ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, अनलेस अनटिल कोई प्रोग्राम हो या कोई बहुत ही अर्जेंट वर्क हो तो हाँ, लेकिन हर दिन हम डे टू डे एक्टिविटीज में, फिर जो भी आउटरीच प्रोग्राम है, लोगों को घर जाना होता है, पेरेंट्स से बात करना होता है, ऑफिस का फोन भी तरफ से नहीं उठा कर बात करती हूँ, मेरी एडमिनिस्ट्रेटर तो होती है लेकिन मैं एट हैंड होती हूँ, मैं ऐसे किसी को ये नहीं करती हूँ, मैं बिना फालतू का मैं किसी को वेट नहीं कराती हूँ कि हाँ मैं फाउंडर हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट लो, मुझे ये करो, अगर मैं बिजी तो यस, बट अगर नहीं हूँ तो मैं तुरंत लोगों से बात करके उनके जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व कर देती हूँ, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट हु वी आर।
1: आई थिंक आपने इस जवाब में जितनी भी बातें कही ना, वो मुझे कई सारी बातें याद दिला रही थी। जैसे आपने जीसस क्राइस्ट जी की या फिर बुद्ध जी की बातें कही कि कैसे वो कॉमन लोगों के साथ जुड़े हुए थे, ठीक ऐसे ही सुदामा के पैर धोए थे श्री कृष्ण ने, वो कभी नहीं भूले कि वो बचपन का साथी था। और इस तरीके से देखा जाए कि हर वो व्यक्ति जो अपने पास्ट को भूलता नहीं है लेकिन उसकी यादों को संजो करके उससे बल लेकर के आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत महान होता है। और उसकी महानता की निशानी ये है कि वो अपने साथियों को कभी भूलता नहीं। तो आप
0: कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ही सही बात है। आपने इवन इफ यू डाइव इनटू हिंदू मिथोलॉजी आल्सो यू सी कि जो हिंदू गॉड्स थे वो भी काफी हम्बल थे अपने इसमें।
1: तो आपने जब कहा कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए वहाँ होती हैं, यू आर ऑलवेज देयर फॉर देम, आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे ज्योतिर्गमय है क्या चीज़?
0: एक्चुअली ज्योतिर्गमय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड लोगों का एम्पावरमेंट करती है, ब्लाइंड लोगों को इंडिपेंडेंट बनाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2012 में एक मोबाइल स्कूल के इसमें शुरू हुआ था, जहाँ में हम ब्लाइंड यूथ और एल्डर

0: उनके घर जाते थे, हम उनके घर जाते थे, हम उनको पढ़ाते थे, हम उन्हें काउंसिल करते थे और उनके गार्डियंस के सामने ही हम उन्हें व्हाइट केन पकड़ाते थे, व्हाइट केन की सहायता से चलने के लिए सिखाते थे, फिरने के लिए सिखाते थे, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए हम सिखाते थे कि कैसे अपना कपड़ा पहनाया जाएगा, कैसे कुछ काम कर दिया जाएगा। ऐसे भी हमने कुछ लोगों को सिखाए जो अपने डेली लिविंग स्किल्स में एडवांस थे, हम उन्हें कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे। फिर 2014 के आसपास हमें लगा कि हमें की डिमांड बहुत बढ़ रही है और हम कैंप्स करते थे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम कैंप्स करते थे, रोड टू इंडिपेंडेंस कैंप्स। फिर 2015 में हमें लगा कि हमें अपना एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर शुरू करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से ब्लाइंड पीपल को एम्पावर कर सकें। मोबाइल स्कूल की एक लिमिटेशन थी कि हम हफ्ते में एक दिन या दो दिन ही एक एरिया में हमारा पहुंच जा सकता है, हर दिन उस व्यक्ति का एम्पावरमेंट हम नहीं कर सकते ठीक से। तो इसलिए हमने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं, लेकिन मोबाइल स्कूल अभी भी चलती है उन लोगों के लिए जो घर से बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल सकते ड्यू टू फिजिकल इम्पेयरमेंट या ड्यू टू एनी अदर काइंड ऑफ लिमिटेशन। तो हमारे मोबाइल स्कूल ऐसा बंद नहीं हुआ, लेकिन कोविड के दौरान काफी चैलेंजेस हमने फेस किया। हमने ये प्रोजेक्ट अभी के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन घरों में जाते हैं जो बिल्कुल अपने घर से निकल नहीं सकते और जिनको सेंटर में आने का कोई स्कोप नहीं है। बाकियों को तो हम फोन में काउंसिल कर देते हैं और उनके पेरेंट्स को हम प्रेरणा देते हैं कि वो उनको अपने सेंटर में लाएं। हमारे सेंटर में हम क्या करते हैं, एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर 6 मंथ्स। इन कोर्स में हम ब्लाइंड यूथ को हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, एमएस ऑफिस, इंटरनेट ऑपरेशन, स्क्रीन रीडर, नेविगेशन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, साउंड एडिटिंग भी सब्जेक्ट है। हम इंटरपर्सनल स्किल्स और इंग्लिश सिखाते हैं, जैसे कि बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आप कहीं जाते तो आपको इंग्लिश में अपने आप को कैसे अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए, एक इंटरव्यू, एक सेल्फ प्रोडक्शन, एक कॉन्वर्सेशन, तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा इंग्लिश सीख जाते हैं 6 मंथ्स में, ऐसा तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको थोड़ा बेस मिले ताकि वो अपने आप थोड़ा रीडिंग करें और अपने आप को थोड़ा डेवलप करें। तो हम ऐसे उनको बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग की ब्लाइंड पीपल को कैसे सोसाइटी में उठना बैठना है, कैसे ग्रूमिंग करना है, कैसा बिहेव करना है, कैसे एक एम्प्लॉय के सामने अपने आप को पेश करना है, ऐसे स्किल्स भी देते हैं। प्लस ओरिएंटेशन मोबिलिटी, अपने आप बिना किसी की सहायता से व्हाइट केन की सहायता के उसमें अपने आप चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना, ये सब चीजें हम सिखाते हैं उनको। और हम एडवेंचर ट्रिप्स के लिए भी ले जाते हैं, हर कोर्स में बच्चों को हम कुछ एडवेंचर ट्रिप्स के लिए ले जाते हैं, जैसे कि एडवेंचर पार्क्स, जैसे कि मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, साइट सीइंग प्लेसेस, ताकि वो लोग भी एंजॉय कर सके। ऐसे बहुत सारे घर में सब लोग शादी में जाते हैं, सब लोग ट्रिप पे जाते हैं, सब लोग टूर में जाते हैं, और जो ब्लाइंड लोग हैं या फिजिकली चैलेंज लोग हैं उन्हें एक कोने में छोड़ देते हैं कि अच्छा तुम लोग इधर बैठो, हम जाके देख के आते हैं, या तुम लोग इसको हम देख के आते हैं, या तुम लोग घर पे रहो, खाना इधर रखा है, हम जाके आते हैं। ऐसे बहुत सारे घरों में होता है, बहुत सारे स्कूलों में भी ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। बहुत सारे दोस्त भी ऐसे करते हैं, अच्छा हम अभी फोटो लेके आते, तुम इधर रुको। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है। तो ब्लाइंड सिचुएशन की जरूरी नहीं होती है, जब हम उन्हें उनके लिए ले जाए, उनका फोटो ले, उनको सब कुछ डिस्क्राइब करें हमारी साइटेड कोलिग्स। मैं भी ब्लाइंड हूँ एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे फोन लेके आते हैं, बोलते ऐसे तुम इधर ही बैठो, हम अभी आते हैं, बैग वेग संभाल लेना, हम अभी जाके आते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ जा रहे हैं जो हमें सिर्फ ले जा रहे हैं, वो हमें वहाँ की सीन्स डिस्क्राइब करेंगे, हमारी फोटो लेंगे, हमें पानी के पास ले जाएंगे, हमें वो राइड्स में चढ़ाएंगे। मैं यही अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ।
1: आई थिंक ये आपने बहुत एक अच्छा अभियान शुरू किया है, जहाँ पर आप जो लोग दृष्टि बाधित नहीं हैं और जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं और ये भी भारत के नागरिक हैं, तो देश के हिसाब से दोनों नागरिकों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर हक, दोनों को बराबर ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य भी दोनों के बराबर है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, ये सब बातें किताबों में तो दिख ही जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम जमीन पे आते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं, दोनों ही वर्गों में बहुत बड़ा एक दूरी है और आप उस दूरी को कम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इस दूरी को कम करने का ख्याल कैसे आया आपको?
0: वैसे अपने ही सिचुएशन, क्योंकि जब हम किसी सिचुएशन से हम गुजरते हैं तभी हमें पता चलता है कि अलग इंसान का सिचुएशन कैसे होगा। अभी जो एनजीओज हैं हमारे ब्लाइंड पीपल के लिए, जिन्होंने एनजीओ स्टार्ट किया है, ऐसा काफी सारे एनजीओज हैं जिन्होंने इंक्लूसिवली स्टार्ट नहीं किया, जैसे साइटेड पीपल आर स्टार्टिंग एनजीओज फॉर द ब्लाइंड। अब साइटेड पीपल को कैसा पता चलाएगा कि हम

0: महसूस कर रहे हैं, हम पर क्या बीत रही है, हमारा मन कैसा है, हम पर क्या बीत रही है, क्योंकि वो लोग तो खाली थियोरेटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, खाली उनका बुकिश नॉलेज जो उन्होंने स्पेशल एजुकेशन पढ़ा है, जो उनको ब्रेल आती है, अच्छा वो ब्लाइंड पीपल को रिहेबिलिटेट कर रही है, वो अच्छी चीज है, क्योंकि हमें साइटेड का भी पर्सपेक्टिव चाहिए, साइटेड का भी आउटलुक चाहिए। लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन अगर एक एनजीओ स्टार्ट करें और साइटेड को अपने साथ रखें, तब ये भी बहुत बेहतरीन कार्य है, क्योंकि हमें ही पता चलता है कि हमारे रिहेबिलिटेशन किसी ने तो कराया होगा, तो हम भी अपने ब्लाइंड सहभागियों का रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं। और कीपिंग इन माइंड कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, हमने बचपन में ये प्रॉब्लम फेस किया, इसलिए हमारे ब्लाइंड साथियों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम फेस करने से उनके ऊपर ये बीती है, क्योंकि मेरे ऊपर भी यही बीती थी। तो शायद बैकग्राउंड या शायद कल्चर या शायद किसी चीज की वजह से कोई कोई प्रॉब्लम में डिफरेंस हो सकती है, लेकिन जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम एक ब्लाइंड पर्सन झेल रहे हैं वो तो हर ब्लाइंड पर्सन झेलते हैं, तो इसीलिए इतना ज्यादा भेदभाव नहीं है। और मैं इंक्लूशन लाना चाहती हूँ सोसाइटी में कि मैं अपने जो मैंने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए हैं वो मेरे साथियाँ, हर एक साथी का तो मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि इंडिया में 15 मिलियन ब्लाइंड पीपल है, उन सब तक तो मैं बिल्कुल पहुंच नहीं पाऊंगी, मुझे पता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे आसपास रहने वाले जो ब्लाइंड लोग मेरे पहुंच में आती हैं, जो मेरे साथियां मेरे पहुंच में आती हैं, उनको मैक्सिमम इंक्लूसिव बनाएं, उनको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट बनाएं। और सोसाइटी को जागृत करना चाहती हूं मैं कि ब्लाइंड पीपल भी नॉर्मल पीपल ही हैं, उनको भी सोसाइटी में हक है, उनको भी सोसाइटी में स्थान है, और वो हर कार्य को अपने आप सफलता से वो सब काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंटली। अभी जैसे आप लोग पेन से लिखते हो, हम लोग ब्रेल स्लेट से लिखते हैं, हम लोग कंप्यूटर से टाइप करते हैं, आप लोग भी आजकल सारे में टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए, कोविड के दौरान तो हमारा सब चीज टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हो गया है, तो ब्लाइंड पीपल स्क्रीन रीडर यूज करते हैं, आप लोग अपने आंखें यूज करते हैं, तो यही कुछ डिफरेंस है। हम व्हाइट केन लेके चलते हैं, आप लोग आगे देख के चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा तेज चलते होंगे, हम लोग थोड़े से धीरे चलते होंगे, लेकिन बात तो वही है, हम सब लिव कर रहे हैं। जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं वो भी थोड़ा सा स्टेप चढ़ने में उन्हें मुश्किल होता है, टॉयलेट्स की वाइडनेस उनके लिए नहीं होती क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा और मुश्किल होता होगा, उनको थोड़ा सा और असिस्टेंस की जरूरत होता होगा, लेकिन दे आर ऑल्सो पीपल इन द वर्ल्ड एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली।
1: जी, आई थिंक ये जो आपने बोला कि हर व्यक्ति समान है और उसके साथ समानता वाला व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो आध्यात्म है वो सदा से इस चीज की प्रेरणा हमें देता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, उसमें हर एक को एक जैसा देखने का भाव शुरू दिन से हर बच्चे को हर स्कूल में हर पाठ में पढ़ाया गया, लेकिन फिर भी ये कहीं छूट जाता है। विशेष रूप से अगर देखा जाए आजकल के युवा जो हैं वो टेक्नोलॉजी के तो काफी करीब हैं, लेकिन हार्ड टेक्नोलॉजी जो है, दिल से जो इन बातों का ज्यादा गहरा जुड़ाव है, उनसे थोड़े दूर हो जाते हैं। ऐसे में आप खुद भी एक यंग प्रोफेशनल हैं, देश का एक युवा नागरिक है, आपको क्या लगता है कि आप अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं अपने साथियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप, जो कर सकते हैं आप जरूर सोसाइटी के लिए कीजिए। एक्चुअली हमें बहुत लगता है कि हम पूरे सोसाइटी को हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी बस की नहीं है, लेकिन आपसे जो होता है आप वो करिए। आप ये मत सोचिए कि सोसाइटी आपको कैसे जज करेगी, आपने इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं लेके आया, आपके नंबर्स कहाँ हैं। जब भी हम CSR के लिए कंपनीज को अप्रोच करते हैं तो कंपनीज पूछते हैं आपके नंबर्स कहाँ हैं, आपने कितनी लाइव्स इम्पैक्ट किए हैं, हाउ मेनी लाइव्स हैव यू इम्पैक्टेड, व्हाट इज योर नंबर्स। तो मैं बोलती हूँ मैंने नंबर्स तो मैंने इतने ज्यादा लाइव्स को इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन जो मैंने किया है वो मैंने अच्छे से किया। तीन अनपढ़ ब्लाइंड व्यक्तियों को घर से बाहर लेके आके उन्हें काम दिलाया, उन्हें +2 एग्जाम की एग्जाम देने के लिए हेल्प किया है। अभी वो तीन व्यक्ति अपने पैर पर स्वयं खड़े हैं, वो अपना जॉब करते हैं, एक ने तो अभी जॉब छोड़ दिया है, डिग्री एडमिशन ले लिया है और वो भी ड्रॉप आउट कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने जिंदगी में सफल हुआ, वो +2 तक गया, वो व्हाइट केन के सहारे चलता है, वो स्मार्टफोन यूज करता है, वो सोशल मीडिया यूज करता है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं। एक 42 ईयर ओल्ड लेडी है जो अभी अभी अपने घर से निकली है, वो हैज जस्ट बिकम ब्लाइंड, वो रिसेंटली हमारे 6 मंथ्स ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड किया, उन्हें बिल्कुल अकेले चलने के लिए बिल्कुल कोई हौसला नहीं था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, वो ड्राइवर के बिना कहीं घर से निकलती ही नहीं थी, लेकिन उनके हस्बैंड का देहांत के बाद उनको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनकी आंखें चले गई, साइट चले गई, आंखों की रोशनी चले गई, तो उनको बहुत सारे मुसीबतों झेलना पड़ा, वो हमारे सेंटर में आए, हमने उन्हें हौसला दिलाया, हमने उन्हें प्यार दिया, हमने उन्हें ट्रेनिंग दिया, अब वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते

0: व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल पे भी इस्तेमाल कर लेती है वो, और अपने आप हमारे सेंटर से उतना घूम कर अपने होम टाउन तक वो बस में खुद चले गए। इस बार अपना सामान लेकर वो खुद एक ऑटो बुलाकर वो खुद कोर्स के बाद वो बस में चले गई थी। तो दिस इज नॉट आई कॉल सोशल इम्पैक्ट। इफ आई कैन इम्पैक्ट वन लाइफ, इफ आई कैन चेंज वन लाइफ, दैट इज समथिंग ग्रेट। इफ आई कैन शो वन पर्सन द वे, आई डोंट हैव टू इम्पैक्ट 1000 लाइफ, आई डोंट हैव टू शो द कंपनीज कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया। लेकिन मैं ऑफ कोर्स वी नीड द कंपनी CSR, वी नीड द हेल्प, बट ओनली इफ दे बिलीव इन अस। If I can't impact 1000 lives, it's okay. But पहले मैं ऐसे नहीं सोचती थी, पहले मुझे बहुत घबराहट होता था कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ रहा, हमने इतने सारे lives impact नहीं किया। लेकिन जो lives हमने impact कर लिया है, हमने अच्छे से किया है, और इसके लिए मैं अभी बहुत खुश हूँ। मैं अपने पीस ऑफ माइंड पे आ गई हूँ, अपने स्पिरिचुअल एंड में भी मैं आ गई हूँ कि बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव, बी कंटेंट विथ वॉट यू कैन डू, बाकी सब गॉड देख लेंगे।
1: जो हमारे अंदर में चल रहा होता है वही हमें हमारे बाहर के एक्शंस में दिखता है। अगर अंदर में संतुष्टता नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, तो बाहर के भी काम हमारे ऐसे ताबड़तोड़ ही होंगे। लोग देखेंगे और हंसेंगे, बोलेंगे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन
0: पब्लिसिटी, ऐसे बहुत लोग हैं जो खाली पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं, कुछ फोटोज ले लिया, स्टेटस अपडेट कर लिया, अच्छा हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने ये किया, हमारा बैनर उधर लगा। इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स फॉर टचिंग लाइफ। इवन इफ यू कैन टच वन लाइफ एंड योर कंटेंट विद इट, दैट्स योर कंटेंटमेंट, दैट्स योर फुलफिलमेंट, ये आपकी अचीवमेंट है। लेकिन आपने हजार लाइफ में ऐसे ऐसे एक उंगली से टच करके पब्लिसिटी पाने का बजाय आप किसी एक लाइफ को अच्छे से इंटरनली टच करें, यही मैं कहना चाहती हूँ।
1: ये जो है बहुत ही एक अच्छा प्रिंसिपल है लाइफ का। बाकी मैंने देखा है आपके जीवन में आप बहुत ट्रैवल कर चुकी हैं, चाहे इंडिया हो या बाहर हो, आपने बहुत ट्रैवल किया है। तो जब आप भारत के अलग अलग जगहों पे जाती हैं, आपको क्या लगता है वो कौन सी एक बात है जो भारत को भारत बनाती है?
0: कौन सी एक बात भारत को भारत बनाती है अगर आप हमसे पूछे तो, इंडियन कल्चर, कल्चरल हेरिटेज जो है इंडिया की। इंडिया में बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो लैंग्वेजेस का डाइवर्सिटी है, हार्ट टू हार्ट जो हमारा लोगों से व्यवहार करने का तरीका होता है, जिस तरीके से हम लोगों से बिहेव करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं लोगों से, हम बात, हमारे जो नमस्कार या नमस्ते या वणक्कम या नमस्कारम, जो हम चार लैंग्वेजेस में अभी मैंने बोली है, तो ये चार लैंग्वेजेस की अपनी स्पेशलिटी है, अपना कल्चर है, अपनी धुन है, अपना स्वर है। अभी जो डांसेस है, जो अभी भरतनाट्यम होगा या भांगड़ा होगा, दीज आर टू डिफरेंट डांसेस, बट दे डिपिक्ट टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट यूनिकनेस या स्पेशलिटी उनमें है। एक पंजाब की है, एक तमिलनाडु का डांस है, ऐसे बहुत सारे डांसेस है, ऐसे बहुत सारे भगवान के स्टोरीज भी डांसेस के द्वारा डिपिक्ट किया जाता है। हमारे कल्चरल हेरिटेज, हमारे जो चीजें हैं, जैसे रेड फोर्ट है, जैसे ताजमहल है, कितने सालों से ये बिल्डिंग्स बना रखी हैं, कितना हेरिटेज है हमें। जो ये लूट की आवाज़ होती है, घुंघरू या पायलों की आवाज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड होती है, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब इंडिया के, दीज ऑल थिंग्स मेक इंडिया इंडिया एंड मेक अस अ कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी आर ऑल यूनाइटेड बट वी आर ऑल डाइवर्स एट द सेम टाइम।
1: टिफनी जी, मुझे आपसे बात करते हुए इतना इतना इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है हमारे सभी श्रोता साथियों को भी, ये सुनते सुनते समय का भी पता नहीं चल रहा है क्या करें, समय की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बातें जारी रहेंगी। मैं समझता हूँ हमें आपके साथ एक और बार मिलने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए आज के इस एपिसोड को हम यहीं रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में टिफनी जी के साथ। श्रोता साथियों, बने रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यशस्वी भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान देते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बता क्यों नहीं मानती, बता क्यों नहीं मानती।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। मैं मीता जयकर, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बदलती हुई जीवन शैली, तेज होती रफ्तार और बढ़ती अपेक्षाओं के इस दौर में एक विचार बार बार हमारे मन में प्रश्न बनकर उभरता है, क्या आधुनिक सुविधाओं के बीच हम सच्चा सुख पा रहे हैं? शायद इसी प्रश्न का उत्तर छिपा है एक सरल लेकिन गहरे सूत्र में, सरल जीवन उच्च विचार। हाँ मित्रों, यही है हमारा आज का विषय, सरल जीवन उच्च विचार। आज का युग अत्यंत तेज, चमकदार और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। चारों ओर सुविधाओं की भरमार है, तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ तनाव, असंतोष और बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह विचार पहले से अधिक कहीं प्रासंगिक प्रतीत होता है। सरल जीवन का अर्थ अभाव या त्याग नहीं है, बल्कि आवश्यकता और अनावश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करना है। आज हम अक्सर वही खरीदते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, केवल दिखावे या दूसरों से आगे निकलने की चाह में। अधिक वस्तुएं, अधिक खर्च और अधिक अपेक्षाएं, यही आज के तनाव का बड़ा कारण बनती जा रही हैं। सरल जीवन हमें सिखाता है कि कम में भी संतोष पाया जा सकता है और सादगी में भी सुख छिपा है। वहीं उच्च विचार जीवन को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। उच्च विचार का अर्थ है सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों में विश्वास और मानवता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण। आज जब स्वार्थ और त्वरित सफलता की होड़ है, तब उच्च विचार हमें ईमानदारी, करुणा, सहनशीलता और सहयोग जैसे गुणों की याद दिलाते हैं। आज की युवा पीढ़ी पर कैरियर, प्रतिस्पर्धा और सफलता का विशेष दबाव है। इस दौड़ में मानसिक शांति और संतुलन अक्सर पीछे छूट जाता है। सरल जीवन उच्च विचार का सिद्धांत यह समझाता है कि सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी आंकी जाती है। पारिवारिक जीवन में भी यह सूत्र अत्यंत उपयोगी है। संवाद की कमी, अपेक्षाओं की अधिकता और समय का अभाव रिश्तों को कमजोर बना रहा है। सरल जीवन अपनाने से समय मिलता है और उच्च विचार अपनाने से संबंधों में प्रेम, सम्मान और समझ बनी रहती है। पर्यावरण के संबंध में भी यह विचार अत्यंत आवश्यक है। अति उपभोग ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। यदि हम सरल जीवन अपनाएं और उच्च विचारों के साथ संसाधनों का उपयोग करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी सरलता और उच्च विचार दीर्घकालिक सफलता का आधार बनते हैं। ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाता है। प्रिय श्रोताओं, अंततः सरल जीवन उच्च विचार कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब जीवन सरल होता है तो मन शांत होता है, और जब विचार ऊंचे होते हैं तो जीवन सार्थक बनता है। आइए हम सब अपने दैनिक जीवन में इस सूत्र को अपनाएं और स्वयं भी सुखी बने तथा समाज को भी सकारात्मक दिशा दें। इन्हीं विचारों के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूं। अपने भीतर जाकिए, स्वयं को जानिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया।

0: अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणे की आवाज़ 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खेलेंगे, समझे मेरे भाई है। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, उनको आहें भरने दो।

0: Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
1: थैंक यू.
0: लास्ट टाइम बहुत सुंदर बात कही आपने कि मैंने आपसे पूछा था एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, लेकिन जिससे एक पॉइंट बड़ा अच्छा मिला हमको कि मन एक समय पे सिर्फ एक बात सोच सकता है, उसी तरह हमारी भी एनर्जी उस वक्त जब मैं गुस्से में हूं तो सिर्फ गुस्से की है.
1: एब्सोल्युटली.
0: तब मेरे समझ में आया कि ब्लॉकिंग योर एनर्जी क्या है. मेरा प्रॉब्लम है एनर्जी ब्लॉक हो गई, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद में सोचने बैठ जाता हूँ.
1: नो प्रॉब्लम.
0: तो फिर मैं अपने आप को कोसता हूँ, अपने आप को बोलता हूँ, अपने आप को बुरा बोलता हूँ, दूसरी एनर्जी शुरू होती है, डिप्रेशन में आ जाता हूँ.
1: जब भी सारा दिन में हम वो वाले इमोशन क्रिएट करते जो हमारे लिए कम्फर्टेबल नहीं है, स्पेशली नाउ सपोज वी टॉकिंग अबाउट एंगर. अगर हम, क्योंकि गुस्सा हम में से मेजोरिटी को आ ही जाता है कभी ना कभी, जैसे आपने कहा कि आने के बाद, करने के बाद, सब होने के बाद रियलाइज होता है, तब फिर क्या करें? फिर आपने कहा कि फिर मैं अपने आप को
0: कोसता
1: हूँ और फिर गिल्ट में चला जाता हूँ. दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी.
0: और श्राप भी देता हूँ अपने आप को कि मैं जिंदगी में नहीं सुधर सकता, इस जीवन मेरा बेकार है.
1: सी, हमने उस दिन भी पढ़ा था और डिस्कस किया, आर थॉट्स एंड वर्ड्स आर वाइब्रेशंस विच आर रेडिएटिंग इन टू द एटमोस्फियर. If the thoughts and words you created yesterday, you know would become a reality, would you say them again today? Hamari soch, hamari bol, reality banne wali hai.
0: Main nahi chahta ye reality bane.
1: To kya tha us din ki agar aapko ye samajh aa jata hai, that is what those beautiful quotations said. Agar aapko ye baat samajh mein aa jati hai ki aapki soch aur bol reality banti hai, to kya aap wohi sochenge aur bolenge jo aapne kal bola tha?
0: तो ये भी तो ब्लॉकिंग एनर्जी होगी. मुझे बात करते करते याद आया, समझ में आया, सॉरी.
1: एब्सोल्युटली.
0: कि मैं दूसरे के लिए जो कर रहा था अपने लिए कर रहा हूँ.
1: अपने लिए कर रहा हूँ और जो चाहिए उसका ऑपोजिट बोल रहा हूँ सारा दिन. इट्स लाइक सेइंग कि आपका बच्चा काम पे जा रहा है बाहर, या स्कूल जा रहा है, या सब कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, आप कहेंगे डू वेल, गॉड ब्लेस यू, अच्छा करके आना, अच्छा ही होगा आज. सपोज उसकी जगह आप बोले कि नो गुड, फायदा नहीं है, तुम कि

0: भी मेहनत करो, तुम्हारा कुछ खास अच्छा होता नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना।
1: आज भी बुरा मत करके आना।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, आज भी बुरा मत करके आना फिर भी ठीक, लेकिन तुम्हारा तो होता ही बुरा, तुम्हारे से होता ही नहीं अच्छी तरह से, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। जो चीज किसी और को नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए नहीं सोचेंगे,
1: तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ अपने आप को, तो फिर और को भी बोल रहा हूँ। तो जब मैं अपने साथ ही ठीक नहीं हूँ तो फिर दूसरे का क्या लिहाज करूँ।
0: वो चलो नेक्स्ट स्टेप कि जो हम अपने साथ करते हैं वो दूसरे के साथ भी करने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो हम अपने साथ करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। हर बार अगर मैंने अपने आप को कहा यू आर नो गुड, तुमसे नहीं होता है, तुम कितना भी ट्राई करो, तुम्हारी नेचर बन चुकी है ये, तो ये अपने आप को क्या दे रहे हैं?
1: श्राप, कर्सिंग अस।
0: आवर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। हम वरदान दें या श्राप दें, वो रियलिटी बन जाएगी। और जब हम अपने लिए करते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी एक के लिए सोचते हैं, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन अपने लिए, अपने लिए जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट अपने लिए बार बार क्रिएट करें, आई एम नो गुड, मुझसे नहीं होता, मेरा संस्कार डिफिकल्ट है, ये नहीं चेंज होता, तो उसकी रियलिटी बनना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी।
1: क्यों?
0: क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एक थॉट क्रिएट हो रही है, जब व्हेन इट इज टीचिंग अस कि द एनर्जी यू रेडिएट आउट बिकम्स अ रियलिटी। तो अपने लिए तो कितनी बार बोल रहे हैं ये, सपोज मैंने आज दिन में 5 बार गुस्सा किया, ठीक है, 5 लोगों को कहा यू आर नो गुड, एक लाइन ही ले लेते हैं, 5 लोगों को कहा तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता है।
1: मैंने अपने आप को तो कई बार कहा आई एम अ फेलियर, कोई बात समझ नहीं सकता है, 10 बार एक चीज बोली नहीं सीखता है, एक ही पॉइंट बार बार करते हो गलती।
0: Right.
1: तो अपने आप को कितनी बार बोला मैंने?
0: 5 बार लोगों को गुस्सा किया, मतलब 5 बार लोगों को सपोज यही लाइन कही कि आपसे नहीं होता है, लेकिन 5ों बार बोलने के बाद बुरा लगा, रियलाइज किया और फिर अपने आप को कहा तुम्हारे से नहीं होता है, तुम्हारा संस्कार चेंज ही नहीं होता है। तो दिन में 5 बार मतलब एक एक बार एक को बोला ना, लेकिन अपने को 5 बार बोल दिया, तो किस चीज की रियलिटी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है?
1: मेरी,
0: क्योंकि 5 बार बोला। और दूसरों को जब बोलेंगे ना तो 1-2 लाइन में बोलेंगे, क्योंकि दूसरे बहुत ज्यादा उससे ज्यादा नहीं सुनने वाले हमारा खड़े होके, कहेंगे नहीं है, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ जाके, फिर से वो चले जाएंगे, हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उससे बाहर चले जाते हैं लोग, फिजिकली भी और मेंटली भी। जैसे सपोज आप मुझे कुछ बार बार बोल रहे हैं यू आर नो गुड, तुम्हारे से नहीं होता, या तो अगर मेरे से नहीं सुना जा रहा तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगी, मैं अभी करके आती हूँ जाके वापस। अच्छा, अगर मेरे को वहीं खड़ा होना है और सुननी ही है आपकी बात, आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग आउट, मैं फिजिकली बाहर नहीं निकल सकती इस स्पेस से, लेकिन मेंटली तो निकल सकते हो।
1: ब्लॉक कर लूंगा,
0: ब्लॉक, आई विल बी देयर एंड नॉट टेकिंग,
1: बोलना है बोलो,
0: यस आई विल बी देयर नॉट टेकिंग इट। तो दूसरे हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद खुद को बोलने लगते हैं तो हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को कम्प्लीटली स्वीकार करते हैं। आप अगर मुझे कहेंगे यू आर नो गुड, नॉट नेसेसरी मैं आपकी बात को स्वीकार करूं, I'll say I know what I am, and which means मैंने आपकी thought को reject कर दिया। लेकिन जब मैं खुद को बोलती हूँ you are no good, तब मैं उसको reject नहीं करती, because I firmly believe what I'm saying to myself। तो जो impact हमारी अपनी बात का अपने पर आता है, खुद से की हुई बात का जो impact होता है वो much deeper है।
1: तो अपने आप की तारीफ कैसे करते जाए जब गलत कर रहे हो?
0: अपने आप की तारीफ नहीं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट इम्पोर्टेंट है ना।
1: सपोज आज एनर्जी मोटिवेट करने का, जब
0: इट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
1: गुस्सा आ जाता है
0: तो क्या करें? अभी सपोज मैंने गुस्सा कर दिया, गलती हो गई, मैंने रियलाइज किया, अब इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक एंड सेइंग आई एम नो गुड, ये मेरे से होता नहीं है, कैसे करूं, सिंपल एक तरीका है, आप बैठकर इवन आंखें बंद कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और उसी सीन को जो पूरा हुआ था, पूरा का पूरा सीन वापस विजुअलाइज कर लीजिए, पूरी, सामने वाला आया, उसने क्या किया था, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने कैसे उस पर रिएक्ट किया, उस सीन को फिर से क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि 2-3 मिनट
1: रीटेक जैसे हम पिक्चर में करते हैं,
0: रीटेक जैसे हम पिक्चर में करते हैं,

0: बिल्कुल
1: तरीके से किया अभी
0: एब्सोल्युटली. अब उस रीटेक में सारी सीन सीनरी को एक्टर्स सेम रहेंगे. सिर्फ अपने पार्ट को देख लेना है कि अगर मुझे एक सेकेंड चांस मिले तो मैं सीन को किस तरह करूंगा.
1: और उसको नेगेटिव किया अब पॉजिटिव तरीके से
0: बेसिकली एक डिफरेंट स्टाइल. आप एक रोल में
1: पहले गुस्से से किया प्यार से करो.
0: वो आप चूज करो. हर बार ऑप्शन आप अपने आप को देखो. मैं प्यार से बोल सकता था. मैं डिस्टर्ब हुए बिना सिर्फ स्ट्रिक्टली बोल सकता था. मैं डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्या है. क्या हो रहा है जब परिस्थिति आती है एंड हमें क्योंकि वो एक हो गया है ऑटोमेटिक मोड में जाने का उस समय हमारा वो पुराना संस्कार आ जाता है. लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो जाती है गई बात वो लोग गए अब हमारे पास है ना 2-3 मिनट का टाइम. अब बजाय कि ये सोचना क्यों किया नहीं करना चाहिए था आज सुबह मैंने मेडिटेशन में डिसाइड किया था ना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा फिर भी आ गया ये सब सोच के वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. इससे अच्छा 2-3 मिनट निकालकर वो सीन को विजुअलाइज करके अब क्योंकि डिटैच्ड है जब परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते नहीं है ऐसा करो या ऐसा करो वो ऑटोमेटिक होता है. लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो गई लॉजिक माइंड वर्क कर रहा है हम शांत हैं अब डिटैच होकर उस परिस्थिति को फिर से देखकर अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें. दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक. क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को करते हुए देख लेंगे कि मैं इस तरह बोल सकता था इसी बात को मैं इस तरह भी कर सकता था एंड करते हुए देखें बेसिकली आप वो क्रिएट कर रहे हैं इम्प्रिंट. यहाँ पर ये इम्प्रिंट जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये यहाँ स्टोर हो रहा है यहाँ पर. अब थोड़ी देर बाद एक और परिस्थिति आएगी आइडेंटिकल नहीं आएगी लेकिन परिस्थिति तो आएगी.
1: जैसे फिल्मों में रोल आते हैं रोने के तो इसके लिए नहीं रोया तो किसी और चीज के लिए रोया
0: लेकिन प्रैक्टिस करके रख ली थी ना. दिस इज बेसिकली क्या किया रिहर्स द सीन.
1: हाँ जी
0: जब हम साइलेंस में बैठे मतलब डिटैच होकर बैठे हम रिहर्स कर ले पास्ट वाले सीन को.
1: इमोशनल बैंक मेमोरी बैंक से मैंने इमोशन निकाली
0: राइट लेकिन पास्ट जो सीन पास्ट हुआ है उसको रिहर्स करेंगे और उस रिहर्सल को फ्यूचर वाले सीन में यूज करेंगे. दिस विल हेल्प टू चेंज द संस्कार. ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने उस बीच के पीरियड को क्या किया उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं. आफ्टर द सिचुएशन दो ही ऑप्शन है या तो गिल्ट में गए
1: sulking,
0: या अपने को कोसा या फिर और ही अंदर अभी तक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं. इनको समझ ही नहीं आता इनका कुछ नहीं हो सकता. ये मीनिंग वो व्यक्ति तो चला गया लेकिन हमारा एंगर अभी भी चल रहा है. गिल्ट हो या एंगर हो दोनों में एनर्जी तो मेरी ही वेस्ट हो रही है. एंगर मतलब मैं उनसे गुस्सा कर रहा हूँ. गिल्ट मतलब मैं अपने से गुस्सा कर रहा हूँ. कर तो गुस्सा ही रहा हूँ एंड विच मीन्स वो मेरा संस्कार और भी कड़ा हो रहा है. इससे अच्छा इमीडिएटली अगर हम ये रिहर्सल वाला कर लेते हैं कि सिट बैक उसी सीन को देखें चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं कि ड्राइवर लेट आया मैंने रिएक्ट कर दिया. अब रिएक्ट कर दिया ना कोई बात नहीं. अभी गाड़ी में बैठ गए हैं वो अपनी गाड़ी चला रहा है हम 2 मिनट को यूज करें क्योंकि आगे आने वाले पूरे वीक में ड्राइवर कई बार और भी लेट आएगा लेट लेकिन मैं आई सिट बैक एंड क्रिएट दैट सीन. नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट दिस वे एंड ये जो स्टोर होता जाएगा हम एक अलग क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलरेडी उस टाइम सिर्फ फ्यूचर के लिए भी नहीं हमने ऑलरेडी एक एनर्जी नई क्रिएट करनी शुरू कर दी क्योंकि मैंने थॉट कौन सी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी प्यार की पॉजिटिविटी की स्टेबिलिटी की. प्रेजेंट ठीक हो गया गिल्ट खत्म एंगर खत्म आई हैव काम्ड डाउन एंड ये जो क्रिएट किया ये फ्यूचर में यूज हो जाएगा. डेफिनेटली यूज होगा ये सिंपल तरीका. ये तो एक अपनाना ही है करना ही है.
1: जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं ना कि जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे तो ये मेमोरी बैंक और इमोशनल बैंक में ये
0: बिल्कुल
1: सीन को क्रिएट करके रेडी रखो.
0: कंप्यूटर ऑन किया नहीं ऑन हो रहा इरिटेट हो गए. अब इरिटेट हो गए ना बोल दिया जो बोलना था. अब सिट बैक कंप्यूटर है ठीक है कोई प्रॉब्लम होगी ओवरलोडेड होगा डेटा से स्लो चला. व्हाट वाज माय चॉइस आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड लाइक दिस. ये है अपने ऊपर थोड़ा सा जो कहा ना मन एक बच्चा है तो बच्चा

0: ने गलती कर दी, अब गलती कर दी उसको बच्चे को सिखाएगा कौन कि कैसे करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। सो वी डू दिस रिहर्सल। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि ये कॉन्शियस अटेंशन रख के करना है कि जब गुस्सा आएगा, चाहे वो अभी थॉट प्रोसेस में है, इसको पहले थॉट प्रोसेस में कर लें तो वर्ड्स में इजियर हो जाएगा। व्यक्ति की गलती, उसके कर्म के बारे में चिंतन करें, व्यक्ति के बारे में नहीं। ये प्रैक्टिस करनी होगी ऑफ सेपरेटिंग द पर्सन फ्रॉम द एक्ट।
1: हेट द सिन नॉट द सिनर।
0: एब्सोल्युटली। अभी ये सब हमने सुना है, ये सब सुना है, सब मालूम है, हमें ये भी नहीं रियलाइज हो रहा कि दोनों में अंतर कितना ज्यादा है। कहेंगे लेकिन गलती उसने की ना, तो फिर एक लाइन होगी उसने गलती की, सेकेंड लाइन में हम गलती से हटके व्यक्ति पर चले जाते हैं।
1: बट ये तो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने ये सिखाया, जिसने भी ये प्रोग्राम देखा उसने ये लाइन सीखी कि हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है, तो वो किसने सिखाया हेट द सिनर नॉट द सिन? क्या हम पैदा हुए ऐसे?
0: नहीं, हमने ये मालूम है, लेकिन कहीं कभी ना कभी गलती के बारे में चिंतन करते करते हमने व्यक्ति के बारे में चिंतन क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हम काफी सारा उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करके यहाँ स्टोर करके पहले से ही रखते हैं। आप ये देखो, सारा दिन में हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं, हम बहुत सारी बातें सोचते हैं जो हम उनको बोलते नहीं है कभी भी। वी नेवर से इट टू देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हैव मास्टर्ड दिस आर्ट कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। सामने किसी ने कुछ किया फिर भी हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन अंदर सोच लिया ऐसे ऐसे ऐसे। फिर कुछ आई बात, हमने प्यार से बात कर दी क्योंकि हमने कहा बार बार अभी कितना बोलेंगे इनको, अंदर सोच लिया रख लिया। लेकिन फिर जब कोई स्टिम्यूलस आया, ये सारा कुछ जो यहाँ स्टोर करके रखा था, और तब तो कितनी पुरानी बातें आती हैं, 10 साल पहले ऐसे किया था आपने, 20 साल पहले वो शादी वाले दिन आपने ऐसे किया था, ये सब क्यों निकल कर आता?
1: माँ ये क्यों नहीं बोलती जब तो 2 दिन का था या 6 दिन का था या 6 महीने का था तब बुरा किया, तब वाली बातें बुरी क्यों नहीं लगती?
0: क्योंकि उस समय गुस्सा नहीं आया था।
1: क्यों
0: गुस्सा नहीं आया था? एक्सेप्ट द चाइल्ड ना।
1: चेंज कैसे हो जाती है माँ?
0: जब उनकी एक्सपेक्टेशंस, एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन आती है बच्चे से कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। एक छोटा बच्चा क्या करता है? जो पेरेंट चाहे बच्चा करता है। छोटे बच्चे से बड़ा होते होते
1: भी तो होता है, बच्चे के पीछे पीछे हम भागते रहते हैं, वो भागता
0: है, है, लेकिन बच्चे को
1: बना देता सर पे
0: बच्चे को जो जो सिखाते हैं से बच्चा अपनी इंटेलेक्ट कब यूज करना शुरू करता है, जब वो थोड़ा सा है ना,
1: पहले बड़े फैन बोलो फैन है,
0: नो इवन आफ्टर दैट लिटिल एल्डर ऑल्सो वो कहना मानता है, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही कितना है। हम कहते हैं बच्चा कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे वो 10, 12, 13 साल का होता है और जब वो अपनी चॉइस की चीजें करना शुरू करता है जो उनकी पसंद की नहीं है, कहेंगे माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इवन द वर्ड इज यूज, माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल।
1: उसके बाद बोलते ही इज गोइंग इन द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ।
0: वेरी गुड,
1: ये वाइफ इज गोइंग इन कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड।
0: एब्सोल्युटली, विच मीन्स व्हाट इज द मीनिंग?
1: हमारे कंट्रोल से बाहर उनके कंट्रोल में है,
0: मतलब जो वो कह रही है वो कर रहा है। जब वो स्कूल कॉलेज गया तो जो दोस्त कह रहे थे वो कर रहा है, और बचपन में वो क्या कर रहा था?
1: जो मैं बोलता था।
0: तो वो कब तक अच्छा था बहुत, कब तक आज्ञाकारी था, वफादार था, लॉयल था, संस्कारी था, जब तक वो जो मैं कह रहा था वो कर रहा था। लेकिन जब उसने चेंज होना शुरू किया, कुछ और करना शुरू किया, तब गुस्सा आना शुरू हुआ। अब हमें ये दिस इज लाइक वेरी सटल, लेकिन इसकी सारा दिन प्रैक्टिस की अगर गुस्से को खत्म करना है, एक कर्म के बारे में चिंतन, व्यक्ति के बारे में नहीं। और उसके बाद जब वो बात खत्म हो जाती है, जब गुस्सा आता है तो वो बात चित्त पर ज्यादा समय चलती है, लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी गलती के बारे में बात करें तो आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे ही बात खत्म हो जाएगी आपके चित्त पर नहीं रहेगी वो बात। वो बात आई, बात के बारे में क्या, लेट्स से आपके बेटे ने आपको फोन किया, कहा ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये करना है, ये आपको क्या लगता है मुझे ये करना है?

0: उसने कुछ कहा, राइट, ये मुझे लगता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे ऐसे करना चाहेंगे? आपने कहा नो, नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, ठीक है? तो फिर वो जो कह रहा है, जो काम, जो बात, उसके ऊपर आपने अपनी राय दे दी, एडवाइस दे दी, बात पूरी हुई। इवन अगर वो जो कह रहे थे वो आपको बात पसंद नहीं,
1: बेवकूफ है, ये सोचा भी क्यों ऐसा,
0: दैट इज इट,
1: इतना बड़ा हो गया अभी भी अकल नहीं है, अभी ये बात पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: दिस, अभी आपको डिफरेंस दिखा, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये थिन लाइन है, दिस यू हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम द एक्ट टू द पर्सन।
1: लेकिन जैसे आप बात कर रही है, मुझे सुबह फोन आया आपके सामने, मैंने बोला नहीं बेटा ये गलत बात है, फायदा क्या करके, फायदा नहीं है, इसी से ओके डायरेक्ट बात खत्म होगी,
0: राइट।
1: अगर उसके बाद में बोलो इतना बड़ा हो गया,
0: लेकिन वो आपने उसको बोला नहीं, लेकिन अब आप अपनी चेकिंग करेंगे।
1: मैंने नहीं सोचा ऐसा,
0: ये चेकिंग,
1: मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मुझे पूछा।
0: हाँ पूछा, अगर नहीं पूछा होता
1: तो फिर तो गुस्सा आता।
0: हाँ, दिस थॉट्स, धीरे धीरे ये जो हमारा संस्कार है ना, उस पर प्यार से काम करना है, ये फोर्सफुली नहीं जाएगा एक दिन के अंदर। कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने मेरी कही हुई बात मानी नहीं, किसी ने जिस तरह से मैंने कहा था उसने बिल्कुल ही एक अलग तरह से कर दिया, वो हर बार मेरे से पूछते थे, इस बार पूछा नहीं, अच्छा मुझसे पूछने की बजाय अब इस बार
1: पत्नी
0: और से पूछना शुरू कर दिया। ये मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका अच्छा चाहिए या मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो मेरे कंट्रोल में रहे? ये चेकिंग,
1: पहले मेरे से पूछता था कि माँ मेरे साथ पिक्चर चलोगे, माँ मेरे साथ बाहर चलोगे, अब कम से कम पूछ तो ले, सीधा बीवी को लिया चला गया, बात भी नहीं करता मैं कि जिंदा हूँ कि मर गई हूँ कि क्या हूँ, ये कितनी चिंतन होती
0: है। और फिर उसके बाद ये भी बोलेंगे, मैं जाती थोड़ी साथ में बोलता तो
1: सारी पूछ लेता।
0: हाँ, अब ये जितनी देर चल रहा है चिंतन, चिंतन चल रहा है व्यक्ति के बारे में, उतनी देर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड है। ये भी अगर हम उस समय अपने आप को याद दिला दे, ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक, जैसे सिंक नहीं ब्लॉक हो जाता है तो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया ना।
1: आपने सांस का अच्छा बोला,
0: हाँ ब्लॉक,
1: ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, सडनली ले लो,
0: एब्सोल्युटली, इमीडिएटली, डोंट लेट इट रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सफोकेशन उनको नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सफोकेशन दूसरे को नहीं हो रहा,
1: घुटन तो मुझे हो रही है,
0: मुझे होने वाली है, वो चले गए घूमने के लिए, वो तो चले गए ना, दे आर फाइन,
1: और यहाँ से भी जो भेज रहा हूँ
0: वो तो है, वो तो सेंड, वो तो रीच होगा ही, बट वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू सी आर सेल्फ।
1: आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, चलो वो चले गए, वो रेस्टोरेंट में बैठे डिनर खा रहे हैं और मैं यहाँ से कोसता जा रहा हूँ, तो उनको नहीं फील होता, पता नहीं आज अजीब सा क्यों लग रहा है?
0: नहीं, इतना विजिबल ही नहीं आएगा,
1: नहीं होता,
0: नहीं इतना विजिबल ही नहीं आएगा। सपोज वो 20 किलोमीटर दूर किसी रेस्टोरेंट में या मूवी थिएटर में बैठे हैं,
1: और आप देखते हैं कि जाता है, ट्रांसफर
0: होगा,
1: होता है।
0: क्या होगा, क्या ओवरऑल रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन आना शुरू होगा,
1: सुबह मिलेंगे,
0: नहीं नॉट नेसेसरी मिले भी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मिलने से ही होगा, एक वाइब्रेशन रीच तो हो रही है उसी टाइम में जब आप सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे पता नहीं चलेगा, जैसे कि कुछ मेरे पास अभी आ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन रीच कर रही है, वो वाइब्रेशन उनको टच करके वो जो आपके बारे में सोचते हैं उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा।
1: Really?
0: अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे हूँ, आप जो मेरे बारे में सोचेंगे मुझे पता नहीं चलेगा, आई डोंट हैव दैट मच कैचिंग पावर कि मैं आपकी थॉट कैच कर सकूं, लेकिन आप भेज तो रहे हैं ना, मेरे को रियलाइजेशन ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट थॉट कौन सी है कि यू आर थिंकिंग लाइक दिस ऐसा, लेकिन जो आप थॉट भेज रहे हैं वो मुझे यहाँ रीच होती है। एंड ये क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ तो आपकी थॉट मेरी थिंकिंग पर इन्फ्लुएंस करती है, एंड फिर मैं भी आपके बारे में एक अलग तरह से सोचना शुरू कर देती
1: हूँ। ना अच्छा नहीं सोचते
0: हैं। नहीं होता। एंड फिर क्योंकि मैं भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही हूँ, फिर वो आप तक पहुँचेगी।
1: अच्छा एक सेकंड, पहले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं।
0: दिस इज इट।
1: ऊपर से फिर मैं उसके बारे में सोचूं, फिर वापस उधर से और आए,
0: और जब वो
1: बात कितनी बढ़ जाएगी।
0: नहीं, और जब

0: आपके बारे में वैसा सोचूंगी, फिर आपकी तो ऑलरेडी ऐसे थी उस टाइम, आपकी और हो जाएगी फिर मेरी हो जाएगी।
1: देखा मैंने सही बोला था, मेरा और कंफर्म हो जाएगा।
0: यस
1: देखा, मेरे बिल्कुल मेरी सोच सही थी।
0: ये टिपिकली अगर हम ऐसे रिश्तों में देखें जहाँ स्ट्रेन ज्यादा होता है, सपोज सास बहू का रिश्ता, यू नो, जहाँ हम मेहनत ज्यादा करते हैं और हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलती है, कई रिश्ते ऐसे, इवन कई बार ऑफिस में एक बॉस के साथ, कोई एक फ्रेंड के साथ, मतलब जहां यू विल फाइंड कि मैं कितने मेहनत करता हूं एडजस्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मतलब एफर्ट ज्यादा रिजल्ट कम, ऐसे कई रिश्ते होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो रिश्ता हमेशा बहुत नेचुरल एंड बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो एफर्ट वाले रिश्ते होते हैं इनमें जनरली ये चल रहा है, ये एनर्जी एक्सचेंज अंदर से, एंड दोनों बात बहुत प्यार से करते हैं एक दूसरे के साथ, काफी ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो दूसरे को बुरा लगे, मैं उनको हेल्प करूं, उनके लिए ये करूं, उनका कहना मानूं, लेकिन अंदर से नहीं अच्छा सोच रहे हैं।
1: अगर आप मेरे बारे में कोई भी चीज नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते, सोचते जा रहे हैं और मुझे बोल नहीं रहे हैं, तो क्या जब मुझ में ऐसी थॉट आए कि मैं आपको उतना मतलब प्यार से नहीं देख रहा हूं, या मेरे अंदर से आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं नहीं निकल रही हैं, तो क्या मैं रियलाइज नहीं कर पाता कि मुझ में ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? शायद वो मेरे बारे में कुछ
0: सी अगेन
1: सोच रहे होंगे।
0: राइट,
1: अभी उधर से नेगेटिव तीर आया, कभी कभी मुझे लगता है यार इस बंदे को मैं इतना प्यार करता हूँ, सडनली मेरे अंदर उसके लिए दुआएं, प्यार, खुशियां क्यों नहीं निकल रही हैं? एक तो हो सकता है कि मेरे में कोई गलती है या मेरी एक्सपेक्टेशंस में है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वहां से अजीब तीर आ रहे हों।
0: लेकिन दोनों केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है?
1: क्या
0: सी सपोज, क्योंकि ये हम में से बहुतों के साथ, मतलब हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी के साथ ही अनुभव किया होगा, यू नो, विद दिस इज अ सोल टू सोल कार्मिक अकाउंट, और एक तो उसमें ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक पास्ट कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है, यू नो, कई रिश्तों में इतनी मेहनत कर लो लेकिन तो भी वो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो पास्ट कैरी फॉरवर्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब दोनों में से एक को इस सर्किट को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं कि सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना है, फिर भी सडनली बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, और माइंड फिर से उनकी गलतियों की तरफ जाएगा। आप फिर विशेषता को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन फिर गलती का चिंतन होने लग जाएगा। मतलब समहाउ नेचुरल रूप से मेरे अंदर उनके लिए बहुत अच्छी थिंकिंग जेनरेट ही नहीं होती।
1: नहीं, अब नहीं हो रही, पहले थी।
0: चेंज हो रही है।
1: हाँ,
0: यस, चेंज हो रही है।
1: वो कर रही है या मैं कर रहा हूँ?
0: एक्चुअली बहुत पावरफुल रीजन होता है कि सामने वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है, नहीं कर रहा, वी डोंट नो। इवन अगर कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आई कांट जस्ट सकम्ब टू दैट ना।
1: तो अब मैं क्या करूँ?
0: सपोज मैं आपके लिए पहले अच्छा सोच रही थी, सडनली आई फील के नहीं, मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये बात भी नहीं अच्छी लग रही, मुझे ये चीज भी नहीं अच्छी लग रही, इट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन आई स्टॉप एंड आई से कि मैं पहले तो नहीं गलत सोचती थी इतना इनके बारे में, अभी मुझे बार बार नेचुरल गलत थिंकिंग क्यों आ रही है? तो सपोज आई से टू माई सेल्फ, हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो। अच्छा, अगर हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो, लेट से मेरे को श्योर भी हो जाए, ओके, कि नहीं वो ही मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी ऐसी थिंकिंग आनी शुरू हो गई है, अगर ये भी सच है तो भी मुझे क्या करना होगा फिर? अभी
1: बताइए
0: मुझे, फिर कॉन्शियसली और अटेंशन रखकर अपनी थॉट को चेंज करना होगा, ताकि उनकी थॉट मुझ पर इन्फ्लुएंस करने के बजाय मेरी थॉट उन पर इन्फ्लुएंस।
1: ब्यूटिफुल,
0: क्योंकि वो भी तो होगा ना, दोनों में से एक इन्फ्लुएंस कर रहा है।
1: तो मैं मतलब इतना प्यार भेजूं और इतनी दुआएं भेजूं कि वो उनका जो नेगेटिव है,
0: ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मुझे तो ये पहले अच्छे नहीं लगते थे, मैं तो इनके लिए अच्छा सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी, आजकल कैसे मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अरे मुझे अच्छी कैसे लग रही है इन चीजें ये सारी, क्योंकि समवेयर फ्रॉम दी अदर साइड
1: रियलाइजेशन भी हो सकता है अदर साइड को कि अंदर

0: से तो अच्छे आदमी है।
1: एक्चुअली वो रियलाइजेशन तभी आएगी जब दी अदर साइड इज सेंडिंग वेरी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि तब मुझे आपके अंदर की अच्छी चीजें दिखने क्यों लगेंगी, क्योंकि वहां से एनर्जी बहुत क्लीन आने लग गई है।
0: अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो या कुछ गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं उसको आपको प्यार भेज भेज के ब्लेसिंग भेज के दुआएं भेज के ठीक कर सकता हूँ रिलेशनशिप?
1: एब्सोल्युटली।
0: बिना बात किए?
1: बिना बात किए। बातों से तो बहुत रिश्ते ठीक होते भी नहीं है,
0: तो क्या करूँ मैं?
1: क्योंकि बातों में क्या होता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, बातें बहुत मीठी होती हैं।
0: क्या इसके लिए मेडिटेशन का समय ढूंढे?
1: मेडिटेशन का समय तो ढूंढे ही, लेकिन फिर क्या होता है, मेडिटेशन के टाइम तो हम सपोज 5 मिनट, कितनी देर एक सोल के लिए कितना सोच पाएंगे, 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बाकी 24 घंटे जब भी वो याद आते हैं या जब भी उनसे रिलेटेड बात कोई याद आती है, और अगर वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है, मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन, यू नो सपोज आप और मैं बैठ के एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अगर हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव की तरफ जाने लगे, लेकिन वो तो ऐसे हैं, उस दिन ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, स्टॉप, नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन, मुझे ये वाला चिंतन नहीं करना है, क्योंकि आजकल मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ,
0: प्रोजेक्ट बीइंग ब्लिस,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली विद दैट वन सोल, यू नो, जहाँ पर एक स्ट्रांग अंडरकरंट चल रहा है या जहाँ मुझे थोड़ी सी मेहनत करके उस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना है।
0: जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, कैन वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड?
1: डेफिनेटली।
0: थैंक यू सो मच
1: शांति।
0: थैंक यू सो मच।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
2: आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ को चेक करो. जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, अर्थात जिनका 100% अपने मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अटेंशन है, या केवल स्वयं को ही परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, उनका परमात्मा शिव बाप 100% जिम्मेवार है. और वो बच्चे बेफिक्र होकर पुरुषार्थ करें, ये न सोचें कि अभी तक पुराने संस्कार आ रहे हैं या परिवर्तन नहीं हो रहा है. तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का अनायास और आश्चर्यजनक सूक्ष्म और स्थूल रीति परिवर्तन होगा. इसीलिए एक रस पुरुषार्थ करते रहो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं अपने

0: स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं, बेड के सामने टेबल रखी, उठा, मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था, तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का?
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो
2: खुशियाँ बांटो।
3: खाबों का सफर आरजी सनी के साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो को निरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ बातें होती हैं, मैसेजेस आते हैं और खुशी होती है। कहते हैं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें होती हैं आप लोगों के साथ में। कई बार हम लोग कुछ चीजें जो है कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको अच्छा लगता है और कुछ चीजें आप एसएमएस के जरिए हम तक पहुंचाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। और आज का टारगेट हमारा जो है अक्षर सी अक्षर हमने लिया है। सी से हम लोग जो भी गाने हैं 1950s एंड 60s के वो हम सुनाने वाले हैं। जब इस पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दिया, इन सारी चीजों को जानने की कोशिश की, तो उस समय मुझे लगा कि कितने खूबसूरत गाने बने हुए हैं। और सी अक्षर से जो बहुत सारे गाने हैं, जब हम लोग अंताक्षरी करते हैं और जैसे ही नाम हमारे पास या अक्षर हमारे पास आता है तो हमें लगता है कि इसके बाद कोई गाना है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे गाने बने हुए सी अक्षर से और आज हम लोग पूरे ही एपिसोड में सी अक्षर से गाने आपको सुनाएंगे। और हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्या जी हैं, जिनको आपने पहले भी सुना है तो आज भी हम लोग उनको सुनेंगे। उन्होंने काफी अच्छा कलेक्शन सी वाले अल्फाबेट से 1950s एंड 60s के बहुत ही सुंदर खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाले हैं। तो कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें सुरेश का प्यार नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। सुरेश और देश की बात जब कर

0: कहें तो देश का एक बहुत ही खूबसूरत गाना पिक्चराइज किया गया था 1950 में। तो मैं विद्या से कहना चाहूंगा, विद्या आपका बहुत बहुत स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर, हमने जैसे कि पिछली बार जो किया था रिकॉर्डिंग उसमें हमने मार्स के ऊपर से गाना शुरू किया था, तो वैसा ही अभी भी करते हैं। सिर्फ ये हमारी दूसरी माँ है, ये है हमारी धरती माँ हिंदुस्तान हमारा। हाँ, तो ये गाना है हमारा हिंदुस्तान का। एक बात कहना चाहूंगी सर, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये है, ये गाना है हिंदुस्तान के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा लाइन गुनगुनाना चाहूंगी, ये मुकेश कुमार जी की आवाज में है।
0: जी जी जी।
1: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है।
1: इस गाने को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। और ये सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया था, 1960 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। जी हाँ, और ये गीत जो है प्रेम धवन साहब ने लिखा था इसे, मुकेश साहब ने इसे गाया था और संगीत उषा कन्ना ने इसे दिया था। बहुत ही खूबसूरत संगीत है उषा कन्ना का ये, और मुझे लगता है कि जब भी हम लोग गीत सुनते हैं, और बहुत सारे गीत सुनते हैं, लेकिन इस गाने की एक अलग पहचान है। इसके जो लिरिक्स हैं शुरुआत वाले तो आपको याद हो जाते हैं, हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बातें, बहुत ही पॉपुलर गाना है और ये एक बार इस लाइन को सुनते ही आपको याद हो जाता है। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा, जैसे ही इस गीत को आप सुनेंगे, इसका शुरुआत वाला जो टेक म्यूजिक है, स्टार्टिंग वाला म्यूजिक है, बहुत ही खूबसूरत है, आपके दिल को एकदम छू जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये गीत सुनाऊंगा अभी। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में सुनील दत्त पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत नगमा देश के नाम आपके नाम। विद्या जी थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के इस सफर में। बहुत ही खुशनुमा सफर आपका होगा आज का ये खाबों का सफर, क्योंकि हमने शुरू ही एक बहुत ही खूबसूरत गाने से किया है, छोड़ो कल की बातें। जी हाँ दोस्तों, कल की बातें छोड़ देते हैं, लेकिन कल में जो अच्छी चीजें उसको साथ लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में कई चीजें जो है हम लोग आगे जरूर बढ़ते रहते हैं, लेकिन पुरानी चीजों में जो अच्छी चीजें उसको साथ लेके चलेंगे तो और अच्छी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, जब हम लोग अच्छी चीजों को लेके चलते हैं और एक सकारात्मक दिशा को लेके चलते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है सेव भी रहेगी और अच्छा काम भी हम कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। कहते हैं बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए विद्या जी हमारे साथ हैं, जो सी अक्षर के बहुत ही खूबसूरत 50s और 60s के कलेक्शंस को लेकर आई हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गाना अभी उनके पास है, मैं चाहूंगा कि उन्हीं से बात करते हैं। विद्या बताइए आपके पास कौन सा गाना है। जी
2: हाँ सर, अभी ये सी के ऊपर से नेक्स्ट है, अभी नकली नवाब फिल्म है जो कि 1962 में आई थी। हाँ, ये सॉन्ग है छेड़ा जो दिल का फसाना, हंसा दूर से क्यों जमाना। ये रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही अनोखा है और ये गाया है मोहम्मद रफी जी ने। तो आइए सुनते हैं अभी ये सॉन्ग, छेड़ा जो दिल का फसाना, हंसा जोर से क्यों जमाना।
1: जी जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद दिलाया है विद्या जी, मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा इस गीत को सुनने के बाद। और इसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया हुआ है और संगीतकार है बबुल, जो संगीत दिया है। और फिल्म आपने जैसा बताया है कि ये नकली नवाब जो फिल्म है, इस पर ये 1962 का ये फिल्म गाना है, बहुत ही प्यारा सा। इसके लिरिक्स में जो संदेश है, छेड़ा जो दिल का फसाना, हंसा जोर से क्यों जमाना, अल्लाह जाने मौला जाने, मस्ती भरा गीत है, रोमांटिक गीत है। और कहीं न कहीं ये जब भी आपको खुद को जब प्यार हो जाएगा तो शायद ये लाइनें आपके लिए सटीक बैठेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं कि किसी को प्यार हो जाता है या कोई प्यार करने लगता है तो जमाना उस पर हंसता है और उसके बीच में कई मुश्किलें भी पैदा करता है, लेकिन जो खुद इस प्यार में डूबा हुआ है उसके लिए अल्लाह जाने मौला जाने, इस तरह से वो बेफिक्री में रहता है, वो इस मौलाई मस्ती में रहता है। मुबारक जहां तुमको तेरा, उठाया फकीरों ने डेरा, मिलेगा कहाँ अब ठिकाना, अल्लाह जाने मौला जाने। वो बिल्कुल मस्त मौला रहता है जिसको प्यार हो जाता है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और फील करते हैं कि किस तरह से एक दिल का जो तराना छिड़ जाता है तो फसाना बनता है, लेकिन जमाना उस पर किस तरह की बातें करता है। और उसकी फिक्र न करते हुए जो दीवाना है वो इस खूबसूरत यात्रा की ओर बढ़ते जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बुनियादी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। और आज के इस कार्यक्रम में जो है सी अक्षर से जो गाने हमको बता रही हैं विद्या जी हमारे साथ हैं। और बहुत ही पॉपुलर 50s एंड 60s के सिलेक्टेड सॉन्ग्स उन्होंने अपनी तिजोरी में रखा हुआ है और उससे एक एक जो सी अक्षर वाले गाने जो है हम तक पहुंचा रही हैं। तो कहते हैं हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें करते हुए। और विद्या जी कैसे फील कर रहे हैं आप?
2: बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अभी इतना मतलब ऐसे बात करके सब को सबसे दिल खोल के बात करना। और ये गाने जो कभी सच में ऐसे कभी सोचे नहीं थे कि सी के ऊपर से इतने गाने होंगे। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि सी के अवसर से जब अंताक्षरी खेलते हैं तो हमको लग रहा है अरे खत्म हो गए, अरे अभी तो गाना है ही नहीं सी के ऊपर से।

0: तब पता चलता है कि कितने सारे गाने हैं। ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है ये, जो कि सी अक्षर से हमने सॉन्ग ढूंढे अभी कुछ मतलब सच में ऐसा सोचा नहीं था कि इतने सारे सॉन्ग है और सब पॉपुलर है, सब पॉपुलर सॉन्ग है।
1: अच्छा विद्या जी, तो आगे हम लोग कौन से गीत की तरफ आपका इशारा रहेगा? सी अक्षर,
0: सी अक्षर का अभी अगला गाना है छेड़ो गंगा की लहरें सॉन्ग फिल्म का गाना है ये, जो कि 1964 में आई थी। किशोर कुमार जी का गाना है ये। जैसे पुराने जमाने में हर चीज के ऊपर सॉन्ग रहते हैं, जुल्फों के ऊपर अलग, चांद के ऊपर अलग, कोई ये कोई वो, बहुत ही रहते हैं। और जुल्फे उनमें से बहुत ज्यादा सॉन्ग है जो जुल्फों को हमेशा काली घटा ऐसे ऐसे बहुत ही है, मतलब सॉन्ग पुराने जमाने में। तो ये एक वो गाना है छेड़ो ना मेरी जुल्फे, मैं कुछ आपको लाइनें गा के सुनाती हूँ।
1: जी जी सुनाइए, स्वागत है आपका।
0: छेड़ो ना मेरी जुल्फे

0: ऐसा गाना है ये, बहुत ही अच्छा गाना है ये।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही प्यारा से गीत आपने याद कराया है, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं ख्वाबों का सफर, उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। और मुझे लगता है कि यह गाना जो है किशोर कुमार और कुमकुम पर पिक्चराइज किया गया था, और बहुत ही प्यारा सा गाना है, 1964 में गंगा की लहरें जैसे आपने बताया है। और इस गाने को मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर और किशोर दा ने इसे गाया था, फिल्म जो है गंगा की लहरें, और इसको संगीत से संवारा था चित्रगुप्त ने। चित्रगुप्त उस समय बहुत ही नए थे और बहुत ही कम फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है, लेकिन अच्छा संगीत दिया है। और जैसे कि आपने बताया कि छेड़ो न मेरी जुल्फें लोग क्या कहेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसमें हम लोगों की भावनाएं, जब हम लोग एक प्रेमी प्रेमिका से प्यार करता है तो अलग अलग हरकतें करता है, और छोटी मोटी जो मस्ती या प्रेम भरा जो हरकतें हैं, कहीं न कहीं लोगों को उन चीजों को देखकर थोड़ा सा अलग फील होता है, और प्रेमिका भी अपने प्रेमी से ये शिकायत करती है कि आप अगर मेरी जुल्फों को छेड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह की बातें जो है एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो संवाद है उसको गाने के रूप में कितना अच्छी तरह से मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिख के बताया है, और इसे लता और किशोर जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको गाया है। तो विद्या जी, मैं चाहूंगा कि हम बातें करने से ज्यादा गाना ही सुना देते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अभी सब लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे कि गाना सुनना है अभी, ठीक है, ऊपर से कौन सा गाना है नेक्स्ट।
1: तो चलिए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबों का सफर, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारी मंजिल बहुत दूर है, हम सपने देखते हैं लेकिन उसमें जान नहीं होती है। यानी इसका कहने का भाव ये है कि सपने में जान तब आएगी जब आप उसके लिए पूरे बीसों नखुनों का जोर लगाकर आप मेहनत करते हैं। जब मेहनत करते हो तो आपके सपनों में जान आ जाती है, और जब आपका मेहनत पूरा हो जाता है तो वो सपने साकार रूप में आपके सामने होते हैं, आप उसका अनुभव करते हैं। तो इसी तरह एक छोटी सी बात अगर मैं बता दूं, तो जब मैं बहुत छोटा था, शायद 8वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था, उस समय मैं पिताजी के साथ में वो टू व्हीलर सीख रहा था कहने के वगैरह। तो उस समय लगता था कि ये अपना काम का ही नहीं है, शायद मैं सोच रहा था कि ये नहीं चला पाऊंगा। बहुत बार ऐसे हो गया, फिर एक बार बाइक से बाबा जो है हमको लेके जा रहे थे, और फिर मैं कुछ समय हो गया, मुझे लगा कि मुझे आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, अचानक समय एक रोड के पास गया, अकेला ही लेके जा रहा था, ये मस्ती में कि मैं मुझे आ गया है। तो मैं पूरा ध्यान रख रहा था कि ये ब्रेक है, ये गियर है, और ऐसा करना है वैसा करना है, पूरा दिमाग में वो गाड़ी के स्ट्रक्चर का और उसके जो पैरामीटर्स है उन सारी चीजों को ध्यान में रख के गाड़ी चला तो रहा था। लेकिन एक बार ऐसे हो गया कि वो बस रेस ज्यादा हो गया और गाड़ी घबराने लग गया, और घबराते ही मैं गिर गया और पूरे पैर में जो है खून खून छिलके वगैरह निकल गए। और तब मैं सोचा आप गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो भाव ये है कि हम लोग जो सपने संजोए रखते हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, और फिर उसके बाद फिर वापस पिताजी ने मुझे हिम्मत दिया, फिर थोड़ा सा मरम्मत किया, पट्टी वगैरह लगाए, 2-3 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर से पिताजी ने कहा कि मैं रहूंगा तब चलाना। तो रोज शाम को हम लोग आधा घंटा देते थे इस चलाने के लिए, और अभी मैं अच्छी तरह से चला पा रहा हूं। अभी गाड़ी तो मैं माउंट में पहाड़ी पे भी ले जाता हूं बाइक, और आ जाता हूं, और बाइक चलाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस समय जब उन चीजों को देख रहा था, जब सीखता था, तो उस समय लगता था बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहने का भाव यही है कि हम मंजिल पाने के लिए या कुछ चीजें सीखने के लिए आपको जो है छोड़ना नहीं है, थोड़ा सीखते रहें। और कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं, आपको मार लग जाएगा, कुछ बोलेंगे कोई, तो उन चीजों को थोड़ी देर के लिए जब भी ऐसा होता है तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, हल्का सा, और अपने आप को ठीक कीजिए, फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। तो चीजें जो है कंटिन्यू करते रहने से सीख जाएंगे, और आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। हौसला बुलंद है तो आप उड़ सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना नूतन और मनीष पर पिक्चराइज किया गया सरस्वती चंद्र का। हर लाइन जैसे लगता है कि जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि विद्या, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अंताक्षरी के बारे में, फिर से हमें याद आ रहा है सी अक्षर से कितने सारे खूबसूरत गाने बने हुए हैं। आज हमें समझ में आता है जब हम लोग इस पर काम करते हैं।

0: बातें करते हैं तो मैं चाहूंगा कि एक और गाना जो है आपके जो खजाने में है वो गाना बताइए, आप कौन सा गाना सुन रहे
1: हैं? अभी नेक्स्ट है वो भी बहुत ही उस जमाने का हिट गाना है, ये अभी भी हिट है। अगर एक लाइन भी सुन जाओ तो सबको लगेगा कि बापरे पूरा गाना कब सुनेंगे। बहुत ही सुंदर गाना है ये, जो की काजल फिल्म से है 1965 में, मीना कुमारी जी और राज कपूर जी के ऊपर पिक्चराइज है ये गाना। छू लेने दे नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है ये गाना है। वो रोमांटिक सॉन्ग है ये और बहुत ही खूबसूरत गाना है।
0: हाँ, बहुत ही पॉपुलर जो रोमांटिक सॉन्ग आपने याद कराया है, उस जमाने में बहुत हिट था और काफी जो उस समय रेडियो चलते थे तो उस समय जो है सभी लोग जो है रेडियो पर इसी गाने को ज्यादा सुना करते थे और ये गाना बहुत पॉपुलर था उस समय और गाना ये बहुत बार बजाया गया रेडियो पर। 1965 का काजल फिल्म का और साहिर लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है और रवि का संगीत है। तो आइए बहुत ही खूबसूरत गाना रोमांटिक सॉन्ग 1965 का आपके लिए अभी आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग आप अभी सुना, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दोस्तों, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। याद रखिए, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। नदी को रोकने से समुन्दर नहीं बनता, नदी को रोकने से समुन्दर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाने जो है आप सुने हैं, 1950s एंड 60s का कलेक्शन। और अच्छा लगता है जब हम लोग इन पुराने गानों को सुनते हैं, कहीं न कहीं इसमें जो जिंदा जीली है वो हमारे दिल को स्पर्श करती है। और विद्या, अब आगे कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
1: अभी अगला सॉन्ग है जो कि आशा जी ने गाया है, ये है रागिनी फिल्म का, 1958 में आई थी ये फिल्म रागिनी, और हिट गाने हैं इसके सब। तो ये गाना है, छोटा सा बाल माँ अखिया नींद चुरा ले गयो, रतियन नींद न आए छोटा सा बाल माँ, ये गाना है। ये इसमें मतलब ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, इसमें आशा जी ने जो सुर लगाए है ना, बस आप सुनते ही रह जाओगे। ये गाना बहुत ही सुंदर गाना है, ये आशा भोसले जी के आवाज में है ये गाना।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्लासिकल सॉन्ग आपने याद कराया है, और सेमी क्लासिकल गाना है ये। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने फिल्म का नाम बताया रागिनी, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि ये फिल्म जो है 1960s का ही है, और इसे जो है उस समय अशोक कुमार, किशोर कुमार, पद्मिनी, महजबीन, नजीर हसन और सचदेव, ये सभी लोग काम कर रहे थे इस फिल्म में। और आशा भोसले, गीता दत्त, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब और उस्ताद आमिर खान, इन सभी लोगों ने इसमें गाना गाए थे। मतलब इतने सारे सिंगरों को चांस मिला था इस फिल्म में गाने के लिए। और जो गीत आप अभी बता रहे हैं रागिनी फिल्म का, कमर साहब ने इसे लिखा था और ओपी नैयर साहब संगीत इस फिल्म को दिया था, और फिल्म के डायरेक्टर थे राखन साहब। और बहुत ही अच्छा ये फिल्म बना था उस समय, और बहुत ही प्यारा सा इसका लिरिक्स भी है। और जैसे आपने कहा कि आशा भोसले ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस गीत को गाया है, तो आइए सेमी क्लासिकल सॉन्ग को अभी हम लोग सुनेंगे। और पुराने जो क्लासिकल गीत होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं। 1958 का रागिनी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबू का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग पुराने गानों को सुनते हैं। तो एक जो समय है जब हम लोग इन गानों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन आज जानने के बाद बहुत खुशी होता है कि कितने खूबसूरत गाने उस समय बने हुए हैं। हर लहजे में, हर फीलिंग के साथ, हर मस्ती के साथ एक नया गाना जो है कलाकारों ने, जो भी लिरिक्स राइटर ने लिखा हुआ है। और पहले ऐसा होता था कि फिल्म की स्टोरी बन जाती थी और स्टोरी देने के बाद गीतकार जो है उस मोड़ पे वो गाने लिखा करते थे। आजकल तो रेडीमेड गाने मिलते हैं और फिल्म कुछ और बताता है, गाने कुछ और बताता है। कहीं न कहीं थोड़ी सी लिंक की कमी हो गई है और जुड़ाव का कमी हो गया, इसलिए लोग आज म्यूजिक जरूर सुनते हैं लेकिन फिर उससे जुड़ नहीं पाते हैं, है ना विद्या जी? आपका क्या कहना है?
2: सच में अभी आजकल के गाने तो मतलब मीनिंग तो पता ही नहीं रहता कुछ कुछ गाने का। ऐसा कुछ नहीं है अच्छे अभी भी, पर जो थे पहले के ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, बस वही है। कुछ अलग ही बात रहती है और हर वर्ड में कोई ना कोई मीनिंग निकलता ही है। सच में सॉन्ग का पहले तो ये रहता है कि मीनिंगफुल रहना चाहिए। वो म्यूजिक तो रहता ही है, सबका अच्छा रहता है और मीनिंगफुल रहना चाहिए सॉन्ग तो। अभी यही है, यही खासियत है ओल्ड इज गोल्ड की, ये सब सॉन्ग तो एकदम मीनिंगफुल है
1: जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। कौन सा गीत आप अभी हम सभी को सुनाने वाले?
2: मैं कुछ सुनाना चाहूंगी थोड़ा सा।
1: जी, सुनाइए, स्वागत है आपका।

0: पर है पिक्चराइज ये गाना और मोहम्मद रफी जी ने गाया है ये गाना।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, और आपने जैसे कहा देवानंद और ऋषिकेश मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, और 1962 में रिलीज हुई थी ये फिल्म असली नाखें। ये बहुत ही अच्छा फिल्म था जो उस समय पॉपुलर रही, देवानंद के लिए एक हिट फिल्म साबित रही। और असली नकली में ये गाना जो लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को कुछ बातें याद आ गया होगा। और कहते हैं कि आंखें बनी पैमाने, दिल हुए मस्ताने, राह बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने, मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

का मिलने तुझे जो गया जख्मी वही हो गया छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का जिसने सुना खो गया पूरा नशा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, ख्वाबों का सफर, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे अभी और हम लोग आखिरी मोड पे हैं कार्यक्रम के। और विद्या जी ने बहुत ही खूबसूरत गाने जो है आपको सुनाया है। विद्या जी को बहुत बहुत थैंक यू कि इतना अच्छा कलेक्शन हम सभी को बताया आपने सी अक्षर वाला। आगे इस सी अक्षर को आगे भी हम लोग सुनेंगे और भी बहुत सारे गाने हैं उनके पास, उनको अगले एपिसोड में हम लोग सुनेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं

चाहूंगा। भोले भाले कातिल जीना कर दिया मुश्किल, जब भी तू शर्माई दिल हुआ मेरा बिस्मिल। खाली नहीं जाता निशाना तेरे प्यार का, मिलने तुझे जो आ गया, मिलने तुझे जो गया जख्मी वही हो गया। छेड़ा मेरा दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं कहूंगा आपसे सलाम नमस्ते खम्मा गणेशा। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हाथ की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार अलक प्रेमी रसिक श्रोते हो, नमस्कार। तुम्ही ऐकत आहात पुणेरी आवाज अर्थात 107.8 FM, आणि तुम्ही आता जे जगदीश सोबत खास अलक प्रेमी रसिक श्रोत्यांसाठी आणि अलककारांना म्हणजेच अलककार मित्रांनो तुम्हाला संधी मिळावी यासाठी वाहिलेल्या कुरकुरीत खुसखुशीत रंगदार तजेदार मजेदार उठावदार बहारदार दमदार आणि गेल्या 4 वर्षांपासून अलकप्रेमी रसिक श्रोते हो तुमच्या आणि अलककार मित्रांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या कार्यक्रमात अलकची झलक मध्ये अलक तुमची रसिक श्रोते हो झलक आमची। अलकप्रेमी रसिक श्रोते हो, विवाह संपन्न झाला, विवाह सोहळा थाटामाटात पार पडला। तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या जवळच्या अलककार मित्रांनी आणि अलककार रसिक श्रोत्यांनी माझ्या मुलीला आशीर्वाद दिले,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: है
1: वो कत्ल करके चले ये वफा खूब है।
0: हाय नारा तेरी के अड़ा

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।
1: खुश रहो खुशियाँ।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वॉट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आदि, तुझे पता है
3: क्या,
2: आज मैंने मेरी फेवरेट सब्जी बहुत दिनों बाद खाई।
3: कौन सी?
2: कद्दू।
3: कद्दू की सब्जी?
2: हाँ।
3: ये तेरी फेवरेट सब्जी है?
2: हाँ।
3: मेरी तो पनीर है।
2: फेवरेट तो बहुत है, खा हर एक लेते हैं, बट लेकिन कोई ना कोई बड़ी मुश्किल से खाने मिलती है। इस कारण वो
3: फेवरेट होती
2: है, उसका अलग ही मजा है।
4: हेलो बच्चों।
5: हाय दीदी।
4: क्या बात है, मुझे लग रहा है आज सब लोग कुछ अच्छा अच्छा खाने में खा के आए और बड़ी खुश दिखाई दे रहे हो।
5: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी। चलो, मतलब सबके फेवरेट सब्जियां तो डेफिनेटली अलग अलग होंगी। यश, आपकी कद्दू है, मैंने अभी अभी सुना।
2: हाँ जी।
4: है ना?
2: हाँ जी।
4: चलो बच्चों, एक काम करते हैं, आपके फेवरेट खाने पीने यानी फूड के बारे में आज हम लोग बात करते हैं।
2: ठीक है दीदी।
3: ठीक है।
4: ठीक है, तो चलो पहले मुझे ये बताओ, खाने के बारे में, खाना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, किसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
2: मेरे को। वैसे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि खाने के बिना कोई रह नहीं सकता ना। दिन में सब लोग 5 बार खाते हैं।
3: मैं तो पानी पी।
2: 3 बार का खाना होता है, 2 बार आप शायद एक्स्ट्रा खाते होंगे।
3: मैं 7 बार खाता हूँ।
2: मैं बताऊँ दीदी, हम बच्चे बहुत काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, तो हमें जल्दी भूख लगती है, तो हम सिर्फ 3 बार नहीं खाते होंगे। जैसे सुबह स्कूल से पहले खा के जाते, फिर स्कूल में भी खाते, स्कूल से आकर भी खाते, शाम को भी खाते, रात को भी खाते।
4: मतलब बीच में जो हमारे स्नैक्स होते हैं, वो भी हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं।

0: अच्छा तो एक बात बताओ, सब लोग सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन कौन सी है?
1: दीदी मैं बताऊं?
2: दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं?
0: मैं बताऊं ना? हाँ चलो बताओ, एक एक करके सब लोग बताओ। पहले यश।
1: चलो ठीक है, मेरी फेवरेट सब्जी पहले स्थान पर पनीर, फिर दूसरी शिमला मिर्च,
0: और कद्दू कहाँ गई?
1: तीसरी पे है ना,
0: तो तुमने बोला मुझे फेवरेट लगती है। अच्छा मतलब चार पांच फेवरेट भी हो सकते हैं ना? हाँ कुछ भी फेवरेट जो आपको खाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और आदित्य आपको क्या पसंद है?
3: मुझे कढ़ाई पनीर।
0: कढ़ाई पनीर, अच्छा। और वेदांत?
2: पनीर हांडी।
0: अरे वाह, ये तो तीसरे टाइप का पनीर है।
2: हाँ, जिसमें मटके में बिल्कुल अच्छे से बड़ा मटका भर के पनीर आता है, उसके बाद पूरियां आती है।
1: अरे वाह, फिर तो खाने में मजा आएगी।
0: आकाश आपको क्या पसंद है?
4: दीदी आलू छोला पनीर।
2: आलू छोला पनीर
4: मेरी मम्मी
2: नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूँ, हम सबको पनीर पसंद है।
0: वही मैं भी देख रही हूँ, क्या बात, सबका फेवरेट पनीर है लगता है आप।
2: वेल दीदी आपको क्या अच्छा लगता है?
0: भाई पनीर तो मुझे भी पसंद है। अच्छा अब ये बताओ, खाना पीना तो हम सबको बहुत पसंद है, पर क्या आप लोगों को खाना बनाने का भी शौक है?
4: हाँ दीदी, हमें आता है।
0: आता है? सबको आता है?
2: यस दीदी।
4: हाँ दीदी,
3: नहीं आता।
2: वैसे हम लोग तो सीखते रहते हैं उड़ान केयर स्पेशल में, हमेशा हम लोग रेसिपी बनाते रहते हैं, मैं और आदित्या, तो हम लोगों को कुछ रेसिपी तो आती ही होगी।
0: अच्छा तो कभी आप लोगों ने खाना बनाया है, या कुछ खाना में कुछ भी एक भी डिश या कोई छोटी सी चीज?
4: हाँ दीदी बनाई है।
1: दीदी बनाया है?
0: अच्छा तो बताओ यश क्या बनाया आपने?
1: मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं छोटा था, मैंने आज तक अपनी लाइफ में पहले नंबर पे चाय सीखी थी बनानी, फिर उसके बाद मैंने सीखा था चावल बनाने कैसे, फिर रोटी, और उसके बाद मैगी।
0: अच्छा मतलब आप रोटी एकदम गोल गोल बना लेते हो?
1: कुछ हद तक बन जाती है, कभी कभी ही नहीं बनती तो हार जान।
0: तो जब मम्मी पापा कहते हैं तो फिर चाय बना के पिलाते हो?
1: हाँ बिल्कुल, एकदम एक्यूरेट टेस्ट के साथ।
4: चाय में चीनी डालते हो?
1: अरे हाँ हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत आपको क्या क्या बनाना आता है?
2: मोमोज बनाने आते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को जो चीज अच्छी लगती है वो मैं जरूर सीख लेता हूँ बनाना। जैसे डेली रूटीन में दाल चावल बनता है ना, दाल चावल सीख लेता हूँ, कोई सब्जी फेवरेट है आलू या पनीर की भी तो वो बना लेता हूँ, और सबसे अच्छा मोमोज बनाना आता है।
0: अच्छा और मम्मी की हेल्प कराते हो किचन में?
2: हाँ मम्मी की, एक्चुअली मैं मम्मी की इसी में ज्यादा हेल्प कराता हूँ, सफाई और किचन में।
1: बिल्कुल मेरी तरह।
0: अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश आप बताओ।
4: दीदी मैंने लाइफ में अभी तक जितनी भी चीजें खाई हैं उसमें से 80% मुझे बनाना आता है।
0: अच्छा तो सबसे अच्छा आप क्या बनाते हो?
4: डोसा।
0: डोसा बनाना आता है आपको? अरे वाह। नहीं आदित्य आपको क्या आता है, कुछ आता है आपको कुक करना?
3: सिर्फ मैगी बनानी आती है।
0: अच्छा और कभी कभी मम्मी की हेल्प कराते हो किचन में?
3: किचन में नहीं, उसके अलावा बाकी कामों में हेल्प करवा देता हूँ।
0: किचन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, है ना?
3: नहीं है।
0: चलो कोई नहीं।
2: वेल दीदी खाना बनाना तो सीखना चाहिए, कभी हॉस्टल में जाएंगे तो खुद खाना बनाना पड़ता है, किसने कहा?
0: नहीं ये तो अच्छी बात है, अगर हमें कुक करना आता है तो जब हम बड़े होंगे और कभी अकेले रहेंगे तो हमें खाना बनाना आता होगा, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी को देख के हम थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं, उनकी हेल्प करा सकते हैं
1: अभी।
0: हाँ नहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ये बताओ कि जो मेनली हम लोग खाना खाते हैं उसमें वेजिटेबल्स और पल्सेस होते हैं, यानी दाल और सब्जी।
1: हाँ जी।
0: है ना, तो क्या आप लोग उनको अच्छी तरह से पहचान पाते हो, ये कौन सी दाल बनी है आज, कौन सी सब्जी खा रहे हो आप?
2: मतलब आग बंद करके?
0: नहीं देख के आप समझ पाते हो कौन सी दाल है, उनके नाम वगैरह आपको पता है?
1: जी दाल के नहीं पता, लेकिन सब्जियों के तो सारे पता है।
2: आग बंद करके तो मैं टेस्ट से भी पता लगा सकता हूँ क्या है।
4: दीदी मैं तो सुगंध से भी पता लगा लेता हूँ।
3: मैं थोड़ा बहुत पता लगा लेता हूँ दाल का।
0: अच्छा तो सारी दालों के नाम पता है आप लोगों को?
1: नहीं।
4: हाँ
0: अच्छा अगर एक बात बताओ, आपको मम्मी बोले जाओ जाके मार्केट से ये सब्जी लेके आओ, तरोई लेके आओ, लौकी लेके आओ, तो क्या आप लोग अच्छे से ला पाओगे?
1: जी दीदी
2: वैसे मैं तो ला सकता हूँ, पर सच ये है कि मैं ज्यादा मार्केट गया है।

0: और अगर वो सब्जी वाला मेरे को ज्यादा रेट में दे दिया तो मेरे को रेट नहीं पता अभी क्या चल रहा है सब्जियों का, इसलिए मैं नहीं जाता सब्जी लेने।
1: दीदी मैं लौकी के अलावा जो सब्जी मम्मी बोले सब ले दूंगा।
0: लौकी क्यों नहीं आकाश?
1: बकवास सब्जी लगती है लौकी। लेकिन किसी सब्जी को बकवास नहीं बोलना चाहिए।
0: और लौकी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है
1: क्योंकि लौकी तो बहुत हेल्दी होती है। है ना? और वैसे भी जो टेस्ट होता है वो तो हमारी जबान का होता है, लेकिन जो हेल्थ है वो पूरी बॉडी के लिए होती है। मतलब छोटी सी जुबान इम्पोर्टेंट है या पूरी बॉडी की हेल्थ?
2: हेल्थ,
3: पूरी बॉडी की हेल्थ।
1: छोटी सी जुबान, तो छोटी सी जुबान के लिए फिर हमें जो हेल्थ मिलेगी ना वो भी छोटी सी होगी। चलेगा दीदी? अभी तो चलेगा, जब बड़े हो जाओगे तो बेटा चलेगा नहीं। अच्छा ये बताओ आप लोग, मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, है ना?
0: जी
1: जी जी जी जी। थोड़ा सा अपने बारे में और अपने स्टेट के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप लोग? सबसे पहले यश आप बताओ।
2: मैं महाराष्ट्र और पंजाबी हूँ और बर्थ मेरा महाराष्ट्र का है, तो मैं दोनों तरफ जाता हूँ।
1: और आकाश आप?
4: दीदी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ।
1: और आदित्य आप?
3: मैं उड़ीसा से।
1: और विदान?
0: मैं तो कई स्टेट्स में रहा पर यूपी में मेरा जन्म हुआ है।
1: अच्छा, तो वैसे मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज होंगे आपको वहाँ के डिशेस के बारे में भी, है ना?
0: हाँ दीदी।
1: तो सबसे ज्यादा जो आपके स्टेट में डिशेस बनती है उसमें आपको जो पसंद है या आपको पता है कौन कौन सी स्पेशल डिशेस होती है वो बताओ हम लोगों को।
4: दीदी मैं पहले। दीदी हमारे वहाँ पे दही लिट्टी बहुत फेमस है।
1: अच्छा, और वो क्या होता है?
4: अरे जैसे यहाँ पे बाटी बनाते हैं राजस्थान में, वैसे ही हम लोग लिट्टी भी बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर चने का आटा यानी सत्तू भरा रहता है।
1: अच्छा, और उसके साथ दही से खाते हैं?
4: हाँ।
1: अरे वाह,
4: वो भी एकदम खट्टी दही से।
1: अच्छा।
4: हमारे गांव के तरफ सुरेमनपुर स्टेशन पे जाइएगा ना तो ठेला लेके ऐसे चिल्लाएंगे, दही दही लीटी लीटी लीटी दही दही लीटी।
1: अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत डिफरेंट डिश है। अच्छा यश आप बताओ।
2: पहले पंजाबी में फेमस डिश ये है, मक्के की रोटी खाते हैं और उसके साथ सरसों का साग।
1: मक्के की रोटी और सरसों का साग?
2: हाँ जी।
1: अरे
2: और थेपले भी बहुत खाते हैं वहाँ पे। और महाराष्ट्र में पूरण पोली वहाँ की फेमस डिश है। वहाँ तो हर एक मराठी के घर जाओ तो वहाँ पे फेमस, मतलब इसी के साथ स्वागत करते हैं। हाँ।
1: अच्छा, और ये डिश कैसी होती है खाने में?
2: एकदम मीठी होती है, मेरी तो फेवरेट डिश है।
1: यूपी में कौन सी डिश आपको पसंद है?
0: यूपी के भी तीन भाग है ना, मतलब इस साइड लखनऊ के साइड में मैं बताता हूँ, वहाँ पर तेल का खाना बहुत मिलता है, जैसे चटपटे खाने जो होते हैं जैसे कि छोले भटूरे, पूरी छोला, बहुत ऑयली फूड वहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। और आपको वहाँ पर सिर्फ एक तरीके के फूड नहीं, कई तरीके के हर फूड वहाँ आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। और अभी ज्यादातर वहाँ पर कबाब पराठा मिलता है। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता देता हूँ, वहाँ पर सैलेड बहुत ज्यादा खाया जाता है क्योंकि वो उतना हिस्सा जंगल है तो वहाँ पर बहुत आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ पर सैलेड बहुत खाया जाता है हर खाने के साथ, मतलब वो लोग कच्चा सैलेड भी खा लेते हैं, उनको सैलेड बहुत पसंद होता है। तो भैया आपका बॉर्न कहाँ पे है? एक्चुअली मैं लखनऊ में पैदा हुआ पर पापा की जॉब की वजह से 10 ईयर्स छत्तीसगढ़ में रहा।
2: तो मतलब आपने पहले ऑयली फूड भी बहुत खाया होगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाने के बाद?
0: मम्मी ने दोनों चीज सीख ली, छत्तीसगढ़ की भी खाना है और मतलब अगर ज्यादा स्टेट्स में रहो तो सारा खाना सीख लेते हैं, दोनों स्टेट्स के खाना आ जाता है।
2: वहाँ के लोग तो हेल्दी भी बहुत होंगे फिर।
0: हाँ,
1: मतलब आप सबको ये पता है कि ऑयली फूड से ज्यादा जो सलाद होता है, जो हेल्दी चीजें होती हैं, वो फायदा
2: देती है।
4: अरे यश, इसका मतलब ये नहीं कि साइज में हेल्दी, हड्डी में मजबूती आनी चाहिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल। और जब हम सैलेड खाते हैं, अच्छे पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो एक्चुअली ताकत अंदर ही आती है कि नहीं बच्चों?
0: इम्यूनिटी तेज होती है।
1: बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ हेल्दी डाइट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो?
0: हेल्दी डाइट मीन्स बैलेंस डाइट.
1: अच्छा, और बैलेंस डाइट क्या होती है?
0: जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, ऐसा मत, ये नहीं कि सबसे कम खाना खाओ या सबसे ज्यादा खाना खाओ. नॉर्मल जो एवरेज हमें खाना चाहिए, ना तो ज्यादा फैट वाला फूड, ना तो ज्यादा कैलोरीज वाला फूड. नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, वो बैलेंस डाइट कहलाता है, जो हम हमेशा खाते रहते हैं.
2: विदान भाई, आप साइंस के स्टूडेंट हो?
0: हाँ, मैंने साइंस ली है.
1: और आकाश, आप बताओ, हेल्दी डाइट से आप क्या समझते हो? दीदी, हेल्दी डाइट से दीदी मेरे को लगता है दूध की ज्यादा चीजें खाना.
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे घर में बोलते मोटा हो दूध पी बटर खा, ऐसे बोलते. अच्छा यश, आप बताओ.
2: दीदी, हमारे यहाँ पे तो मतलब यही कहते हैं, अच्छे से घी का खाना खाओ, थोड़ा तेल लगाओ, मक्खन खाओ, मक्खन पंजाबी भाषा में मक्खन खाओ,
0: मक्खन
2: हेल्दी रहो.
4: माँ के हाथ के बड़े वालों के परौंठे से मक्खन लगा के सड़ा पंजाबी बल्ले बल्ले.
1: और आदित्य, आपको क्या पता है हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट के बारे में?
3: बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स.
1: बिल्कुल सही बात है बच्चों. बैलेंस डाइट मतलब हर वो चीज जो हमारी बॉडी को चाहिए वो प्रचुर मात्रा यानी एक्यूरेट मात्रा में हमारे साथ हो, यानी प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, और हर चीज का एक मिक्स हमें चाहिए. तो उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, दाल भी होने चाहिए, रोटी भी होने चाहिए. वो चीजें जो हमें फायदा करे वो सभी हमारे थाली में मौजूद होने चाहिए. तो ऐसा तो नहीं करते कि मैं ये दाल खाऊंगा और वो सब्जी नहीं.
0: नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता. मैं तो करता हूँ. मेरे को अरहर की दाल ज्यादा अच्छी लगती है, बाकी मसूर की दाल, चने की दाल थोड़ा कम अच्छी लगती है.
1: ऐसा और भी लोग करते हो क्या?
2: नहीं दीदी, मैं तो सब खाता हूँ.
1: और आकाश?
4: मैं भी सब खाता हूँ दीदी.
0: मेरी सबसे फेवरेट सब्जी करेला की सब्जी है. मैं तो दाल चावल के साथ भी खा लेता हूँ.
1: अच्छा, अब ये बताओ, क्या ज्यादा पसंद है, घर का खाना या फिर फास्ट फूड बाहर खाना?
4: घर का खाना.
2: का खाना.
0: मुझे तो फास्ट फूड बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ. मतलब हफ्ते में एक बार, कभी ज्यादा पिज्जा बर्गर नहीं खाता. वैसे हर बच्चों को पसंद है फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर, चाउमीन वगैरह, लेकिन हम लोगों को यूजुअली घर का ही खाना ठीक रहता है.
2: दीदी, मैंने तो पिज्जा आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ दो बार खाया.
4: दीदी, मैंने तो खाया ही नहीं है.
0: मैंने तो सिर्फ दो तीन बार खाया होगा.
1: और आदित्य, आपने?
3: 5-6 बार.
0: बरसात के मौसम में तो कभी नहीं खाना चाहिए बाहर का.
2: नहीं दीदी, लेकिन पिज्जा बर्गर के बारे में बहुत सी बातें निकली है. जैसे पिज्जा है तो पिग होती है, उसकी मांस से बना गया, ऐसे भी बताया गया था बीच में. तो
4: उसमें चक्के देखा था?
2: ना ना.
4: तो
2: मैं तो इंटरनेट पे देखा था.
4: माय गॉड,
2: मेरी मम्मी ने दिखाया था.
0: वैसे दीदी, टीवी में हर फास्ट फूड के लिए अलग अलग डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स बताए जाते हैं.
2: वो तो हर जगह मिलेंगे ना.
0: कि घर का खाना एक ऐसा होता है जिसके लिए हमारी मम्मी का बना खाना कोई भी नहीं कहेगा कि ये गंदा खाना है. चाहे जो अगर मेहमान भी आते हैं तो हमारी मम्मी के खाने को पसंद करते हैं.
2: जी,
0: तो सबसे अच्छा खाना होता है.
1: हाँ बच्चों, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? अभी तो आप लोग घर में हो, साथ में हो, तो आपको मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा खाना मिलता है. लेकिन अगर कभी जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें बाहर रहना पड़ता है या फिर कभी काम करना पड़ता है, तो हमें तब उस खाने की वैल्यू बहुत रियलाइज होती है.
2: दी दी
1: दी दी दी. फुल बेनिफिट उठाओ, क्योंकि मम्मी से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता. और फास्ट फूड के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो तो आप लोगों को पता ही है.
2: दी दी दी.
1: है ना, क्योंकि हमारे ब्रेन पे भी वो असर करता है, बॉडी पे भी असर करता है,
0: मेंटली फिजिकली.
2: दीदी, मैगी को पचने के लिए 2 दिन लगते हैं पूरे, यानी 48 आवर्स.
1: अच्छा, क्योंकि जो मैदा होता है, मैदे से बनी जो भी चीजें होती हैं, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाती है.
0: और इसीलिए शायद हमारी मम्मी मैदा का खाना भी, जैसे छोले भटूरे बहुत कम बनते हैं. अगर आप 4 दिन लगातार छोले भटूरे खाओगे
2: तो पेट खराब हो जाएगा,
0: इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है.
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर सारे दिन आपको एक जैसा खाना मिले ना, तो वो भी खाने का मन नहीं करेगा.
2: जी, बोर हो जाते हैं.
0: अलग अलग दाल, अलग अलग डिश सब लोग खाते तो ये अच्छा लगता है.
1: और बच्चों, पता है एक और अच्छी बात ये है खाने की, कि टेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं. कोई चीजें हमें पसंद होती हैं, कोई कोई चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम वो खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, ये समझ के कि वो अच्छी है, तो हमें वो अच्छी लगने लगती है.
0: हाँ, ये तो है.

0: पहले मेरे को शिमला मिर्च टमाटर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जैसे कि मेरे को ना बाहर फास्ट फूड में सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते थे, तो जब मैंने वहां के लोगों को देखा कि वो ऐसे ऐसे बनाते, टमाटर डाल देते हैं, तो फिर मम्मी कहती है तुम टमाटर तो नहीं खाते, फर्स्ट में तो पड़ा होता है, तो मम्मी फिर कहती है अब तुम घर में बना के खाया करो, और धीरे धीरे मेरे को टमाटर और शिमला मिर्च अच्छा लगने लगा।
1: बिल्कुल यही होता है कि धीरे धीरे हमें वो चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं, है ना?
2: जी।
1: और फिर एक और बात ये भी होती है कि हमें नहीं पता कितना साफ सफाई है और कितनी सारी चीजें होती हैं बाहर, धूल धक्कर मिट्टी बहुत सारी चीजें होती
0: हैं। और खाना को बनाने के लिए मन की शुद्धता की भी जरूरत पड़ती है, मन कुछ और ना सोच रहा हो, जैसा विचार वैसा आहार।
1: बात तो वेदांत ने सही कही बच्चों, है ना? क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका असर तो पड़ता ही है। और मम्मी तो को कितनी प्योर फीलिंग से हमारे लिए खाना बनाती होंगी, है ना?
2: हाँ जी। तो और अगर नकार दे तो उनको कितना बुरा लगता होगा ना?
1: बिल्कुल। तो इसीलिए अब सब लोग घर में हर चीज खाना।
0: आज तो हम लोगों ने खाने के डिश के बारे में भी जाना और उनके वैल्यूज के बारे में भी जान लिया।
1: बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग टाइम पे खाना खाते हो या फिर कभी कभार लेट हो जाता है या मिस भी करते हो कोई मील?
0: मैं तो दीदी तीनों चीजें कर लेता हूँ। मिस हो जाता था, जैसे सुबह स्कूल होता था तो मैं सुबह नहीं खा पाता हूँ, मैं कभी भी स्कूल जाता हूँ तो खा के नहीं निकल पाता हूँ, क्योंकि शायद ये कारण है कि मैं लेट उठता हूँ, इसे खा नहीं पाता और जल्दी स्कूल भी रहता है।
1: और आदित्य आप बताओ, कभी कोई मील मिस करते हो या फिर सब चीजें टाइम पे खाते हो हमेशा?
2: कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, मिस
1: बाय मिस्टेक मिस हो जाता है। वैसे हमेशा रेगुलर खाते हो?
2: हाँ।
1: अच्छा, वेरी गुड। और आप बताओ यश?
2: दीदी बस सुबह का, उसके अलावा तो प्रॉपर टाइम पे।
1: अच्छा, मतलब दोपहर का खाना, रात का खाना, सब चीजें टाइम पे खाते हो?
2: जी दीदी। अच्छा। टाइम पे सो भी जाते हैं।
1: अरे वाह, वेरी गुड। और आकाश आप बताओ?
3: हाँ दीदी, कभी कभी स्कूल के काम से कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो खाना मिस हो जाता है कभी कभी, बाकी प्रॉपर।
1: अच्छा, वैसे तो प्रॉपरली खाते हो हमेशा टाइम पे, है ना? क्योंकि टाइम पे खाने की जो वैल्यू है ना, वो बेटाइम खाने की बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग तबीयत खराब होती है या आप लोग बीमार हो जाते हो तब क्या खाते हो?
0: खिचड़ी। अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले खिचड़ी बनाया था उड़ान के स्पेशल में, मैंने बताया कि कैसे खिचड़ी
2: हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है,
0: इसलिए अच्छी होती है।
3: दीदी मैं तो अभी अभी ताजा ताजा खिचड़ी खा के आया।
1: अरे वाह। अच्छा वैसे जब तबीयत खराब होती है तो खाने का मन तो नहीं करता है ना?
2: हाँ दीदी, मेरा तो खेलने का मन करता है।
1: अच्छा, लेकिन तब तुम लोग खाना खाते हो या नहीं खाते हो?
2: खाता हूँ दीदी, थोड़ा कम।
0: जब तबीयत खराब रहती है ना तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, मम्मी कहती है कि तुम चटपटा बुखार के समय खाओगे तो और ज्यादा बीमार हो सकते हो।
3: हाँ दीदी ऐसा होता है, और है ना त्योहार भी उसी टाइम पे आता है,
2: क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, एक्साइटमेंट के कारण हम बहुत उछलते हैं तो बॉडी पे लोड आता होगा इसलिए।
1: और आदित्य आप बताओ?
4: मेरा जब बस गला खराब हो जाता तब कुछ खाने का मन नहीं करता।
1: लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं तो खाना तो जरूरी होता है।
4: हाँ,
1: तो इसलिए जो मम्मी बताए ना वो खा लेना चाहिए, है ना?
0: यस।
1: और जब हम तबीयत हमारी ठीक हो जाएगी तब तो फिर सब कुछ खा सकते हैं।
4: हाँ।
1: अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई चीज आपने खाई हो बाहर या इधर और उस कारण से आपकी तबीयत खराब हुई हो?
0: हाँ दीदी, हुआ है, बरसात में जब खाते तो हो जाती तबीयत खराब।
1: और यश आप बताओ?
2: दीदी मैं तो बहुत कम खाता हूँ बाहर।
1: अच्छा, और आकाश?
3: दीदी मेरा तो घर से बाहर खाने का कभी होता ही नहीं है, बस अगर स्कूल की पिकनिक में जा रहे हैं या कहीं टूर पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ तो खा लेते हैं बाहर का।
1: अच्छा, और एक और सवाल, क्या आप लोग प्लेट में जब खाना खाते हो तो कौन कौन सच्ची सच्ची खाना छोड़ता है प्लेट में या पूरा खत्म करते हो?
3: दीदी मैं तो हमेशा पूरा खत्म करता हूँ, शांतिवन की बात बता रहा हूँ।
1: और घर पे?
3: घर पे भी।
0: वैसे मैं तो घर में पूरा खाना खा लेता हूँ, लेकिन कभी कभी छोड़ देता हूँ अपने खरगोशों के लिए, जैसे छिलके वगैरह।
1: अच्छा, वैसे आप पूरा फिनिश करते हो ना खाना?
0: हाँ दीदी हमेशा।
2: और मैं भी दीदी,
0: एक्चुअली घर में क्या होता है कि हमें जो चाहिए होता है वही

0: हम देते हैं और इतना सा हमारी मम्मी को पता रहता है कि मेरा बच्चा कितना खाएगा, कब छोड़ते हैं हम लोग।
1: ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आदित्य?
2: मैं भी हमेशा खत्म करता सारा खाना।
1: चलो मेरे ख्याल से आप लोग खाने की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। हाँ दीदी, है ना? क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना खाना मिलता है, प्रॉपरली हर चीज हमारे पास अवेलेबल है और इतने प्यार से हमारी मम्मी हमें खिलाती है, तो उसकी वैल्यू को हमें जरूर समझना चाहिए और कभी प्लेट में कुछ छोड़ना नहीं चाहिए।
3: दीदी, मेरे पापा कहते हैं हिंदुस्तान में 70% ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ दो वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है।
1: हाँ बच्चों, बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो खाने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता होनी चाहिए।
2: हाँ।
1: अच्छा, जाते जाते एक और सवाल, जब आप खाना खाना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या सोचते हो? क्या आप कभी भगवान को थैंक यू बोलते हो उसके लिए, या फिर कुछ याद करते हो?
0: दीदी, भगवान को पहले याद करके शुक्रिया करते हैं कि हमें जो भी मिलता है वो हमें ऐसे मिलता रहे। और मैं तो हैंड वॉश भी करता हूँ।
3: मैं डेटॉल से
1: नहीं, बिल्कुल हैंड वॉश करना तो प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है। और आदित्य, आप?
2: हाँ, गॉड को प्रे करते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं।
1: गॉड को प्रे करते हो सब लोग?
0: जी दीदी।
2: दीदी,
1: अच्छा चलो बच्चों, ये तो अच्छी बात है, हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए और हमें उन सभी को थैंक यू बोलना चाहिए जिनके थ्रू ये खाना हमें मिला। वो किसान जो सब्जी उगाते हैं, वो वेंडर्स जो उनको सेल करते हैं, और
0: हमारी मम्मी लेकर भी आती है बहुत थैले में इतना भारी भारी कद्दू भर के।
2: जी दीदी।
1: तो सोचो हमारी प्लेट में वो खाना आता है, उसमें कितने लोगों का हाथ होता है?
0: 4-5 लोगों का,
1: है ना?
3: और दीदी, एक हाथ तो हमारा भी होता है खाने का,
1: लेकिन वो खाने के लिए जो हमें चाहिए वो सब मिलता कितने लोगों की बदौलत है, तो हमें उन सब का थैंक यू जरूर करना चाहिए।
0: सबसे ज्यादा प्रकृति का,
1: बिल्कुल। और हर किसी का थैंक यू करते विश भी करना चाहिए कि जो भी लोग हैं, भगवान उन सभी को अच्छा खाने को दे और सभी खुशी से रहें, है ना? तो आज से हम सब ये करेंगे।
3: हाँ दीदी।
1: अच्छा चलो ठीक है, तो खाने के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की और आपके फेवरेट फूड के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि खाने की वैल्यू क्या है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारे तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए बात करते हैं आज एक विशेष करियर के बारे में, जिसमें प्रिंसिपल के बारे में। जी हाँ, एक अच्छे प्रिंसिपल कैसे बने, प्रिंसिपल बनने की प्रक्रिया क्या है और प्रिंसिपल का जो दायित्व है, नेतृत्व है, वो क्या है और कैसे बच्चों की सफलता के लिए उनका जिम्मेवारी बनता है, तो इन सारी बातों को चरणबद्ध तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि प्रधानाचार्य बनने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, है ना? सबसे पहला एक आपको डिग्री चाहिए और कुछ वर्षों का शिक्षण अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप मास्टर डिग्री और प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र या लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और ये विशेष रूप से आपको इन सारी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले एक डिग्री प्राप्त करें, ये डिग्री विशेष रूप से शिक्षा में पूरी हो और आप गणित, अंग्रेजी या फिर अन्य किसी भी विषय में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं जिसे आप पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहला ये काम होगा। इसके बाद आते हैं एक और काम, शिक्षण का अनुभव प्राप्त करें। आप सभी जानते हैं कि एक टीचर भी होता है तो वो भी अनुभव प्राप्त करता है, तो वैसे ही आप भी अपना एक अनुभव प्राप्त करें। डिग्री पूरी करने के बाद ही ये काम शुरू हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में कुछ साल काम करें या अनुभव आवश्यक है और कुछ राज्यों में ये अनिवार्य है, और प्रधानाचार्य बनने के लिए कम से कम कुछ वर्षों का अनुभव जरूरी होता है। समझो आपने डिग्री तो हासिल की लेकिन एक 4-5 साल का या 10 साल का आपका अनुभव होता है तो आप प्रधानाचार्य पद के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप पढ़ाते पढ़ाते जो है मास्टर डिग्री का भी काम कर सकते हैं। शिक्षण का अनुभव प्राप्त करते हुए आप या फिर प्राप्त करने के बाद भी शिक्षा में मास्टर डिग्री, एमएड या शिक्षा प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेटिव में मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चॉइस है आपके पास। उसके बाद आता है एक बार आपकी

से डिग्री आप में आती है तो फिर आपको काम करना पड़ता है लाइसेंस का। जी हाँ, शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पता होगा तो प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्राप्त करना होता है। अधिकांश राज्यों में प्रधानाचार्य बनने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमाण पत्र या लाइसेंस अवश्य होता है। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो है राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन इसमें आमतौर पर एक परीक्षा पास करनी होती है और विशेष आवश्यक पाठ्यक्रम पूरा करना शामिल है। और इसके बाद फिर आपकी जिम्मेवारियां प्रैक्टिकल होती है। जब आपके पास लाइसेंस आ जाती है तो फिर लाइसेंस के बाद मजबूत नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने की जो डिसीजन मेकिंग की कौशल विकसित करें आप। प्रधानाचार्य को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये आता है फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए, एक बार प्रधानाचार्य बनते हैं तो कौन कौन सी जिम्मेवारी आपके पास आती है, इस विषय को लेकर आगे बात करते हैं। और अभी एक बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन, जीवन कौशल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पद यानी प्रधानाचार्य, उसको कैसे प्राप्त करें और उनकी जिम्मेवारियां क्या है, इसके पर बातें हो रही। देखिए, हमने लाइसेंस तक की बातें आपको बता दी और बीएड एमएड करने के बाद आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और उस बीच आपका शैक्षणिक अनुभव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल का नेतृत्व की अगर हम लोग बात करें, स्कूल में मोटे तौर पे स्कूल के दैनिक कार्यों और गतिविधियों की देखरेख करते हैं और स्कूल के मिशन और लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्प या कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है। और इसके बाद आता है एक दूसरी जिम्मेवारी जो छात्रों की सफलता के बारे में, छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं और शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां भी लागू करते हैं। इसके साथ आता है कुछ नियम और नैतिकता का पालन करना, स्कूल के नियम को लागू करना और सुनिश्चित करते हैं कि सभी स्थानीय, राज्य और संघीय शैक्षणिक कानूनों और नीतियों का पालन करना है। अभिभावक और समुदाय के साथ संवाद, अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी ये भी होता है आज के समय में कि आप अपने शिक्षक और अपने बच्चों के अभिभावकों के साथ कैसे संवाद रखते हैं, और ये संवाद अगर आपको करना आ जाता है तो फिर आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कूल के कार्यक्रमों और छात्रों की सफलता के लिए समर्थन जुटाने के लिए अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों के साथ संबंध बनाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है जहां पर आपको दोनों टीचर्स और अभिभावकों को संभालना होता है और उन्हें अपने नियम संयम भी बताने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक अच्छी संवाद कला, एक अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा मुद्र व्यवहार जो है आपका काम आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक प्रिंसिपल का करियर स्कूल का नेतृत्व करने के लिए होता है, जिसमें स्कूल के दैनिक संचालन के साथ साथ वातावरण और शिक्षकों को प्रेरित करना, स्कूल के बजट और नीतियों को प्रबंधित करना भी शामिल है और इस भूमिका के लिए प्रधानाचार्य को शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना होता है। शैक्षणिक लक्ष्य को प्राप्त करने, अनुशासनात्मक नीतियों को लागू करने और अभिभावकों और समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो आइए इस पे कुछ बातें, जैसे कि मैंने कहा था कुछ जिम्मेवारियों में, जैसे स्कूल, टीचर्स और बजट और फिर आता है स्टाफ, ये सारी चीजें जो है एक बंच है और समुदाय। स्कूल के लिए एक विजन निर्धारित करना होता है और उसे लागू करने के लिए कर्मचारियों का मार्गदर्शन भी करना होता है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी विजन को लेकर काम नहीं करेंगे तो हमारे स्कूल में जो रिजल्ट हमको देना वो नहीं हो सकता। इसके साथ शिक्षण और अधिनियम के सुधार के लिए प्रभावी कार्यक्रम विकसित करना और शिक्षकों को सहायता प्रदान करना है। फिर आता है स्कूल का बजट प्रबंधन और दैनिक कार्यों की देखरेख करना। उसके बाद आता है स्टाफ, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उनके पेशेवर विकास में सहायता बनना, साकार करना, ये सारी चीजें भी आती है। उसके बाद समुदाय सवाल भी में आता है, माता पिता, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों के साथ मजबूती से काम करना। छात्र अनुशासन भी बहुत जरूरी है, आज के समय में ये भी एक चैलेंज हो जाता है प्रिंसिपल को।

छात्र आचरण की निगरानी करना और जो अनुशासन प्रिय नहीं हो उन्हें अनुशासन प्रिय बनाना भी एक जिम्मेवारी है। और फिर इसके बाद आता है सुनिश्चित करना कि स्कूल सभी स्थानीय राज्य और संघीय शिक्षक कानूनों का ठीक ढंग से पालन कर रहा है। साथ ही ये चीजें ध्यान में रखनी है। वैसे आप जब क्या कहते हैं कि आप जब पोस्टिंग आपको मिल जाती है और लगातार आप स्कूल्स और स्कूल के बच्चों से जुड़े रहते हैं तो आपको हर सीट जो है ऑटोमेटिकली मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सीधे प्रिंसिपल बन गए और ये चीजें लागू हो रहा है, लेकिन इसके पहले की जो प्रक्रिया है जहां पर आपको अनुभव की बात आती है तो ये सारी चीजें जो है आप आपकी आंखों के सामने देखते हैं, तो इससे आपको अनुभव मिल जाता है और अनुभवी व्यक्ति हमेशा जो है सफल होता है। तो शिक्षा और शिक्षकों के साथ आमतौर पे जैसे कि प्रधानाचार्य का करियर अगर आपने चूज किया या बनते हैं आप प्रधानाचार्य, शिक्षकों के रूप में से शुरू हो जाती है। एक शिक्षक बन के आप अपना करियर की शुरुआत करते हैं, अनुभव लेते हैं और फिर प्रिंसिपल बनते हैं, जिसके लिए आपके पास जो प्रमाण पत्र और डिग्री मैंने शुरुआत में बताई थी उन चीजों को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ अभी एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन, जीवन कौशल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का खास विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि हम लोग आज शैक्षणिक विषय को लेकर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बातें कर रहे हैं, जहां पर आप कैसे एक प्रिंसिपल, एक प्रधानाचार्य बन सकते हैं। तो चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे समझते हैं तो उसमें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका विजन हो। हमारा मतलब यही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी एक हायर पोजीशन तक पहुंचकर रिटायरमेंट ले, है ना। बहुत सारे शिक्षक होते हैं और उनकी रिटायरमेंट का टाइम आते आते वो लास्ट में एक दो साल के लिए प्रिंसिपल भी बन जाते हैं, तो ये उनके अनुभव के कारण वो प्राप्त करते हैं। और अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रिंसिपल शुरुआत से ही बनना है, तो कुछ डिग्री हासिल करने के बाद साथ साथ आप अनुभवी शिक्षक बनते जाएं और धीरे धीरे आप आवेदन करने से ये चीजें आपको जल्दी भी मिल जाती है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इस चीज को बात इसलिए कर रहा था कि ताकि आप भी अपना शिक्षा के क्षेत्र में हायर पोजीशन के लिए शुरुआत से ही तैयार रहें, मनोस्थिति ऐसी आपकी मजबूत हो ताकि आप एक चार पांच साल आठ साल में आप प्रिंसिपल बन जाए। तो आइए बात करते हैं आगे। छात्रों की सफलता सुनिश्चित करना, ये भी प्रधानाचार्य का विजन होता है, मुख्य कार्य होता है, जिसमें शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए रणनीतियां लागू करना, एक प्लानिंग बनाना, शिक्षण परिणामों में सुधार करते हैं और छात्रों को अच्छा गाइडेंस करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। और इस भूमिका में छात्रों को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य स्कूल के संचालन कर्मचारियों और प्रबंधन साथियों को लेकर, माता पिता को लेकर, समाज को लेकर ही ये काम बहुत प्रभावी ढंग से हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी समुदाय से आते हैं और समुदाय के विशेषज्ञ लोगों के साथ अगर आपकी बातचीत अच्छी हो जाती है, अगर आपने एक विजन देखा है, वो विजन को अगर आप अपने अभिभावकों को, समुदाय को अगर बताते हैं, उन्हें आपका विजन पसंद आता है, तो आपका आधा काम हो जाता है, क्योंकि उन्हीं समाज से, उसी वहां के ही अभिभावकों के बच्चे आपके पास आते हैं और वो बच्चे भी उसी विजन को देखेंगे। जब आप अभिभावकों के साथ इस बात को शेयर करेंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो दोनों लोगों ने अगर आपके विजन को पसंद कर लिया, तो फिर आप पसंदीदा प्रिंसिपल

बन सकते हैं। अब कुछ चीजें जो है सफलता पाने के लिए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को कई बार जो है प्रदर्शन करने का मौका देना चाहिए और साथ में उनके ऊपर निगरानी भी रखना है। अब दोनों काम आप नहीं कर सकते, लेकिन किसी से करवा तो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत सारे सिंपल सिंपल टेक्निक्स को यूज करने होते हैं, और कई बार टीचर्स अगर कम है तो फिर पहले तो टीचर्स की पूर्ति करनी होगी, उसके बाद ही आप आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ही जाकर क्लासेस लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब शिक्षा के क्षेत्र मना शायद 8वीं 10वीं में पढ़ता होगा, तब वहां पर हमारे कोई अगर क्लास टीचर या कोई टीचर एब्सेंस होते हैं तो उनकी बड़ी प्रिंसिपल सर जो है बहुत ही एक्टिव थे, और जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ टीचर नहीं है वो तुरंत आ जाते और पढ़ाना शुरू करते थे, और जब वो पढ़ाते तो सारे टीचर्स सारे जो बच्चे हैं यानी हम लोग विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुनते थे, और थोड़ा सा डर भी बना रहता था तो वो भी चीजें साथ में देखा। लेकिन आपको कितना एक्टिव रहना पड़ता था, कि एक प्रिंसिपल जो है सिंपल नहीं है ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि अगर आपके शिक्षक में से कोई एब्सेंट है तो उसको आप तुरंत तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस समय आप है तो आपको जाके पढ़ाना होता है ना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टीचर्स की भर्ती की गई है तो फिर बात अलग हो सकती है, लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए, शिक्षण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए भी काफी चीजों का दूरान दृष्टि होना जरूरी है। ट्यूशंस और कोचिंग क्लासेस को भी इम्प्लीमेंट करनी होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस को, ताकि बच्चे ज्यादा में ज्यादा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। स्कूल का एक स्टाफ और प्रेरक दृष्टिकोण स्थापित करना तभी जो इन चीजों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, हितधारकों का एक समूह आपके साथ होना चाहिए, जो लोग आपके विजन को और आपके कार्य को पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों का एक टीम होगा तो उनकी वजह से आपको जो है काफी सहायता मिलता है। स्कूल के कर्मचारी छात्र सफलता के लिए समर्थन जुटाने के लिए माता पिता समुदाय का बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको बनाना होगा। तो इसी तरह ये चीजें जो है आगे बढ़ती हैं, और अनुभवी एक ऐसा बड़ा टीचर आपका जो आपको पुशअप करके आगे बढ़ाता है। तो छात्रों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रधानाचार्य को एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक और प्रभावी संचालक होना चाहिए। वे एक ऐसे वातावरण बनाते हैं जहां छात्र अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके, और वे स्कूल के संचालन और संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं, तो वो एक अच्छे सफल प्रिंसिपल बनते हैं, है ना। तो आशा करूंगा कि आपको प्रिंसिपल बनने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: फिर सुनो रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। जीवन कौशल की बातें हो रही हैं आज, प्रधानाचार्य की बातें हो रही हैं एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए, इस क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप अच्छा कमाई भी कर सकते हैं और अच्छा नाम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको स्कूल टीचर बनना है या प्रिंसिपल बनना है, ठीक है ना। दोनों चीजें, प्रिंसिपल बनने के लिए भी आपको टीचर बन के ही प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो आपका लक्ष्य हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्रिंसिपल जब बन जाते हैं तो एक सहायक वाइस प्रिंसिपल भी होना बहुत जरूरी है, और प्रधानाचार्य के निर्देशन में कार्य करना, पाठ्यक्रम छात्र सेवाओं का अनुशासन से संबंधित विशेष जिम्मेवारियां निभा सकता है जब आपके वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो वो विद्यालय और समुदाय सहयोगियों के बिना संपर्क सूत्र का काम भी सहयोगियों के एक बीच ब्रिज का काम हो जाता है, एक असिस्टेंट आपको जब असिस्ट करता है वाइस प्रिंसिपल के रूप में। अब देखा जाए तो इसमें प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होता है। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्षा 5% के छात्रों की शिक्षा और कल्याण के देखरेख के लिए जिम्मेवार होता है। वे आमतौर पर कम छात्र संख्या के साथ काम करते हैं और छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषणकारी और आकर्षक शिक्षण वातावरण बनाने में अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो ये हो गया प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल। दूसरा आता है मिडिल स्कूल प्रिंसिपल। एक मिडिल स्कूल प्रिंसिपल कक्षा 6 से 8 के छात्रों की देखरेख करता है और एक बड़े समूह और अधिक विविध पाठ्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होता है। किशोरों की सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना होता है। अब तीसरा आता है हाई स्कूल प्रिंसिपल। एक हाई स्कूल प्रिंसिपल एक बड़े छात्र समूह, शैक्षणिक विषयों को एक विस्तृत श्रृंखला और पाठ्यांतर गतिविधियों के एक अधिक जटिल समूह के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होता है। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल प्रिंसिपल, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि छात्र कॉलेज, करियर और हाई स्कूल के बाद के जीवन के लिए तैयार हो। तो ये सारी चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, और विशेष शिक्षा के प्रधानाचार्य, विशेष शिक्षा के प्रधानाचार्य ये सुनिश्चित करता है। उनकी जिम्मेवारी ये होती है कि विकलांग छात्रों को सफल होने के लिए आवश्यक सहायता से प्रशासन प्राप्त हो, शिक्षा और शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मिलकर व्यक्तिगत योजनाएं बनाएं, IEP बोलते हैं जिसको, विकसित करते हैं और विशेष शिक्षण कार्यक्रमों और सेवाओं की देखरेख करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक वैकल्पिक शिक्षा के प्रधानाचार्य। वैकल्पिक शिक्षा के प्रधानाचार्य उन कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं जो उन छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं जिन्हें पारंपरिक स्कूली परिवेश में कठिनाई हुई हो, जैसे कि वे जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया हो या जिनमें व्यवहार संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं और वे दिव्यांग भी हो सकते हैं। वे इन छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक सहायक और आकर्षक शिक्षण वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने करियर को फ्रेम आउट कर सके। तो आशा करूंगा कि आप सभी को ये सारी चीजें सुनकर अच्छा लगा होगा, तो जरूर आप एक अच्छे प्रिंसिपल बनने के लिए तैयार हो सकते हैं और एक स्कूल प्रिंसिपल का व्यवसाय और गतिशील वातावरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप प्रिंसिपल बन के पूरे एक इंस्टीट्यूशन को संभालते हैं तो लोग भी आपको काफी पसंद करते हैं और आपका अच्छा नाम हो जाता है। तो चलिए, अपने करियर को अच्छा बनाएं, अच्छा फोकस करें, क्या बनना ये क्लियर हो और फिर आप उसमें सफलता पाएं। कहीं कुछ हमारी जरूरत पड़े गाइडलाइन की या आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो अवश्य कॉल कर सकते हैं 94-1415-1415 इस नंबर पर और अपना समस्याओं का समाधान प्राप्त। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे

0: फूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है. नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है. कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुलेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खड़ूस।
1: तुम तो एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की, अपना ये माल अगर

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप उन्हें एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें एकत्रित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 एफएम। मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंदवाणी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं, 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। रिश्तों को जब नए नजर से देखा, नए अंदाज से देखा, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो ये कि जब भी एक रिश्ते में हम हैं तो उसमें जो मुझे चाहिए उसे अगर मैं देना शुरू कर दूं तो वो मुझे ही मिलता है सबसे पहले, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे वो खुशी की बात है। और जब भी हमने अगर पिछली कड़ी को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि जब हम झगड़ा हो रहा होता है या नाराज हो रहे होते हैं, एक सेकंड अगर हम रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ही होकर गुजर रहा है, जो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं या वो हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, बेसिकली वो खुद दर्द में है। उनके उस दर्द को अगर मैंने अंदर ले लिया या मैंने अपने अंदर क्रिएट किया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, तो मैं खुद दर्द में चला जाता हूं और मैं तब तक किसी और की मदद नहीं कर सकता अगर मैं स्टेबल नहीं हूंगा। ये तो बात बहुत क्लियर सामने आई थी और हमने हर बार की तरह कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करके देखें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रिश्तों को उस नजर से देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कुछ खालीपन है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अगर पिछली कड़ी को थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशंस थी, सिचुएशंस बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं। अभी तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसलिए सिचुएशंस मुश्किल नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम उन सिचुएशंस में होते हैं और हम में से हर कोई उससे दो चार हो रहा है, चाहे वो सुबह घर से निकलते वक्त है या शाम घर पहुंचते वक्त है, एक्चुअली देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस पूरा जो होता है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पर डिपेंड करता है हम वो दर्द को लेना चाहते हैं या हम उस पर स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा हम और उसके ऊपर जाएंगे कि आप हमें हमारे साथ बात करें।
1: यू जस्ट सेड दैट द होल प्रोसेस इज वेरी पेनफुल। प्रोसेस इज नॉट पेनफुल, आई क्रिएट पेन व्हाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस। सो दैट्स द ओनली शिफ्ट जो चाहिए। अभी तक हम कहते हैं प्रोसेस इज पेनफुल, सिचुएशन इज डिफिकल्ट, chaotic, ये जो वर्ड्स भी है ना सिर्फ, मतलब जो

0: my thoughts. Just creating these kind of thoughts makes the whole thing very big. Sirf yahan par agar ek shift shuru kar de, process is what it is. Like aapne ka situations to aani hai. Ab jaise aapne ka subah uthkar jo scene create hota, lekin ye to roz hona hai na. Roz hona hai. Either I withdraw from the situation, I can't do that. Either I try to change the situation, I can't
1: actually
0: do that.
1: Actually, we start doing these things, you know. Withdraw karke hum fir chup ho jate hain. Hum fir kahin aur apna dimag lagane lagte hain. Matlab kahin kahin aur shifting shuru ho jati
0: hai. Lekin it's not possible to run away from situations. Aap ek paristhiti se withdraw karenge, ek relationship se withdraw karenge, dusre relationship mein kahin na kahin koi challenge aa jayega. So spirituality just teaches us, yes, situations are there. Yes, relationships can be a little challenging. Focus, take care of yourself. Situation apne aap theek hoti jayegi. Sirf thode din ke liye ye experiment karke dekhna, apna focus apne aap change ho jayega. Sirf ye experiment karna ki badi se badi paristhiti mein bhi mujhe dhyan apna rakhna hai. Bas utna karna hai. Jaise badi se badi bimari mein bhi dhyan kiska rakhte hain pehle?
1: Apna.
0: राइट, चाहे एक छोटा सा वायरस है या एक बड़ा सा एपिडेमिक फैल गया हो पूरे देश में, ध्यान किसका रखा जाता है? अपना, कि हम कैसे बचे. ये थोड़ी ध्यान रखा जाता है कि वायरस को कैसे रोका जाए. सो फोकस इज वेरी क्लियर. तूफान आया है, ध्यान किसका रखा जाता है? हम कैसे बचे. तूफान के साथ थोड़ी जाके लड़ते हैं बैठकर कि तूफान को रोक दे, नहीं, हम कैसे बचे. सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जबकि फिजिकल चीजों में हमारा फोकस हमेशा राइट होता है कि मुझे अपने को बचाना है, तो फिर इमोशनल में भी तो सेम ही करना. सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं एंड आपकी गाड़ी यहां से आ रही है, मेरी गाड़ी यहां से आ रही है. लेट्स से मे बी दैट आई एम ऑन द रोंग साइड, यू नो, बट व्हाट विल यू डू इफ आई एम ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड? आप क्या करेंगे?
1: मैं अपने आप को बचाऊंगी.
0: तो इजन दैट ऑलवेज द फोकस कि ठीक है, जो सामने वाला आ रहा है, ही और शी इज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, मुझे क्या करना है? आई डोंट वॉन्ट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, आई विल जस्ट डाइवर्ट, चेंज माई रूट, वट एवर. लेकिन जब रिश्तों में आते, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, सो व्हाट डू आई डू? हेड ऑन कोलिजन. क्यों? क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, सो आई हैव टू कम एंड टेल यू दैट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड.
1: मुझे दूसरे को सुधारना भी, तो कई बार हम जो सामने वाला गलत आ रहा था, हम उसको गाली भी तो दे रहे होते कि देखो कहां.
0: लेकिन पहले क्या करते हैं?
1: पहले अपने आप को बचा देते हैं.
0: ऑलवेज पहले अपने को बचाना, पहले अपने को बचाना. अब वहां अपने आप को बचाते हैं ना कि कहीं मेरी गाड़ी को न लग जाए, कहीं मुझे न लग जाए. और यहां जो सारा दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहां ये ध्यान नहीं रखते. वहां कहते हैं वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो मैं क्यों ना उसी साइड से जाकर मैं भी उसको बोल करूं. एंड देन कोलिजन. एंड ये जो कोलिजन सारा दिन हो रहे हैं, कितना इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं. मुझ आत्मा पर भी इम्पैक्ट छोड़ते हैं और मेरी गाड़ी पर भी इम्पैक्ट छोड़ते हैं और रिश्तों पे तो इम्पैक्ट रहता है. तो सिर्फ एक फोकस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दिस फोकस. अब आप देखो वही सिचुएशन, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको इजिली क्रॉस कर जाएंगे जस्ट बिकॉज द अटेंशन इज I have to cross the situation, so I have to take care of myself. दर्द में जाकर कौन सी सिचुएशन क्रॉस की जाएगी? फिर तो वो सिचुएशन ही पेनफुल लगती है.
1: एक्चुअली और हर मॉर्निंग जो हम कहते हैं, बार बार कर रही हूँ मैं, वो बिल्डअप भी तो हो रहा होता है. वो उठते ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अब ये होगा और सीक्वेंस से वैसे वैसे वैसे ही होने लगते हैं.
0: अब जहां तक ये मॉर्निंग सीन की बात आती, ये तो एक तूफान है जो पहले से ही पता है कि ये तो रोज ही वो सीन आता है. तो जबकि पहले से पता है कि ये परिस्थिति आती है, डोंट यू थिंक वी कैन प्रोग्राम आवर सेल्फ फॉर क्रॉसिंग इन द राइट वे? सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये एक एग्जाम है जो मुझे रोज देना होता है, तो इसको मैं अपने आप को तैयार करके दूं या रोज गुस्सा करके, शोर मचा के? एंड उसके लिए मुझे एक ही चीज करनी है, एक दिन उसको आराम से क्रॉस करके देखना है.
1: इनफैक्ट और इसको मैं एग्जाम क्यों बनाऊं? एक्चुअली वो मैंने ही बनाया हुआ है बेसिकली.
0: एक्चुअली जितना हम दर्द में जाते हैं, उतना हमें लगता है कि सिचुएशन बहुत बड़ी है. जितना हम स्टेबिलिटी से क्रॉस करेंगे, हमें लगेगा सिचुएशन कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल एक सीन है जो रोज सामने आता ही है. सो इट बिकम वेरी वेरी सिंपल, जस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी.
1: यस, यू नो, इनफैक्ट यहां एक बात बहुत जरूरी सामने आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है और किसकी स्थिति. कोई भी सिचुएशन है, रिश्तों में जब हम हैं, और रिश्ते कहीं पे भी हो सकते हैं, हम ऑफिस के भी रिश्तों की बात कर सकते हैं, हर रिश्ते में अब चेक सिर्फ ये करना है कि मैं क्या हूं, मैं किस सिचुएशन में हूं. वेरी गुड. इनफैक्ट विल बी टोटली फोकस ऑन माई सेल्फ. तो ये तो सिचुएशन हो रही थी शिवानी जहां बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन जनरली

0: रिश्ते बन नहीं रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई, ये जो विड्रॉल है इधर, मतलब आई डोंट वांट टू फेस, देयर इज नथिंग टू टॉक, आई डोंट फील रियली रियली कनेक्टेड, यू नो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ क्या करें हम, यहाँ फिर दूरियां इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो कहते हैं फिर कि उसके ग्रेविटी सर्कल से बाहर चला जाता है.
1: When we don't experience the connection with each other, it is because of three major reasons related to time. One is past. कि कोई past hurt है उस रिश्ते के अंदर, कोई past की बात है जो हर time सामने आकर खड़ी हो जाती है. तो जब भी अगर कोई ऐसे past की बात होती है तो हम एक barrier create करके रख देते हैं कि past में आपने मुझे hurt किया था
0: और अभी तक मेरे साथ चल रहा है,
1: आपने कुछ ऐसा किया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था, यू हैव लेट मी डाउन, यू हैव डन समथिंग विच आई डिसअप्रूव ऑफ, यू हैव ऑफेंडेड मी, यू नो ऑल दिस इज यू हैव डन दिस. तो जितना हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते तो हम एक अंदर एक स्टोरी सी बना लेते हैं अपने रिश्ते को लेकर, और इस स्टोरी का जो यू नो प्राइम सीन है वो ये है कि आई एम हर्ट एंड मेरा हर्ट का कारण कौन है, आप. तो क्योंकि मैंने ये एक सीन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट कुड बी वेरी बिग, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन मैंने वो पास्ट हर्ट को पकड़ कर रखा है एंड वो दर्द मुझे अभी भी महसूस हो रहा है एंड आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हर्ट. तो इसलिए जब भी मैं आपके कनेक्शन में अभी भी आती, आई काइंड ऑफ हैव अ बैरियर बिकॉज पेन इज अ बैरियर. और ये बैरियर जब बीच में आ जाता है तो एनर्जी will not flow. So we have to remember कि जो हमारे past की बातें हैं वो हमारे present पर बहुत influence करेंगे, क्योंकि whenever I meet the person next, that past, कि past में ये हुआ था, I am not able to let it go.
0: मैं भुलाऊं कैसे, भूल पाना ही तो possible नहीं है.
1: सबसे easy तरीका भूलने का फिर से वही मंत्र है कि आपने मुझे hurt नहीं किया,
0: मैंने खुद create किया हुआ ये hurt. आपने जो कुछ किया, स्पेशली अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप,
1: आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. वन पेरेंट कॉल्स अप, कपल डॉक्टर हैं दोनों, एंड कॉल्स अप एंड सेज माय सन हैज लेट मी डाउन, 10th स्टैंडर्ड में सन है. सो व्हाट हैपेंड, एंड इट साउंडेड एज इफ पता नहीं बेटे ने क्या किया है. माय सन इज इन द 10th स्टैंडर्ड एंड ही इज हैविंग अ रिलेशनशिप इन स्कूल विद अ गर्ल. सेड ओके, yes fine, but it's a situation. Okay, maybe as a parent aap us baat se approve nahi karte.
0: Maine usko itni freedom di, maine itni independence di, aur mere vishwas ko main pata, I can actually write the script.
1: Now see, script hai, standard script ho gaya na hum sab ka. Ab dekho wo jo vicious cycle of thoughts shuru hota, you know, the parents said मैंने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे, वो इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊं आपको सिस्टर, वो इतना अच्छा था. एंड इन दैट फोन कॉन्वर्सेशन ऑफ अबाउट 10 मिनट्स, 5 टाइम्स दैट ब्रदर सेड वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था. आई सेड था मतलब क्या? एंड देन ही जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज ही रियलाइज्ड व्हाट ही वाज सेइंग. आई सेड आर यू ट्राइंग टू से कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था एंड अब उसने कोई एक बात ऐसे कर दी है विच यू आर फीलिंग सो लेट डाउन, सो डिसअपॉइंटेड, कि नाउ व्हेन आई से वो इतना अच्छा था मीन्स कि अब वो अच्छा
0: नहीं
1: है. कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी?
0: पर वो मान ही रहे होंगे ना कि वो अच्छा नहीं है, बिकॉज आपने एक उनके उस पे आप उतरे नहीं, खड़े नहीं उतरे हैं
1: किसी एक बात में ना. सो वी आर नॉट सेइंग, अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, कि दूसरा बिल्कुल वही करेगा जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग में.
0: पर मैं जीवन भर उसकी हर बात मानता रहा, मैंने उसको सब कुछ दिया जो उसने कहा, जो उसने मांगा, और वो इस तरह, मतलब वो
1: सी वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से तो गलत ही नहीं कर रहा है. एंड एज अ पेरेंट इफ यू डू नॉट अग्री विद व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू टॉक अबाउट इट, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन के लिए भी एक एनर्जी चाहिए ना. एनर्जी तो चाहिए, एक कनेक्शन ही होगा ना, कॉन्वर्सेशन भी तो तब होगा जब वी बोथ कनेक्ट. लेकिन जहां मैंने ये एनर्जी भेजनी शुरू कर दी कि आप इतने अच्छे थे, मैंने आपको इतने संस्कार दिए, आपने क्या किया उनका, इफ आई थ्रो दिस काइंड ऑफ एनर्जी एट यू, डू यू थिंक हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इसके बाद?
0: ओह नो, इनफैक्ट और I can actually see lot of parents doing it, you know, and they feel they are justified.
1: And this can be on small things or on little big things. But these scenes to aane hi hai. This is a part of the parent-child relationship.

0: This is a part of the child upbringing.
1: In fact, yahan ek aur baat main aapse janna chahti hu. It's like about parent child only. Usually kya hota hai, 7th tak, 7th 8th tak mother takes care of child's education usually. बच्चे के स्कूल से जुड़ी हुई या उसके पढ़ाई की बात या उसके, क्योंकि मे बी फादर जो है वो क्लाइंब कर रहा होता है अपने करियर में. जैसे ही 9th आता है, 10th आता है, हायर क्लासेस आ जाती है, विच आई हैव नोटिस्ड. हायर क्लासेस आते ही अब टेंशन शुरू हुई, अब ट्यूटर लगेगा, अब एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, अब करियर की प्रॉब्लम आएगी. फादर कम्स एंड टेक्स ओवर द एजुकेशन पार्ट. चाइल्ड डज नॉट इवन रिलेट टू द फादर. फादर इज नॉट इवन अवेयर कि बच्चे का मेरा पढ़ने का पैटर्न क्या है, उसको क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे वो पढ़ता है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद सो मेनी पेरेंट्स. और यहां कॉन्फ्लिक्ट इतना मेजर होता है, तब बच्चे मेजर डिप्रेशन में जाते हैं.
0: कनेक्ट नहीं है ना,
1: यहां कनेक्ट नहीं था ना, ये जो मैं कह रही हूं कि कनेक्ट नहीं है. फादर कहते हैं मेरे बेटा मेरी बात समझता क्यों नहीं, जबकि मैंने सारी जिंदगी इंडिपेंडेंस दिए रखी, फ्रीडम दिए रखी. तो यहां ये जो बच्चा जो है, आई हैव सीन वन चाइल्ड गोइंग सो मच इन टू डिप्रेशन क्योंकि वो फादर की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर पा रहा था.
0: सो दैट इज व्हाट हैपेंड. You have not met up to my expectations. इसके लिए I am hurt. हमने ही expectations बनाई, हमने ही फिर अपने आप को कहा कि you have not met up to my expectations, और फिर हमने ही उसको लेकर hurt create किया. सारा process कौन कर रहा?
1: मैं.
0: और उससे energy जो होगी block हो जाएगी. Now इस energy blockage के बाद रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, क्योंकि हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? जहां भी एक बैरियर आ गया, दर्द आ गया, हर्ट आ गया, उसके बाद कम्युनिकेशन
1: नहीं होता,
0: बहुत अच्छा नहीं होता. आपको याद होगा एक प्रोग्राम में एक बच्चे ने हमारे साथ शेयर किया था, एंड शी वॉज आई थिंक इन द 10th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड शी सेड के माई पेरेंट्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन जब भी मुझसे कोई गलती होती है, कि दे फील कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, बट ये भी है हर्ट. लेकिन उसने कहा कि दे गो थ्रू सो मच पेन कि नाउ आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड. अब suicide तक आपकी thought आ गई है, and we just asked her one thing, have you talked to your parents about this?
1: She said
0: no. This is a sign कि our communication is, मतलब मैं suicide करने तक का सोच लिया
1: क्योंकि मेरे parents hurt हो रहे हैं
0: लेकिन
1: मेरी वजह से,
0: लेकिन I have not gone and talked.
1: See, this is what disconnect I'm talking about. Actually मेरे wrong take हो रहे होंगे, because this is what we are all going through.
0: एंड अंदर ही अंदर उसके साथ हम जूझ रहे हैं, हम उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या करना, लेकिन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सो मच पेन. सो दैट्स वाई अगेन इट विल कम बैक टू आवर बॉटम लाइन, जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू हैव दैट गुड रिलेशनशिप. तो पास्ट का जो हर्ट है वो भी हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है. दूसरा है प्रेजेंट, प्रेजेंट बिहेवियर आपका कैसा है. एज आई एम ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आई सी माई पेरेंट्स एंड टीचर्स बींग वेरी जजमेंटल. यू नो मैं सीखती हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वेरी जजमेंटल. हम बहुत इजिली औरों के प्रति अपनी जजमेंट्स पास करते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी बनती जा रही हैं. आई लाइक
1: और क्लियर होती जा रही हैं हमारी,
0: वेरी क्लियर. आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है. एक तरफ है जजमेंट्स देना, और दूसरी तरफ है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. दोनों चीजें ठीक है, लेकिन दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती है, माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स गेट मिक्स्ड विद जजमेंटल. तो जो जो चीजें मैं डिसलाइक करती हूँ उसके प्रति मैं बहुत इजिली एक जजमेंट दे देती हूँ कि ये है ही गलत. यू नो लाइक फॉर एग्जांपल यू आर वेयरिंग, इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक कलर, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर, लेट्स से इट्स ओके आई डोंट लाइक ब्लैक कलर, बट मैंने अपने डिसलाइक को अगर जजमेंटल बना दिया तो मैंने कहा ब्लैक कलर ही अच्छा
1: खराब
0: नहीं
1: है.
0: तब वो एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेती है
1: जी. यस यू नो द टू डिफरेंट थिंग्स, आई डोंट लाइक ब्लैक कलर बट ब्लैक कलर ही खराब है.
0: दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है. लेकिन हम जाकर
1: आई डोंट लाइक योर फ्रेंड बट योर फ्रेंड इज दैट.
0: यस
1: ओ यस
0: सी दे टू डिफरेंट थिंग्स, ईच वन विल हैव देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी. लेकिन उसके ऊपर जब हम अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके उस पर जजमेंटल हो जाते हैं, ये है ही खराब. जैसे आपके अंदर कोई संस्कार हो सकता है जो मुझे पसंद

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन को एक नए नजरिए से देखा, बहुत सारी बातें फिर सामने आई हैं कि किस तरह के मेरे थॉट्स होते हैं, और जब थॉट्स को मैं सही रास्ते पर लेकर आती हूँ तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ना सिर्फ मन के इमोशंस के बल्कि शरीर के भी, जो ओपन हो जाते हैं। आगे कुछ और बातें हैं जो इस कड़ी में जानते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बात हमने कर ली आज माइंड की भी, बात हमने करी बॉडी की, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर इस श्रृंखला में पहली बार हमने बात की थी कि किस तरह से जो माइंड का पूरा प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव मेरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे पड़ रहा था। ब्लॉकेजेस को ओपन करने की भी बात की। बहुत बार ये कहा जाता है कि माइंड बॉडी का जो बैलेंस है उसमें स्लीप या जो हमारी नींद है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, और आज इसी प्लेटफॉर्म पर या कई बार प्रोग्राम्स में बात ये होती है कि हम या हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले सबसे ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। तो क्या नींद का जो है वो बहुत असर है हमारे जीवन में?
1: बिल्कुल, बहुत ही डीप असर है, क्योंकि एक तो हम यह समझे कि नींद की जरूरत क्यों है। ये सारा दिन जो भी हम कार्य करते हैं, भले आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे शरीर में भी परिवर्तन आते हैं। एक केमिकल डेवलप होता है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है सारे दिन में, फिर अब उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर वो कम नहीं हुआ तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। तो स्लीप एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है कि जिससे लैक्टिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है।
0: तो ये प्रोड्यूस क्यों होता है
1: लैक्टिक एसिड? तो इसलिए प्रोड्यूस, सारा दिन जब हम कार्य करते हैं तब कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्ट्रेस भी होती है, और कोई चीज है आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो रही है, जब इन सभी परिस्थितियों में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसे जो जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिलता है, और जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें ऑक्सीजन की कमी आती है। अगर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो लैक्टिक एसिड निर्माण नहीं होता है, एनर्जी निर्माण होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा तो वो सिम्टम्स निर्माण होंगे, और उसे कम करने की जरूरत है। दूसरी बात कि भी सारे दिन में ऐसी कई चीजें होती है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत है, और हम जागृत रूप से उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं,

0: जब आप सोते हैं तब स्वप्न आते हैं, बल कई लोग स्वीकार न भी करें परंतु स्वप्न आते हैं जरूर। वो स्वप्न में भी आपकी जो दिन की बातें वो रिजॉल्व होती है और आप फिर फ्रेशनेस का सवेरे अनुभव करते हो।
1: अच्छा, तो कई बार तो वो स्वप्न जो है वो ऐसा नहीं फील हमें करवाते, कई बार तो सपने याद नहीं रहते और कई बार सपने जो है वो बड़ा हमें डरा देते हैं, थका देते हैं ज्यादा, तो फिर हम तो फ्रेश नहीं।
0: वो तो कुछ नहीं, कुछ सिर्फ एंजाइटी जो ड्रीम्स है ना, जिसमें डरावनापन है, वो सही है कि वो आपको थका भी सकते हैं, परंतु और जो अधिकतर स्वप्न है उसमें आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं। और स्वप्न में आप चीज जैसी है वैसी नहीं देखते हैं कि मैं आपके साथ नाराज हूं, तो वो बात स्वप्न में नहीं आएगी और कोई सिंबल्स के रूप में आएगी और हो सकता है कि वो नाराजगी वह रिजॉल्व हो जाए।
1: अच्छा, वही सपने में रिजॉल्व,
0: स्वप्न में भी रिजॉल्व हो जाए, कहीं सिंबल्स भी आएंगे, सिर्फ नाराजगी नहीं, मेरी कई इच्छाएं भी है, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा हूँ, तो भी मेरे अंदर सेपरेशन है, अंदर में फीलिंग है, लेकिन स्वप्न में कुछ आएगा,
1: तो
0: ऐसे सिंबल्स आएंगे या मैं उड़ रहा हूँ ऐसी कोई बात आएगी, और उससे जो इंटरनल सबकॉन्शियसली वो जो डिजायर है वो डिजायर रिजॉल्व हो जाएगा।
1: अच्छा, उसके कारण जो ब्लॉकेज हो रहा होगा। तो सचिवानी, अगर स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो उसको कम करना जरूरी है, दूसरा इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं, हम रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं आजकल? वी जस्ट डोंट वांट टू स्लीप। आई मेट अ चाइल्ड, वो 13-14 साल की, एंड शी सेज कि मैं सोना ही नहीं चाहती, सोना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है।
2: सो यू गिव इन द आंसर कि उनको लगता है कि सोना वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि वो इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सो कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बट ये भी तो लैक ऑफ नॉलेज है, ये भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं जिसने वो अचीव करना, इवन इफ इट्स एन अचीवमेंट, अगर मैं हेल्दी नहीं, मेंटली भी फिजिकली भी, आई विल नेवर बी एबल टू अचीव। हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ना सोकर हम इतना समय बचा लेंगे, लॉन्ग टर्म उसका जो डैमेज हो रहा है, वी आर नॉट लुकिंग एट इट। दिस इज टोटली इग्नोरेंस ऑफ द सन। एक्चुअली ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं, इग्नोरेंट है हम टोटली अपने ही वेलबींग के बारे में।
1: वेरी ट्रू। इनफैक्ट नींद आती ही नहीं है।
0: मूल कारण को एक तो समझे, मूल कारण तो है हमारी चिंताएं, एंग्जाइटी, अंदर का टेंशन। नींद क्या है? वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है, जो हाइपोथैलेमस की बात कही थी ना, हाइपोथैलेमस बस वही स्विचिस है, स्लीप सेंटर जिसको कहते हैं। अगर वो स्लीप सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इमीडिएटली नींद आने लगेगी, परंतु सारे दिन के टेंशन, एंजाइटी और चीजों को लेकर के आप वो स्लीप सेंटर्स को एक्टिवेट ही नहीं होना देते हैं, क्योंकि डिटैच नहीं होते। जब डिटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं।
1: वो कोई फिर बटन है उसका?
0: हाँ, बटन है वास्तव में, और वो नेचुरल है, वैसा कोई नहीं है कि उस इलेक्ट्रोड, सचमुच इलेक्ट्रोड प्रेस करो, उसको स्टिमुलेट करो तो नींद आने लगेगी, परंतु ऐसा तो नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस में होना चाहिए।
2: हम सब ने जीवन में कोई ना कोई एक रात ऐसी एक्सपीरियंस की होगी जब नींद नहीं आ रही थी। नॉट नेसेसरी कि पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अगर मेरा रोज का टाइम 10 है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी, एंड वो कोई ना कोई ऐसा दिन था व्हेन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन माय माइंड, कुछ हुआ है, कोई बात हुई है एंड वो चल रहा है मेरे माइंड में। इसका मतलब कि अगर मन में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, आप लेटे भी हुए हैं, आपका माइंड ऑफ नहीं हो रहा, मतलब मन की जो सोचने की गति है वो धीरे नहीं हो रही है। बेसिकली यही है कि मैं गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है, वो स्टॉप पे आ ही नहीं रही, न्यूट्रल में जा ही नहीं रही है। कि अब क्या हुआ, ये हमें कभी कभी हुआ करता था, जिस दिन कोई चिंता थी, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी, अब चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चिंताओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो कई दिन ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नींद नहीं आ रही है। रीजन, सारा दिन थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे थे, शाम को घर आए, क्या किया, टीवी देखा, कोई फिक्शन नॉवल पढ़ा, न्यूज देखी, कोई सीरियल देखा, कभी तो हॉरर शो है, कभी वायलेंट है, थॉट्स को स्लो डाउन करने के बजाय और फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट फिर अपने पर्टिकुलर टाइम पर जाकर लेट गए और सोचा लेटे तो नींद आ जाएगी, कैसे आएगी, माइंड को स्लो डाउन ही नहीं कर पा रहे। देन वी से कि आई वांट टू स्लीप बट आई एम नॉट बीइंग एबल टू फॉलो ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई डोंट नो द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन माइंड।

0: और उसकी वजह से रात में भी थॉट में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा।
1: तो लेकिन दिन में
2: डीप स्लीप, मतलब ये जो बात है कि हम नहीं सोए, जो शिवानी बेन बता रहे
0: वो रेस्ट पीरियड था, वो
2: तो स्टार्टिंग पीरियड है, डेल्टा स्लीप कहते हैं इसको। स्लीप के कई साइकिल्स होते हैं, एक REM स्लीप कि जिसमें वो बीटा पैटर्न फास्ट चलती है, फिर से कुछ समय के बाद हम डेल्टा स्लीप में जाते हैं। रियल स्लीप इज द डेल्टा स्लीप।
0: तो उसका कोई टाइम फिक्स्ड है?
2: टाइम तो एक्चुअली तो ये साइकिल में होता है, परंतु अगर हम अच्छे से तैयारी करके सोए, सही रूप से सोए, तो डेल्टा स्लीप अच्छी हो सकती है।
0: ये एक और जो आजकल का लाइफ स्टाइल का पैटर्न है कि रात को नहीं भी सोए, टाइम जो है सोने का जो टाइम है, मैक्सिमम लोग रात को नहीं जल्दी सो पाते हैं एंड देन लेट उठते हैं, खासकर अगर बच्चों को देखते हैं तो स्कूल जाना है, वीकडेज पे तो चाहे जितने भी बजे सोए सुबह उठ के जाना ही है, लेकिन उसके बाद वीकेंड आया तो कोई 11 बजे कहीं 2 बजे, तो ये जो पूरा उठने का जो टाइम है ये क्या ठीक है?
2: ये वास्तव में सही नहीं है। बाई चांस कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली सही टाइम पर सोओ और सही टाइम पर उठो, फिर भी इत्तफाक कभी मास में एक दो बार ऐसा हो गया तो भी सवेरे तो उसी टाइम पर उठ जाओ, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई है आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम को। अगर रोज जैसे हम लोग 4 बजे उठते हैं तो हमें 4 बजे की वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है, वो ऑटोमेटिकली उठ सकते हैं। चलो कोई 6 बजे भी उठता है तो उसी समय पर उठ जाओ, फिर ऐसा नहीं कि आज रात को देरी हुई थी तो सवेरे में 9 बजे तक सो रहा हूं, आपको लगेगा कि मैंने नींद ज्यादा की, परंतु उल्टा आप थके हुए उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे। एक बार अगर 6 बजे उठ गए, हो सकता है शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन फिर आपने स्नान आदि कर लिया, तैयार हो गए तो फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे, फिर ठीक है। कि 4-5 घंटे के बाद आप समझते हैं कि आज ठीक से नींद नहीं मिली, तो तब फिर बस 20 मिनट की नींद करो, तब लंबी नींद नहीं करो।
0: तो कोई ऐसा टाइम है जो बेस्ट टाइम कहा जाए, जो आज एटलीस्ट हम ज्ञान तो प्राप्त करें?
2: दिन में आप कहते हैं?
0: नहीं, शाम को भी, रात को भी।
2: हाँ हाँ,
0: कोई ऐसा बेस्ट टाइम है जो जिसे बेस्ट माना जाए?
2: हाँ, सचमुच बेस्ट है कि जो नहीं, बड़े भी कहते थे, पहले के समय में भी कहा गया था कि भी 10 के बाद, हमारे दादी प्रकाशमणि जी थे हमेशा कहते थे, कितने भी लोग है कहते 10 माना बस, फिर 10 बज गए अभी रेस्ट करनी है, तो 10 से 2 का समय है वो बेस्ट समय है। कि जब एक तो गहरी नींद भी आती है, वह सात्विक समय भी है कि जब जो रिस्टोरेशन मेटाबॉलिज्म का होना चाहिए वो सही मात्रा में हो जाता है, तो उस समय अगर आप नींद कर लेते हैं तो 5 घंटे की नींद में भी आप फ्रेश होकर के उठेंगे।
0: इस वे कोई एक तरीका है कि हम जब भी सोए डीप स्लीप को बिल्कुल अनुभव करें?
2: हाँ, उसकी कुछ बातें। एक तो कि अभी दिस इज अ बैलेंस, कोई कहेगा मैंने कभी 10 बजे सोना है, और जब इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है कि जब नींद आए तब ही सो, आपको नींद नहीं आ रही, आप थके हुए नहीं है तो नहीं सो। लक्ष्य तो ये रखना चाहिए कि हम मॉडरेटली, मतलब अच्छी तरह से थक जाए, बिल्कुल थकावट नहीं है तो भी नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा थक गए तब भी आपको नींद नहीं आएगी, तो ये कहेंगे कि संतुलित मात्रा में मॉडरेटली हमें थकना है, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं सवेरे से ताकि उस समय तक आप मॉडरेटली टायर्ड है। और जो खाना है वह एटलीस्ट 2 घंटा पहले खा ले। आज अधिकतर जो नींद नहीं आने का ये भी कारण है कि आपने पेट भर के सारा दिन नहीं खाया, डिनर पेट भर के किया और बस 10:30 बजे डिनर किया, अभी 11:15 को आप सो रहे हैं तो भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो हैवीनेस है अंदर में। 2 घंटे पहले खा ले, भले सोने से पहले आप आधा कप गर्म दूध पी लो तो वो अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी को भी कम करेगा, दूध से भी थोड़ी सी नींद आने लगती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन है, जैसे चावल है इसमें ट्रिप्टोफैन है, तो डिनर में अगर थोड़ी सी मात्रा में वो ट्रिप्टोफैन लेते हैं तो भी अच्छी गहरी नींद आने में वो मदद मिलती है। और बेड में लेटे लेटे नहीं पढ़ो, ये नहीं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं जब नींद आएगी सो जाऊंगा, वो भी गलत है। आप अच्छे से टेबल पर पढ़ो, जब आपको लगे भी नींद आ रही है ठीक से, उस समय वातावरण को भी एक अच्छा बना लो। एक तो कईयों के लिए जिनको नींद नहीं आती उनके लिए एक एडवाइस अच्छी है कि भी एक स्थान जो आपका निश्चित है वहीं सोने की कोशिश करो, कई लोग और कहीं नहीं सो पाते हैं, और आसपास का वातावरण ठीक हो, कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है बहुत लो टेम्परेचर है तो दिक्कत हो।

0: जी सोने से पहले थोड़ा समय मेडिटेशन करो, हाथ पैर अगर गर्म पानी से धो लो, क्योंकि गर्म पानी जब हाथ पैर पर डालते हो तब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और वह हाथ पैर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ब्रेन को सर्कुलेशन थोड़ा कम मिलेगा, तब भी ऑटोमेटिकली अच्छी नींद आने लगेगी। और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा समय, मन को सचमुच पीसफुल बना करके फिर एक राइट पोजीशन ले लो। जैसे ना सीधे सोना भी अच्छा नहीं है, उल्टा सोना भी अच्छा नहीं है, एक्चुअली एक साइड राइट साइड या लेफ्ट साइड एक कंफर्टेबल आप पोजीशन ले लो जहां कहीं अननेसेसरी प्रेशर नहीं है, और फिर वैसे लेट जाओ। और बेस्ट तो चीज यही है, सोचो कि बस मैं रिलैक्स्ड हूं। आध्यात्मिक चिंतन भी कर सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अभी ये रेस्ट का समय है, जैसे मैं शरीर को आराम दे रहा हूं आत्मा को भी आराम की जरूरत है। ऐसे अच्छे शांति के विचार करके बस यही सोचो कि मुझे रेस्ट की जरूरत है। कई लोग जो सो नहीं पाते उनको ये लगता है कि भी नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। नहीं, आपको नींद की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंसोमनिया के पेशेंट है सबको मैं ये बात बताता हूं कि भी बार बार देखो, अच्छे से इस बात को समझ लो कि आपको नींद की जरूरत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। बस आप आराम से लेटे रहो, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। वो स्लीप सेंटर अगर एक्टिवेट हो गए, नींद आ जाएगी।
1: तो शिवानी, जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि शरीर को आराम की जरूरत है, आत्मा को आराम की जरूरत है, तो इस दौरान आत्मा का आराम क्या हुआ? आत्मा का
2: आराम, I just like to add little bit more to that we do is, रात को सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ लो। जनरली हमारी जो इन्फॉर्मेशन फीड होती है रात को सोने से पहले भी आजकल थोड़ी सी नेगेटिव है, जो हमने कई बार शेयर किया, सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन, रात को सोने से पहले। तो हम लोग जनरली रात को सोने से पहले मुरली पढ़ लेते हैं, चाहे एक पेज, एक पैराग्राफ, व्हाटएवर, ताकि जो लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अंदर जा रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्योर, ताकि वो थॉट्स भी उस क्वालिटी की चलेंगी। फिर अपना चार्ट लिख लो छोटा सा, आज सारा दिन में ये सिचुएशन आई, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, क्या हो सकता है, ताकि जो मैंने ब्लॉकेजेस भी, अनरिजोल्व इश्यूज भी थे माइंड में, वो रिजोल्व हो जाएंगे। और एक और चीज जो बहुत अच्छी और बहुत हेल्प करती है, परमात्मा को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू बाबा, एंड राइटिंग अबाउट, डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरीज, जस्ट 5 मिनट्स, राइटिंग अबाउट वट एवर टूडे थॉट्स, फीलिंग्स जो आई, सिचुएशन आई, कहां मुझे और क्या, जो भी वो क्लॉटिंग है सारे अंदर, जस्ट राइट इट आउट। उससे हम बहुत हल्के हो जाते हैं, एंड एज इफ पूरे जो दिन का था वो पैक ऑफ कर दिया। कई बार हम बिना पैकअप किए सो जाते हैं, तो इसलिए वो इश्यूज भी माइंड में चलते रहते हैं। थोड़ा सा ये पैकअप करें और मेडिटेशन करें, बहुत अच्छी नींद आती है फिर रात को।
1: डॉक्टर साहब, उल्टा चलते हैं, अभी तक नींद नहीं आ रही थी, तो हमने देखा कि क्या कर रहा है, अब अच्छी नींद है, तो क्या परिवर्तन महसूस करूंगी? आई कैन फील गुड राइट नाउ, तो लेकिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा?
0: बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रिएटिव बनोगे, इवन जो डिफिकल्ट है आपके सामने टास्क है उसको भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि आत्मा को भी रेस्ट मिली, ब्रेन को भी अच्छे से रेस्ट मिल गई। तो जो आत्मा को ब्रेन का उपयोग करना है वो सही कर पाएगा, और क्रिएटिविटी जो आपकी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। आज कहीं जो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर दर्द है, माइग्रेन, इन सब में भी आपको अच्छी रेस्ट मिल जाए, पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पर भी होगी।
1: और ये जो अमृत वेला पे उठते हैं, जो कहा जाता है कि अमृत वेला पे उठ के मेडिटेशन जो है, उसका भी कोई रेलेवेंस है?
0: हाँ, नहीं, उसका देखो साइंटिफिक रीजन है। वास्तव में मैं आपको पहले साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, स्पिरिचुअल भी बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल रीजन तो यह है कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, पहले भी हमने चर्चा की है कि जिसकी हार्ट पर बहुत बुरी असर होती है, ब्रेन पर बुरी असर होती है, वह सवेरे 3-4 बजे मैक्सिमम पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम होने लगता है, और दिन में 3-4 बजे वो ऑलमोस्ट 30% हो जाता है, जो लेवल रात को सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है, डे टाइम में 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 30%। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग में हाई लेवल है उसको कम करना जरूरी है। आपने कभी सुना है कि लोगों को हार्ट अटैक आया? कब आया?
1: सोते सोते,
0: अर्ली मॉर्निंग में आप देखना, 3 बजे।

0: चार बजे मैक्सिमम हार्ट अटैक्स आते हैं। रीजन इज ये कोर्टिसोल लेवल मैक्सिमम होता है उस समय। तो अगर तब उठ करके अच्छे से ध्यान का अभ्यास करो तो कोर्टिसोल लेवल को आप कम कर देंगे। और वो कम हुआ तो जो उसके हार्मफुल इफेक्ट है उससे भी आप बच जाएंगे।
1: मतलब अगर सुबह सुबह ही अगर हमने उसको कम,
0: तो ये साइंटिफिक
2: रीजन है, उस टाइम ज्यादा है ना, उसी टाइम ज्यादा है। तो अगर हम सो रहे हैं इट्स लाइक हमारे अंदर वो डैमेज हो रहा है कि वो हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है ऑर्गन्स पे वो हो रहा है। लेकिन हम उस टाइम उठकर अगर अवेयरनेस के साथ वो थॉट्स क्रिएट करें जिससे वो हार्मोन कम हो जाए तो डैमेज नहीं होगा ना।
0: मेडिटेशन से वो इफेक्ट होगी। और उसमें देखो अब स्पिरिचुअल रीजन भी कि सवेरे जल्दी क्यों उठना है, क्योंकि वह समय है। आज लोग 2 बजे तक भी जाग रहे हैं कहीं, लेकिन आप देखना 2:30-3 के बाद तो सब सो जाते हैं। तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल रहा है आसपास का वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और तब फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत ईजी है ना। तब वो कनेक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना 3G, तो मैं कहता हूँ 30G हो जाएगा उस समय, क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत ही जल्दी लगेगा। पर किसी ने बहुत ही अच्छा कहा कि अमृत वेले उठ के क्यों योग करना है, तब कहते भगवान के पास फ्री डाउनलोडिंग होता है, जो भी आपको लेना है तो आप फ्री ले सकते हैं।
2: अगर नेट पर भी कोई हैवी फाइल डाउनलोड करनी होती है तब कब करते हैं जब बाकी सब लोगों का कंप्यूटर ऑफ है, क्योंकि सारी वो बैंडविड्थ आपको मिली हुई है। इसी तरह जब मेजोरिटी सो रहे हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी डोमेंट है। आपका जो प्रोसेस है, क्योंकि हम सब पहले नए कर रहे हैं ना, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं हो रोड पे तब ड्राइविंग करना, द जर्नी इज वेरी स्मूथ। जैसे जैसे 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, एवरीवन इज वेकिंग अप, द एनर्जी इन द एटमोस्फियर बढ़ती जा रही है। अब उतने ट्रैफिक के बीच में आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है।
0: पर जल्दी सोना पड़ेगा, ये बात ठीक है, जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, परंतु वो कर लो तो फिर मॉर्निंग में आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं स्टूडेंट को भी एडवाइस देता हूँ।
1: आपने ये मैं स्टूडेंट पे आने वाला थी कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्स के दौरान, और जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक बार अगर वो रिदम टूटा, एक बार जब वो जो पूरा टाइम सेट किया हुआ था वो टूटता है तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर एग्जाम्स के दौरान वो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहते हैं कि नॉर्मल जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे करें, तो वो वापस ला पाना मुश्किल होता है, तब क्या करें?
0: एक बार बस वो साइकिल को ठीक करना है। अगर अपने साइकिल को ठीक किया, अगर 4 बजे उठ गए, पढ़ाई की अच्छे से, अपना दिन का रूटीन किया, दिन में भले माइक्रो स्लीप ले ली, और अगर 4 बजे से आप जागे हुए तो देखना 9:30-10 बजे तो गहरी नींद आने लगेगी, साइकिल आपका ठीक हो गया। भले 1-2 दिन लगेंगे, परंतु मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस देता हूँ कि भले दिक्कत भी लगे, कहीं ये कहते कि हम सवेरे उठ नहीं पाते, रात को कहो 3 बजे तक जागेंगे, भले 10 बजे भी सो गए हम 4 बजे नहीं उठ सकते, तो अगर एक बार 4 बजे उठ जाए, खड़े हो जाए, भले वॉकिंग करे, चाय पीने की आदत है चाय पी लो, या तो स्नान कर लो सबसे अच्छा है कि भी मेरा डे स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करके आप पढ़ना शुरू करो, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई आपके 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है।
1: लेकिन उस दौरान कई बार नींद आ रही होती है,
0: स्नान कर लिया फिर नींद नहीं आएगी। ऐसे ही आप बूढ़े मुंह धुलाई किए बैठ गए तो शायद नींद आ सकती है।
2: एफर्ट कम रिजल्ट ज्यादा,
1: जो जिसको हम कर रहे थे।
0: ऐसा तो स्नान नहीं करना है, ब्रश कर लो अच्छे से, हाथ पे ठीक से धुलाई कर लो, फिर फ्रेश होकर के बैठो तो नींद नहीं आएगी।
1: प्रोफेसर शिवानी, डॉक्टर पटेल, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें नींद को हमने सबसे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हमने समझा है, जो ज्ञान की प्राप्ति है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ रिजुविनेशन के लिए बॉडी और माइंड के, बल्कि मेरे पूरे जीवन के लिए, तो वो सही टाइम पे और ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ना सिर्फ नींद ठीक से आएगी बल्कि उसके साथ की जुड़ी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये सारी बातें समझ में आई हैं, अब प्रयास करेंगे, अनुभव हमारा होगा। आज अवेकनिंग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, डेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिहार के छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बिरसा ने बचपन में ही अंग्रेजों के छल कपट, जालसाजी और धोखाधड़ी को परख लिया था। उन्होंने लोगों को शस्त्र उठाकर अंग्रेजों और उनके सहायक बने आताताइयों से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया। उनके विरोध का आरंभ सन 1895 में अभिनव असहयोग आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें वनवासियों को फसल न बोने का निर्देश दिया गया था। इस आंदोलन की वजह से अंग्रेज सरकार बौखला गई और उसने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। 2 सालों तक बिरसा जेल में रहे और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की आग ठंडी पड़ गई। जेल से बाहर निकलने के पश्चात बिरसा ने एक बार फिर से नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों की खिलाफत का स्वर बुलंद कर दिया। इस बार उन्होंने अपने पूर्वजों, धर्म, संस्कृति और धरती की महत्ता स्पष्ट करते हुए अंग्रेजों से मुक्ति के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में जंगलों में लगातार बैठकें होने लगी और एक विप्लव ने जन्म ले लिया। आदिवासियों द्वारा छेड़ी गई आजादी की इस लड़ाई में 3 रणबांकुरों को फांसी और 44 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बिरसा को प्रत्यक्ष पकड़ पाना मुमकिन न था, इसलिए एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा के बलिदान का प्रतिफल 1908 के छोटा नागपुर बटाईदार अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसके तहत आदिवासियों को खूंटकटी अधिकार मिल गया। अन्याय और अत्याचार पर साहस की विजय हुई। बिरसा व्यक्ति नहीं शक्ति थे, जिन्होंने अग्निपथ पर चलते हुए दमन से मुक्ति का मार्ग बताया और आदिवासियों की आस्था का प्रतीक बन गए। आदिवासी मन की लोक कथाओं और लोकगीतों में ये महानायक आज भी जीवित है।
2: अरे टिल्लू भाई।
3: हाँ बोलो।
2: अरे जरा जोरदार चाय लेके आओ।
3: अरे आज चाय पीने का कैसे मन हो गया भाई इतने बजे?
2: अरे मन हो गया भैया, ये मत पूछो कैसे हुआ। मन बड़ा भारी है लेकिन आज।
3: मन भारी? वो भी आपका?
2: बड़ा अजीब लग रहा है टिल्लू आज।
3: क्यों क्यों, ऐसा क्या हो गया
2: टिल्लू भाई? आज गजबीय कक्का ने हिलाकर रख दिया। नहीं वाकई में, मतलब मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ उन्होंने जो जो मुझे बताया है। उन्होंने बिरसा मुंडा की कहानी सुनाई आज।
3: अच्छा, बिरसा मुंडा की कहानी?
2: मैं तुझे सुनाता हूँ।
3: सुना सुना सुना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार ये सब सुनना।
2: अच्छा तू चाय छोड़ बैठ, मैं तुझे सुनाता हूँ। 19वीं सदी का अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत, झारखंड के छोटा नागपुर अंचल का रांची, सिंहभूम, चक्रधरपुर का क्षेत्र, मुख्यतः आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र, जो साहूकारों, भूपतियों, ठेकेदारों और अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित था।
4: मालिक थोड़ा कर्ज मिल जाता तो मेहरबानी हो जाती।
5: मैं भाग यहाँ से, कर्ज कर।
4: मालिक चमड़ी उतार लो पर दया कर दो।
5: अबे रहन क्या रखेगा, खेत और झोंपड़ी तो पहले ही रहन रख चुका है तू।
4: मालिक अनाज के बिना बच्चों भूखों मर जाएंगे। मालिक इस साल फसल बिगड़ गई लगा।

0: कहाँ से छुपा है?
1: ठहर, तू ऐसे नहीं मानेगा। एक कर, और चाहिए कर।
2: घास फूस का छप्पर, खाने को मुट्ठी भर अनाज नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं, घोर गरीबी के पंजों में फड़फड़ाता आदिवासियों का जीवन। रांची जिले का उलीहातू गांव नवंबर की ठंड में ठिठुरता हुआ। गांव में बांस बल्लियों से बना घास फूस की छत वाला सुगना मुंडा और उसकी पत्नी कर्मी मुंडेन का घर।
3: अब की तो ठंड मानो जान ले रही है।
4: बच्चा पैदा होने पर उसे इस ठंड से कैसे बचाएंगे?
3: कौन होते हैं बचाने वाले? बचाने वाला तो भगवान है।
4: अरे भगवान कोई अलाव थोड़ी नहीं है।
3: अरे ये भली कही तुमने, हमें तो भगवान भरोसे रहना है। बच्चा भी तो अपना भाग लेकर पैदा होता है।
2: और 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा और कर्मी के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसने मुंडा आदिवासियों में जन जागृति की अलख जगाई। यही दिव्य बालक आगे चलकर बिरसा मुंडा कहलाया। पढ़ाई करने के लिए बिरसा को ईसाई धर्म स्वीकारना पड़ा, पर 1887 में सातवीं तक पढ़ाई चाईबासा में करके बिरसा वापस घर लौट गया। ईसाई धर्म में उसका मन नहीं लगा।
5: मेरा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। चर्च में, बाइबल में, किसी बात में नहीं लगता।
6: पर अब हो क्या सकता है?
5: एक बार ईसाई बन जाने के बाद तुम लौट कर जाओगे कहाँ?
7: अपने मूल धर्म में। मैं एक अलग मत का प्रचार करूँगा।
6: अलग मत का प्रचार?
5: तुम कहना क्या चाहते हो?
7: इस मत का ज्ञान और कार्यक्रम मुझे स्वयं सिंह बोंगा ने दिया है।
2: स्थानीय भाषा में सिंह बोंगा का अर्थ होता है स्वयं ईश्वर। बिरसा नए मत का प्रचार आदिवासियों के बीच करने लगे।
7: सारे प्राणी इस चराचर जगत में एक से हैं, सभी में उसी ईश्वर का वास है। बोंगाओं यानी देवियों के सामने प्राणियों की बलि महापाप है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अहिंसा और सत्य को अपनाओ। मदिरा एवं मांस के सेवन से दूर रहो। जनेऊ धारण करो। ईश्वर सबका भला करेंगे।
5: अभी भी मुंडा समाज का बड़ा हिस्सा हिचकिचा रहा है।
6: देखते जाओ, बिरसा की बातों और मधुर वाणी के प्रभाव से सारी हिचकिचाहट दूर होती जाएगी।
5: अपना गांव चलकार तो धीरे धीरे तीर्थ स्थल बनता जा रहा है।
6: वो देखो, भक्तों का जत्था चला आ रहा है।
2: धरती आबा जिंदाबाद, धरती आबा जिंदाबाद, धरती आबा जिंदाबाद। बिरसा को लोग अब भगवान का अवतार मानने लगे थे। उन्हें बिरसा भगवान या धरती आबा, जिसका अर्थ होता है धरती का पिता, इस नाम से पुकारते थे। उनके अनुयायी, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी सरकार के कान खड़े होने लगे। उनमें घबराहट फैल रही थी कि कहीं बिरसा और उनके अनुयायी स्वतंत्र राज न बना लें।
8: इतनी रात गए आपको तकलीफ देने के लिए, माफी चाहता हूँ, पर मामला जरा गंभीर है।
9: सर, मामला गंभीर हो तो क्या रात और क्या दिन।
8: थैंक यू। क्या आपने किसी भगवान बिरसा या धरती आबा नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है?
9: मिस्टर गार्डन, ये एक मुंडा आदिवासी है। इसके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में है और वही इसे भगवान या धरती आबा पुकारते हैं।
8: गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जानकारी है आपके पास। मेरे ख्याल से ये लोग हमारी हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। खतरा इस बात का भी है कि कहीं ये अलग मुंडा राज न बना लें।
9: मिस्टर गार्डन, क्यों न हम इसके पहले ही इन लोगों को खत्म कर दें?

0: Good afternoon, Mr. Garden.
1: Good afternoon. Toh kya khabar hai khuti ki aur aap ke ilaqe ki?
0: Achhi nahi hai, Mr. Garden. Logon ke dil par birsa abhi bhi raaj kar raha hai.
1: What? अभी भी? कमाल है, जेल हो गई पर अभी भी लोगों से भगवान मानते हैं. तुम यही कहना चाह रहे हो ना?
0: Yes, Mr. Garden.
2: अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की ताकत देने वाला बिरसा जनता के लिए खुदा या भगवान बन गया था. सन 1898 की शुरुआत में बिरसा जेल से रिहा हुआ. उसके समर्थकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई.

0: कलाकारों का एक समूह आंदोलन का संचालन करेगा। समूह के प्रमुख मंगी और आंदोलन के सेनापति होंगे गया मुंडा।
1: इस प्रकार बिरसा ने सशस्त्र क्रांति का खाका तैयार किया। उनके समूह में शामिल थे डेमका मुंडा, पनो मुंडा, सुंदर मुंडा, दुखन सावंसी, हतिराम मुंडा और रिसा मुंडा। अन्य सलाहकार भी शामिल थे। क्रांति के लिए लोगों को संगठित करने का काम तेजी से चल पड़ा।
2: साथियों, हमारे पास साधन कम है पर साहस बहुत है। संख्या बढ़ानी होगी हमें बहादुर लड़ाकों की।
3: गया भैया, हमारे विश्वस्त साथी आसपास के क्षेत्र में बिखर कर इस काम में जुट गए हैं।
4: लगभग 500 मुंडा साथी हमारे साथ आज तक जुड़ चुके हैं।
5: मैंने भी औरतों को संघर्ष के लिए तैयार कर लिया है।
2: बहुत अच्छे भाभी, औरतों को भी हथियार चलाना सिखाना होगा।
5: गया भैया, आप चिंता मत करो, काम तो चालू हो चुका है।
2: बहुत अच्छी खबर है ये।
0: क्रांति के प्रचार का कार्य करने के लिए प्रचारकों को पूरे क्षेत्र में फैला दो। सशस्त्र क्रांति के लिए हमें बहुत से हथियार भी चाहिए।
3: हमारा हर साथी तीर कमानों को बनाने में लगा हुआ है।
4: एक अंग्रेज के लिए 10-10 तीर, यही लक्ष्य दिया है मैंने अपने जवानों को।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रांची, चक्रधरपुर और बुंडा पर हमारा ध्यान केंद्रित करो।
3: तीनों प्रशिक्षण केंद्र बढ़िया काम कर रहे हैं।
4: हमें प्रशिक्षण के लिए कुछ और स्थान चुनने होंगे।
0: मुझे भी और प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत महसूस हो रही है।
2: अरे बिरसा भैया, हमारे पास सिखाने वालों का बड़ा जत्था तैयार है।
0: नए केंद्रों के लिए जगह खोजो।
2: अरे बिरसा भैया, उसके लिए मैं पहले से ही 2 स्थान तय कर चुका हूँ।
0: शाबाश, कौन से स्थान है वो?
2: समार और कर्रा।
0: बहुत अच्छे।
3: तोरपा के लिए भी सोचा जा सकता है।
5: बसिया में भी केंद्र चालू कर सकते हैं।
4: सिसई और उसके पास के दोगा।
0: वहाँ केवल प्रशिक्षण केंद्र की तख्ती नहीं लगानी है, केंद्र को चलाना भी है।
2: हाँ बिरसा भैया, हमारे पास योग्य लोगों की संख्या पर्याप्त है जो हथियार प्रशिक्षण का कार्य अच्छे से कर सकते हैं।
3: युद्ध के समय के लिए खाने पीने की रसद का इंतजाम भी साथ साथ करना होगा।
4: बहुत अच्छा विचार है।
0: बस हर आदमी ये ध्यान रखे, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय कम है।
2: संगठन नए प्रशिक्षण केंद्र बनाने का काम संतोषजनक ढंग से कर रहा है।
1: बिरसा के नेतृत्व में गया मुंडा और अन्य साथी सलाहकारों के प्रयत्न से रांची, चक्रधरपुर, मुंडा, तमार, कर्रा, तोरपा, पसिया, सिसई और कुछ अन्य गांवों में हथियार चालन के प्रशिक्षण केंद्र बढ़िया काम कर रहे थे। सैनिकों को युद्ध कला के अन्य पक्षों के बारे में भी बताया जा रहा था।
0: गया? ओ गया।
2: जी बिरसा भैया,
0: अब हमें स्थान स्थान पर सभाएं करने की व्यवस्था करनी होगी।
2: जी बिरसा भैया, बस समझिए इंतजाम हो गया।
0: लेकिन ये सभाएं हम दिन में नहीं कर सकते, वरना अंग्रेजों को पहले ही भनक लग जाने का डर है।
2: हाँ बिरसा भैया, मेरा भी यही विचार है।
0: हम सभाएं रात के समय करेंगे।
2: जी बहुत अच्छा।
1: और स्थान स्थान पर सभाओं का सिलसिला चल पड़ा। बिरसा के साथी जोशीले भाषणों से जनता में जोश भरते। आज इस गांव तो कल उस गांव, और कभी कभी एक साथ 2-3 गांवों में सभाएं होती थीं। बड़ी संख्या में मुंडा लोग इन सभाओं में जुटने लगे।
2: साथियों, अब तक हम 10 से अधिक सभाएं कर चुके हैं।
3: डुमरी की सभा काफी सफल रही। बंटी डी और मारी ताहू में भी लोगों का उत्साह देखने लायक था।
2: हाँ, और कुसुम टोली और कोट घोरा से भी अच्छे समाचार मिले हैं।
3: सनाह की सभा में बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। कुछ लोग इतने उत्साह में आ गए और कहने लगे अभी रात में यहीं से चलते हैं सीधे और अंग्रेजों को मिटा देते हैं।
2: और फिर तुमने क्या किया?
3: करता क्या, समझाया उन्हें कि इस उत्साह को सही समय के लिए बचा कर रखो।
4: क्रिसमस पास आता जा रहा है। परसों बिचाकटी की सभा में त्योहार पर घिरने की योजना पर बात हो रही थी।
2: ठीक है, अब हमें निर्णायक संघर्ष करना है। कल डुमरी पहाड़ी पर एक और सभा का आयोजन किया जाना है।
1: डुमरी के अलावा आसपास के अन्य गांवों से भी भारी संख्या में लोग जुटे। इतने दिनों के प्रशिक्षण और सभाओं में सुने जोशीले भाषणों ने माहौल को काफी गर्मा दिया था।
0: मुंडा आदिवासी समाज की जय। मुंडा वीर साथियों और साथिनों, प्रकृति की गोद में पलने वाली हम प्रकृति की संताने हैं। हमारे वनों की संपत्ति हमारी है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है,

0: की दोपहर में लगभग 300 मुंडा लोग धनुष बाण, भाले और कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों से लैस होकर खूंटी थाने पर टूट पड़े। सिपाही मारे गए, घर के घर फूंक दिए गए। अंग्रेजों में खलबली मच गई। छोटा नागपुर प्रमंडल के कमिश्नर कोबोर्स और रांची के डिप्टी कमिश्नर तुरंत डोरांडा में रह रही 150 देशी फौजियों को लेकर रांची पहुंच गए।
1: साथियों, अंग्रेजी फौज का एक बड़ा जत्था रांची पहुंच चुका है। हम अपने लोगों के लिए डुमरी पहाड़ पर खम्बों का मजबूत बेड़ा बनाएंगे।
0: औरतों और बच्चों को
1: सब साथ रहेंगे, मैं अनाज और बर्तन भांडों के।
2: मील के करीब चल चुके हैं,
0: बस पहुंच ही गए समझो।
1: पहाड़ी पर हम सुरक्षित रहेंगे।
3: अब तो डटकर लोहा लेना है अंग्रेजों से। अरे चलो भैया, चलो जत्था आगे बढ़ाओ। हाँ चलो भाई, चलो। हाँ चलो चलो।
0: डुमरी पहाड़ी पर मुंडाओं ने मैं, औरतों और बच्चों के मोर्चा संभाल लिया। इनका पीछा करते अंग्रेजों की फौज भी पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर ने करीब एक घंटे तक मुंडाओं को हथियार डालकर समर्पण कर देने को कहा, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया।

0: करीब 200 मुंडा लोग औरतों और बच्चों सहित गोलियों के शिकार होकर मौत के मुंह में समा गए। बहुत से घायल भी हुए। मरने वालों के शवों को सभ्य कहलाने वाली अंग्रेज कौम के अफसरों ने घाटी में फेंकवा दिया। एक के ऊपर एक रखकर कुछ लोगों को गाड़ दिया, जिनमें कुछ जिंदा घायल लोग भी थे। डुमरी की पहाड़ी सभ्य कहलाने वाले अंग्रेजों की बर्बरता और वहशीपन की साक्षी बनी।
1: हमारा भारी नुकसान हुआ है लड़ाई में, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है।
2: हम जनसेवा का मजबूत संगठन बनाने का काम और तेज करेंगे।
0: गया मुंडा और बिरसा मुंडा अपने साथियों की टोह में दूर के गांव गए हुए थे। गांव के जिस घर में गया मुंडा छिपे हुए थे, उस पर पुलिस ने धावा बोल दिया। तीन सिपाही गया मुंडा को पकड़ने घर में घुसे। तीनों को गया मुंडा ने मार डाला। पुलिस ने घर में आग लगा दी। गया मुंडा के घर से बाहर निकलते ही उसे गोलियों से भून डाला। लेकिन बिरसा गिरफ्तारी से बचने के लिए चांपोकाई, यानी आज जिसे हम चक्रधरपुर कहते हैं, भाग गए।
3: मिस्टर बेयर, जब तक बिरसा गिरफ्तार नहीं होता, तब तक हमारी कामयाबी अधूरी है।
4: मिस्टर कार्डन, कोशिश जारी है।
3: व्हाट कोशिश? मुझे बिरसा मुंडा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इनाम घोषित करो उसकी गिरफ्तारी के लिए।
4: जी, त्रिभुज, रांची, छोटा नागपुर, हर जगह की फौज लगा दी है बिरसा को ढूंढने के लिए। बट अभी 15 मार्च तक तो बिरसा के किसी पते ठिकाने की खबर नहीं मिल पाई है।
0: कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। एक स्थानीय विश्वासघाती के कारण बिरसा मुंडा अपनी पत्नी और एक और महिला के साथ जहां छुपे हुए थे, वहां पर पकड़े गए। बिरसा को रांची जेल में रखा गया और उन्हें उनकी पत्नी से भी अलग कर दिया गया। जेल में ही इस मुंडा शेर का 30 मई 1900 को अवसान हुआ। अंग्रेजों के अनुसार उनकी मृत्यु हैजे से हुई थी, पर असली बात यह है कि पुलिस जातियों से ही उनकी मौत हुई। बिरसा मुंडा और उनका अबुआ दिसुन, यानी स्वराज के लिए चलाई जा रही बगावत का नाम इतिहास के पन्नों में चमकता रहेगा सदा के लिए।
5: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पुणे आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणे आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: भैया, आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
4: अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो,

0: और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध। तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: त्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
1: लकडी की काठी काठी पे घोडा,
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
2: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
3: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार अँड वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
5: ओम शांती.
4: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
5: थैंक यू.
4: लास्ट टाइम बहुत सुंदर बात कही आपने कि मैंने आपसे पूछा था एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, लेकिन जैसे एक पॉइंट बड़ा अच्छा मिला हमको कि मन एक समय पे सिर्फ एक बात सोच सकता है, उसी तरह हमारी भी एनर्जी उस वक्त जब मैं गुस्से में हूं तो सिर्फ गुस्से की है.
5: एब्सोल्युटली.
4: तब मेरे समझ में आया कि ब्लॉकिंग योर एनर्जी क्या है. मेरा प्रॉब्लम है एनर्जी ब्लॉक हो गई, पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद में सोचने बैठ जाता हूं.
5: नो प्रॉब्लम.
4: तो फिर मैं अपने आप को कोसता हूं, अपने आप को बोलता हूं, अपने आप को बुरा बोलता हूं, दूसरी एनर्जी शुरू होती है, डिप्रेशन में आ जाता हूं.
5: जब भी सारा दिन में हम वो वाले इमोशन क्रिएट करते जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली नाउ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगर. अगर हम, क्योंकि गुस्सा हम में से मेजोरिटी को आ ही जाता है कभी ना कभी, जैसे आपने कहा कि आने के बाद, करने के बाद, सब होने के बाद रियलाइज होता है, तब फिर क्या करें. फिर आपने कहा कि फिर मैं अपने आप को
4: कोसता
5: हूँ और फिर गिल्ट में चला जाता हूँ. दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी.
4: और श्राप भी देता हूँ अपने आप को कि मैं जिंदगी में नहीं सुधर सकता, इस जीवन मेरा बेकार है.
5: सी, हमने उस दिन भी पढ़ा था और डिस्कस किया, आर थॉट्स एंड वर्ड्स आर वाइब्रेशंस विच आर रेडिएटिंग इन टू द एटमोस्फियर. इफ द थॉट्स एंड वर्ड्स यू क्रिएटेड यस्टरडे यू नो वुड बिकम अ रियलिटी, वुड यू से देम अगेन टूडे. हमारी सोच, हमारी बोल रियालिटी बनने वाली है.
4: मैं नहीं चाहता ये रियालिटी बने.
5: तो क्या था उस दिन कि अगर आपको ये समझ आ जाता है, दैट इज वॉट दिस ब्यूटिफुल कोटेशन सेड, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आपकी सोच और बोल रियालिटी बनती है, तो क्या आप वही सोचेंगे और बोलेंगे जो आपने कल बोला था.
4: तो ये भी तो ब्लॉकिंग एनर्जी होगी. मुझे बात करते करते याद आया, समझ में आया, सॉरी.
5: एब्सोल्युटली.
4: कि मैं दूसरे के लिए जो कर रहा था अपने लिए कर रहा हूँ.
5: अपने लिए कर रहा हूँ और जो चाहिए, जो चाहिए उसका ऑपोजिट बोल रहा हूँ सारा दिन. इट्स लाइक सेइंग कि आपका बच्चा काम पे जा रहा है बाहर, या स्कूल जा रहा है, या सम कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है. आप कहेंगे डू वेल, गॉड ब्लेस यू, अच्छा करके आना, अच्छा ही होगा आज. सपोज उसकी जगह आप बोले कि नो गुड, फायदा नहीं है, तुम कितनी भी मेहनत करो तुम्हारा कुछ खास अच्छा होता नहीं है. ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना.
4: आज भी बुरा मत करके आना.
5: हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना. आज भी बुरा मत करके आना फिर भी ठीक, लेकिन तुम्हारा तो होता ही बुरा, तुम्हारे से होता ही नहीं अच्छी तरह से. ऐसा तो नहीं बोलेंगे. जो चीज किसी और को नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए नहीं सोचेंगे.
4: तो ऐसा भी तो हो सकता ना, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ अपने आप को, तो फिर और को भी बोल रहा हूँ. तो जब मैं अपने साथ ही ठीक नहीं हूँ तो फिर दूसरे का क्या लिहाज करूँ.
5: वो चलो नेक्स्ट स्टेप कि जो हम अपने साथ करते हैं वो दूसरे के साथ भी करने लगते हैं. लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट, जो हम अपने साथ करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है. हर बार अगर मैंने अपने आप को कहा यू आर नो गुड, तुमसे नहीं होता है, तुम कितना भी ट्राई करो, तुम्हारी नेचर बन चुकी है ये, तो ये अपने आप को क्या दे रहे हैं.
4: श्राप, कर्सिंग यूरसेल्फ.
5: आवर थॉट्स आर वेरी पावरफुल. हम वरदान दें या श्राप दें, वो रियालिटी बन जाएगी. और जब हम अपने लिए करते हैं, सी दूसरों के लिए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी एक के लिए सोचते हैं, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए. लेकिन अपने लिए, अपने लिए जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट अपने लिए बार बार क्रिएट करें, आई एम नो गुड, मुझसे नहीं होता, मेरा संस्कार डिफिकल्ट है, ये नहीं चेंज होता, तो उसकी रियालिटी बनना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी.
4: क्यों?
5: क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एक थॉट क्रिएट हो रही है. जब व्हेन इट इज टीचिंग अस कि द एनर्जी यू रेडिएट आउट बिकम्स अ रियलिटी, तो अपने

0: तो कितनी बार बोल रहे हैं ये? सपोज मैंने आज दिन में 5 बार गुस्सा किया, ठीक है, 5 लोगों को कहा यू आर नो गुड, एक लाइन ही ले लेते हैं, 5 लोगों को कहा तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता है।
1: मैंने अपने आप को तो कई बार कहा आई एम अ फेलियर, कोई बात समझ नहीं सकता है, 10 बार एक चीज बोली नहीं सीखता है, एक ही पॉइंट बार बार करते हो गलती।
0: राइट।
1: तो अपने आप को कितनी बार बोला मैंने?
0: 5 बार लोगों को गुस्सा किया, मतलब 5 बार लोगों को सपोज यही लाइन कही कि आपसे नहीं होता है, लेकिन 5वीं बार बोलने के बाद बुरा लगा, रियलाइज किया और फिर अपने आप को कहा तुम्हारे से नहीं होता है, तुम्हारा संस्कार चेंज ही नहीं होता है। तो दिन में 5 बार मतलब एक एक बार एक को बोला ना, लेकिन अपने को 5 बार बोल दिया, तो किस चीज की रियलिटी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है?
1: मेरी,
0: क्योंकि 5 बार बोला। और दूसरों को जब बोलेंगे ना तो 1-2 लाइन में बोलेंगे, क्योंकि दूसरे बहुत ज्यादा उससे ज्यादा नहीं सुनने वाले हमारा खड़े होके, कहेंगे नहीं है, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ जाके फिर से, वो चले जाएंगे, हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उससे बाहर चले जाते हैं लोग, फिजिकली भी और मेंटली भी। जैसे सपोज आप मुझे कुछ बार बार बोल रहे हैं यू आर नो गुड, तुम्हारे से नहीं होता, या तो अगर मेरे से नहीं सुना जा रहा तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगी, मैं अभी करके आती हूँ जाके वापस। अच्छा, अगर मेरे को वहीं खड़ा होना है और सुननी ही है आपकी बात, आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग आउट, मैं फिजिकली बाहर नहीं निकल सकती इस स्पेस से, लेकिन मेंटली तो निकल सकती हूँ,
1: ब्लॉक कर लूंगा,
0: ब्लॉक, आई बी देयर एंड नॉट टेकिंग,
1: बोलना है बोलो,
0: यस आई बी देयर नॉट टेकिंग इट। तो दूसरे हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद खुद को बोलने लगते हैं तो हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को कम्प्लीटली स्वीकार करते हैं। आप अगर मुझे कहेंगे यू आर नो गुड, नॉट नेसेसरी मैं आपकी बात को स्वीकार करूं, I'll say I know what I am, and which means मैंने आपकी thought को reject कर दिया। लेकिन जब मैं खुद खुद को बोलती हूँ you are no good, तब मैं उसको reject नहीं करती, because I firmly believe what I'm saying to myself। तो जो impact हमारी अपनी बात का अपने पर आता है, खुद से की हुई बात का जो impact होता है वो much deeper है।
1: तो अपने आप की तारीफ कैसे करते जाएं जब गलत कर रहे हो?
0: अपने आप की तारीफ नहीं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट इम्पोर्टेंट है ना।
1: सपोज आपकी एनर्जी मोटिवेट करने का, जब
0: इट्स वेरी
1: गुस्सा आ जाता है
0: तो क्या करें? अभी सपोज मैंने गुस्सा कर दिया, गलती हो गई, मैंने रियलाइज किया, अब इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक एंड सेइंग आई एम नो गुड, ये मेरे से होता नहीं है, कैसे करूं, सिंपल एक तरीका है, आप बैठ कर इवन आंखें बंद कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और उसी सीन को जो पूरा हुआ था, पूरा का पूरा सीन वापस विजुअलाइज कर लीजिए, पूरी, सामने वाला आया, उसने क्या किया था, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने कैसे उस पर रिएक्ट किया, उस सीन को फिर से क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि 2-3 मिनट
1: रीटेक
0: जैसे हम पिक्चर में करते हैं, बिल्कुल
1: तरीके से किया अभी,
0: एब्सोल्युटली। अब उस रीटेक में सारी सीन, सीनरी, को एक्टर सेम रहेंगे, सिर्फ अपने पार्ट को देख लेना है कि अगर मुझे एक सेकेंड चांस मिले तो मैं सीन को किस तरह करूंगा,
1: और उसको नेगेटिव किया अब पॉजिटिव तरीके से,
0: बेसिकली एक डिफरेंट स्टाइल। आप एक रोल में
1: पहले गुस्से से किया, प्यार से करो,
0: वो आप चूज करो, हर बार ऑप्शन आप अपने आप को देखो, मैं प्यार से बोल सकता था, मैं डिस्टर्ब हुए बिना सिर्फ स्ट्रिक्टली बोल सकता था, मैं डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। जब परिस्थिति आती है एंड हमें, क्योंकि वो एक हो गया है ऑटोमेटिक मोड में जाने का, उस समय हमारा वो पुराना संस्कार आ जाता है, लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो जाती है, गई बात, वो लोग गए, अब हमारे पास है ना 2-3 मिनट का टाइम, अब बजाय कि ये सोचना क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, आज सुबह मैंने मेडिटेशन में डिसाइड किया था ना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी आ गया, ये सब सोच के वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इससे अच्छा 2-3 मिनट निकालकर वो सीन को विजुअलाइज करके, अब क्योंकि डिटैच्ड है, जब परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते नहीं है ऐसा करूं या ऐसा करूं, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो गई, लॉजिक माइंड वर्क कर रहा है, हम शांत हैं, अब डिटैच होकर उस परिस्थिति को फिर से देखकर अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को करते

0: say it to them. Because most of us have mastered this art. कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं. सामने किसी ने कुछ किया, फिर भी हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है. लेकिन अंदर सोच लिया ये ऐसे ऐसे ऐसे. फिर कुछ आई बात, हमने प्यार से बात कर दी, क्योंकि हमने कहा बार बार अभी कितना बोलेंगे इनको. अंदर सोच लिया, रख लिया. लेकिन फिर जब कोई स्टिम्यूलस आया, ये सारा कुछ जो यहाँ स्टोर करके रखा था, और तब तो कितनी पुरानी बातें आती हैं, 10 साल पहले ऐसे किया था आपने, 20 साल पहले वो शादी वाले दिन आपने ऐसे किया था, ये सब क्यों निकल कर आता?
1: फिर माँ ये क्यों नहीं बोलती जब तो 2 दिन का था या 6 दिन का था या 6 महीने का था तब बुरा किया, तब वाली बातें बुरी क्यों नहीं लगती?
0: क्योंकि उस समय गुस्सा नहीं आया था.
1: क्यों
0: गुस्सा नहीं आया था? एक्सेप्ट द चाइल्ड.
1: चेंज कैसे हो जाती है माँ?
0: जब उनकी एक्सपेक्टेशंस, एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन आती है बच्चे से कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए. एक छोटा बच्चा क्या करता है? जो पेरेंट चाहे बच्चा करता है. छोटे बच्चे से बड़ा होते होते
1: भी तो होता है, बच्चे के पीछे पीछे हम भागते रहते, वो
0: नहीं, वो है, लेकिन बच्चे को
1: बना देता, सर पे
0: बच्चे को जो जो सिखाते हैं से बच्चा अपने इंटेलेक्ट का भी यूज करना शुरू करता है जब वो थोड़ा सा है ना.
1: पहले बड़े फैन बोलो फैन है,
0: नो इवन आफ्टर दैट लिटिल एल्डर ऑल्सो वो कहना मानता है, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही कितना है. हम कहते हैं बच्चा कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे वो 10, 12, 13 साल का होता है और जब वो अपनी चॉइस की चीजें करना शुरू करता है जो उनकी पसंद की नहीं है, कहेंगे माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. इवन द वर्ड इज यूज, माई चाइल्ड इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल.
1: उसके बाद बोलते ही इज गोइंग इन द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ.
0: वेरी गुड.
1: ये वाइफ इज गोइंग इन कंट्रोल ऑफ हर हस्बैंड.
0: एब्सोल्युटली. व्हिच मींस व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग?
1: हमारे कंट्रोल से बाहर, उनके कंट्रोल में है.
0: मतलब जो वो कह रही हैं वो कर रहा है. जब वो स्कूल कॉलेज गया तो जो दोस्त कह रहे थे वो कर रहा है, और बचपन में वो क्या कर रहा था?
1: जो मैं बोलता था.
0: तो वो कब तक अच्छा था? बहुत. कब तक आज्ञाकारी था, वफादार था, लॉयल था, संस्कारी था? जब तक वो जो मैं कह रहा था वो कर रहा था. लेकिन जब उसने चेंज होना शुरू किया, कुछ और करना शुरू किया, तब गुस्सा आना शुरू हुआ. अब हमें ये, दिस इज लाइक वेरी सटल, लेकिन इसकी सारा दिन प्रैक्टिस की. अगर गुस्से को खत्म करना है, एक कर्म के बारे में चिंतन, व्यक्ति के बारे में नहीं. और उसके बाद जब वो बात खत्म हो जाती है, जब गुस्सा आता है तो वो बात चित्त पर ज्यादा समय चलती है. लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी गलती के बारे में बात करें तो आप ये अनुभव करेंगे कि जैसे ही बात खत्म हो जाएगी आपके चित्त पर नहीं रहेगी वो बात. वो बात आई, बात के बारे में क्या, लेट्स से आपके बेटे ने आपको फोन किया, कहा ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये करना है, ये आपको क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए? उसने कुछ कहा, राइट? ये मुझे लगता है ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे ऐसे करना चाहेंगे? आपने कहा नो, नॉट लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे टू डू इट. ठीक है, तो फिर वो जो कह रहा है, जो काम, जो बात, उसके ऊपर आपने अपनी राय दे दी, एडवाइस दे दी, बात पूरी हुई. इवन अगर वो जो कह रहे थे वो आपको बात पसंद
1: है, बेवकूफ है, ये सोचा भी क्यों ऐसा?
0: दैट इज इट.
1: इतना बड़ा हो गया अभी भी अक्ल नहीं है, अभी ये बात पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
0: दिस अभी आपको डिफरेंस दिखा? ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, ये थिन लाइन है. दिस यू हैव जस्ट मूव्ड फ्रॉम द एक्ट टू द पर्सन.
1: लेकिन जैसे आप बात कर रही है, मुझे सुबह फोन आया आपके सामने, मैंने बोला नहीं बेटा ये गलत बात है, फायदा क्या करके? फायदा नहीं है, इससे तो ओके डैड बात खत्म हो गई.
0: राइट.
1: अगर उसके बाद में बोलो इतना बड़ा हो गया,
0: लेकिन वो आपने उसको बोला नहीं, लेकिन अब आप अपनी चेकिंग करेंगे.
1: मैंने नहीं सोचा ऐसा,
0: ये चेकिंग.
1: मुझे तो उल्टा अच्छा लगा कि मुझे पूछा.
0: हाँ पूछा, अगर नहीं पूछा होता
1: तो फिर तो गुस्सा था.
0: हाँ दिस थॉट्स, धीरे धीरे ये जो हमारा संस्कार है ना, उस पर प्यार से काम करना है. ये फोर्सफुली नहीं जाएगा एक दिन के अंदर. कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब करती है? किसी ने मुझसे पूछा नहीं, किसी ने मेरी कही हुई बात मानी नहीं, किसी ने जिस तरह से मैंने कहा था उसने बिल्कुल ही एक अलग तरह से कर दिया. वो हर बार मेरे से पूछते थे, इस बार पूछा नहीं. अच्छा, मुझसे पूछने की बजाय अब इस बार

0: ये भी अगर हम उस समय अपने आप को याद दिला दें, ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक जैसे सिंक नहीं, ब्लॉक हो जाता है तो कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गया ना।
1: आपने सांस का अच्छा बोला,
0: ब्लॉक,
1: ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, सडनली ले लो,
0: एब्सोल्युटली इमीडिएटली, डोंट लेट इट रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि सफोकेशन उनको नहीं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, सफोकेशन दूसरे को नहीं हो रहा,
1: घुटन तो मुझे हो रही है,
0: मुझे होने वाली है, वो चले गए घूमने के लिए, वो तो चले गए ना, दे आर फाइन,
1: और यहाँ से भी जो भेज रहा हूँ
0: वो तो है, तो सेंड, वो तो रीच होगा ही, बट वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू सी आर सेल्फ।
1: आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, चलो वो चले गए, वो रेस्टोरेंट में बैठे डिनर खा रहे हैं और मैं यहाँ से कोसता जा रहा हूँ, तो उनको नहीं फील होता, पता नहीं आज अजीब सा क्यों लग रहा है,
0: नहीं इतना विजिबली नहीं आएगा,
1: नहीं होता,
0: नहीं इतना विजिबली नहीं आएगा, सपोज वो 20 किलोमीटर दूर किसी रेस्टोरेंट में या मूवी थिएटर में बैठे हैं,
1: और आप देखते ना कि जाते हैं, ट्रांसफर
0: होगा क्या, होगा क्या, ओवरऑल रिलेशनशिप में
1: जब वो घर
0: आना शुरू होगा,
1: सुबह मिलेंगे,
0: नहीं नॉट नेसेसरी मिले भी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मिलने से ही होगा, एक वाइब्रेशन रीच तो हो रही है उसी टाइम में जब आप सोच रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे पता नहीं चलेगा जैसे कि कुछ मेरे पास अभी आ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि वाइब्रेशन रीच कर रही है, वो वाइब्रेशन उनको टच करके वो जो आपके बारे में सोचते हैं उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा।
1: Really?
0: अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप जो मेरे बारे में सोचेंगे मुझे पता नहीं चलेगा, आई डोंट हैव दैट मच कैचिंग पावर कि मैं आपकी थॉट कैच कर सकूं, लेकिन आप भेज तो रहे हैं ना, मेरे को रियलाइजेशन ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट थॉट कौन सी है कि यू आर थिंकिंग लाइक दिस ऐसा, लेकिन जो आप थॉट भेज रहे हैं वो मुझे यहाँ रीच होती है, एंड ये क्योंकि अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ तो आपकी थॉट मेरी थिंकिंग पर इन्फ्लुएंस करती है, एंड फिर मैं भी आपके बारे में एक अलग तरह से सोचना शुरू कर देती
1: हूँ। अच्छा नहीं सोचते हैं,
0: नहीं होता, एंड फिर क्योंकि मैं भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रही हूँ, फिर वो आप तक पहुँचेगी।
1: अच्छा एक सेकंड, पहले ही मैं प्रॉब्लम में हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं,
0: दिस इज इट,
1: ऊपर से फिर मैं उसके बारे में सोचूं, फिर वापस उधर से और आए,
0: और जब वो
1: बात कितनी बढ़ जाएगी,
0: नहीं नहीं, और जब मैं आपके बारे में वैसा सोचूंगी फिर आपकी तो ऑलरेडी ऐसे थी उस टाइम, आपकी और हो जाएगी, फिर मेरी हो
1: देखा
0: जाएगी।
1: मैंने सही बोला था, मेरा और कंफर्म हो जाएगा कि देखा मेरे बिल्कुल मेरी सोच सही थी।
0: ये टिपिकली अगर हम ऐसे रिश्तों में देखें जहाँ स्ट्रेन ज्यादा होता है, सपोज सास बहू का रिश्ता, यू नो, जहाँ हम मेहनत ज्यादा करते हैं और हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलती है, यू नो, कई रिश्ते ऐसे, इवन कई बार ऑफिस में एक बॉस के साथ, कोई एक फ्रेंड के साथ, मतलब जहाँ यू विल फाइंड कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ एडजस्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मतलब एफर्ट ज्यादा रिजल्ट कम, ऐसे कई रिश्ते होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो रिश्ता हमेशा बहुत नेचुरल एंड बहुत कंफर्टेबल है। तो ये जो एफर्ट वाले रिश्ते होते हैं इनमें जनरली ये चल रहा है, ये एनर्जी एक्सचेंज अंदर से, एंड दोनों बात बहुत प्यार से करते हैं एक दूसरे के साथ, काफी ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कुछ ना बोल दें जो दूसरे को बुरा लगे, मैं उनको हेल्प करूं, उनके लिए ये करूं, उनका कहना मानूं, लेकिन अंदर से नहीं अच्छा सोच रहे हैं।
1: अगर आप मेरे बारे में कोई भी चीज नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते, सोचते जा रहे, सोचते जा रहे, सोचते जा रहे हैं और मुझे बोल नहीं रहे हैं, तो क्या जब मुझ में ऐसी थॉट आए कि मैं आपको उतना मतलब प्यार से नहीं देख रहा हूँ, या मेरे अंदर से आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं नहीं निकल रही हैं, तो क्या मैं रियलाइज नहीं कर पाता कि मुझ में ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है, शायद वो मेरे बारे में कुछ
0: सी अगेन
1: सोच रहे होंगे,
0: राइट, अभी
1: उधर से नेगेटिव तीर आया, कभी कभी मुझे लगता है यार इस बंदे को मैं इतना प्यार करता हूँ, सडनली मेरे अंदर उसके लिए दुआएं, प्यार, खुशियां क्यों नहीं निकल रही हैं? एक तो हो सकता है कि मेरे में कोई गलती है या मेरी एक्सपेक्टेशंस में है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वहां से अजीब तीर आ रहे हों।
0: लेकिन दोनों केस में हमारे पास ऑप्शन क्या है?
1: क्या
0: सी सपोज, क्योंकि ये हम में से बहुतों के साथ, मतलब हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी के साथ ही अनुभव किया होगा, यू नो, विद दिस इज अ सोल टू सोल।

0: कार्मिक अकाउंट, और एक तो उसमें ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एक पास्ट कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है. यू नो, कई रिश्तों में इतनी मेहनत कर लो लेकिन तो भी वो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो पास्ट कैरी फॉरवर्ड भी बहुत स्ट्रांग है. तो अब दोनों में से एक को, इस सर्किट को तोड़ना पड़ेगा. अब जैसे आपने कहा कि आप मेहनत कर रहे हैं कि सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना है, फिर भी सडनली बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी, बहुत अच्छी थॉट नहीं आएगी और माइंड फिर से उनकी गलतियों की तरफ जाएगा. आप फिर विशेषता को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन फिर गलती का चिंतन होने लग जाएगा. मतलब समहाउ नेचुरल रूप से मेरे अंदर उनके लिए बहुत अच्छी थिंकिंग जेनरेट ही नहीं होती.
1: नहीं, अब नहीं हो रही, पहले थी.
0: चेंज हो रही है.
1: हाँ.
0: यस, चेंज हो रही है.
1: वो कर रही है या मैं कर रहा हूँ?
0: एक्चुअली बहुत पावरफुल रीजन होता है कि सामने वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है, नहीं कर रहा, वी डोंट नो. इवन अगर कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आई कांट जस्ट सकम्ब टू दैट ना.
1: तो अब मैं क्या करूँ?
0: सपोज मैं आपके लिए पहले अच्छा सोच रही थी, सडनली आई फील के नहीं, मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये बात भी नहीं अच्छी लग रही, मुझे ये चीज भी नहीं अच्छी लग रही. इट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन आई स्टॉप एंड आई से कि मैं पहले तो नहीं गलत सोचती थी इतना इनके बारे में, अभी मुझे बार बार नेचुरल गलत थिंकिंग क्यों आ रही है? तो सपोज आई से टू माई सेल्फ, हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो. अच्छा, अगर हो सकता है वो मेरे लिए गलत सोच रहे हो, लेट्स से मेरे को श्योर भी हो जाए, ओके, कि नहीं वो ही मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी ऐसी थिंकिंग आनी शुरू हो गई है. अगर ये भी सच है तो भी मुझे क्या करना होगा फिर? अभी
1: बताइए.
0: मुझे फिर कॉन्शियसली और अटेंशन रखकर अपनी थॉट को चेंज करना होगा, ताकि उनकी थॉट मुझ पर इन्फ्लुएंस करने के बजाय मेरी थॉट उन पर इन्फ्लुएंस.
1: ब्यूटिफुल,
0: क्योंकि वो भी तो होगा ना, दोनों में से एक इन्फ्लुएंस कर रहा है.
1: तो मैं मतलब इतना प्यार भेजू, रीति दुआएं भेजू कि वो उनका जो नेगेटिव है.
0: ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मुझे तो ये पहले अच्छे नहीं लगते थे. हाँ. मैं तो इनके लिए अच्छा सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी, आजकल कैसे मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, आज मुझे अच्छी. हाँ. कैसे लग रही है चीजें ये सारी, क्योंकि समवेयर फ्रॉम दी अदर साइड
1: रियलाइजेशन भी हो सकता है अदर साइड को, कि अंदर से तो अच्छा आदमी.
0: एक्चुअली वो रियलाइजेशन तभी आएगी जब दी अदर साइड इज सेंडिंग वेरी पावरफुल एनर्जी, क्योंकि तब मुझे आपके अंदर की अच्छी चीजें दिखने क्यों लगेंगी, क्योंकि वहां से एनर्जी बहुत क्लीन आने लग गई है.
1: अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो या कुछ गलत समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं उसको आपको प्यार भेज भेज के ब्लेसिंग भेज के दुआएं भेज के ठीक कर सकता हूँ रिलेशनशिप?
0: एब्सोल्युटली.
1: बिना बात किए?
0: बिना बात किए. बातों से तो बहुत रिश्ते ठीक होते भी नहीं है.
1: तो क्या करूँ मैं?
0: क्योंकि बातों में क्या होता है, अंदर कुछ भी हो सकता है, बातें बहुत मीठी होती हैं.
1: क्या इसके लिए मेडिटेशन का समय ढूंढे?
0: मेडिटेशन का समय तो ढूंढे ही, लेकिन फिर क्या होता है, मेडिटेशन के टाइम तो हम सपोज 5 मिनट, कितनी देर एक सोल के लिए कितना सोच पाएंगे? 5 मिनट बैठेंगे, लेकिन बाकी 24 घंटे जब भी वो याद आते हैं या जब भी उनसे रिलेटेड बात कोई याद आती है, और अगर वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन, यू नो सपोज आप और मैं बैठ के एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते अगर हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव की तरफ जाने लगे, लेकिन वो तो ऐसे हैं, उस दिन ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, स्टॉप. नॉट अलाउड. आई एम नॉट अलाउड टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन. मुझे ये वाला चिंतन नहीं करना है, क्योंकि आजकल मैं कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ?
1: प्रोजेक्ट बीइंग ब्लिस.
0: यस, एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली विद दैट वन सोल, यू नो, जहाँ पर एक स्ट्रांग अंडरकरंट चल रहा है, या जहाँ मुझे थोड़ी सी मेहनत करके उस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना है.
1: सिस्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है. कैन वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड?
0: डेफिनेटली.
1: थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी, आज पियो हंसके दो घूंट सोम रखे, ये साल भर इसका नशा रहेगा।
0: और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे सदा रहेगा,
2: जो आज हंसे सदा

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब

0: बहुत श्योर, अभी किए जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

سارا عالم جل جائے تو نہیں بس اور نہیں تم کے پیارے اور نہیں بس

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते, मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ और हमारा आज का विषय है योग। हाँ, योग क्या है? हाँ, तो आज योग के बारे में ही हम बातें करते हैं। ऐसे तो प्रकृति के बने हुए बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन सबका रिलेशन कहीं ना कहीं है। जैसे प्रकृति के बने हुए सभी पदार्थ क्या परमाणुओं के समूह के बने हैं, यद्यपि हमें इन आंखों से ऐसा प्रतीत होता है मानो वैज्ञानिक बताते हैं कि ये परमाणु गतिमान है, स्थिर नहीं है। इस दृष्टिकोण से हर एक मानव देह भी असंख्य परमाणुओं से बनी है और वे जो है एक तीव्र गति से प्रकंपित हो रहे हैं। यूं मानिए कि परमाणु स्वयं ही अपने से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, न्यूट्रॉन आदि अंशों से बने हैं। परंतु हम मोटे तौर पर अगर ये मान लेते हैं कि जितने भी शरीर हैं वे अगणित परमाणुओं के बने हैं, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे भी इस नियम का अपवाद नहीं है। उनके शरीर भी हमारे देह ही की भांति परमाणुओं के समूह थे। देखने को तो शरीर की एक ही अविच्छिन्न सत्ता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में यह छिछला सा है और परमाणुओं के बीच असंख्य अत्यंत न्यून रिक्त स्थान है तथा ये परमाणु प्रतिमान है। अतः किसी भी दैहिक आकृति पर, चाहे वह किसी देवता की आकृति हो या किसी महान पुरुष की, एकाग्र करना निरर्थक है, क्योंकि उनका शरीर एक है ही नहीं, वह तो असंख्य परमाणुओं का बना हुआ है। पुनश्च वे परमाणु तो स्वयं भी अस्थिर हैं, चंचल हैं, गतिमान हैं। अतः जो भी जो चंचल है वह अनिल पर मन की एकाग्रता कैसे हो सकती है? हाँ, योग का मतलब समझ में आना और योग लगाना। अगर हम चाहते हैं कि हम किसके साथ योग लगाएं, अगर हमें इसके भी समझ नहीं है तो योग का मतलब क्या है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपसे आकर फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और आगे की चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है योग। यहाँ ध्यान रखना है कि प्रकृति के बनाए हुए जितने भी सभी पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील हैं। हाँ, वे क्षण-क्षण पल-पल घटते बढ़ते हैं या बदलते टूटते रहते हैं। ये सभी क्या है? नश्वर है। अंत में क्या होता है? वे इस रूप में न रह कर नष्ट हो जाते हैं और उनके तत्व अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं। आज किसी शिशु का शरीर छोटा है तो एक वर्ष के बाद वह बड़ा हो जाएगा। आज यदि कोई देह पतली है तो दो वर्ष के में भी वो मोटी हो सकती है। इस प्रकार जो सदा परिवर्तनशील है और आखिर नश्वर है आखिरी में, तो उसे आधार बनाकर योग साधना का क्या अर्थ है? उसे योग कैसे लगा सकते हैं? योग तो मन के जो स्थिर अथवा बुद्धि को अपने ही लक्ष्य में स्थिरता का नाम है। अतः योग तो उससे लगाना है चाहिए जो स्वयं स्थिर है वो, वरना परिवर्तनशील हो जाएगा। तो हमारा योग का मतलब क्या होता है, इसे समझना हमें बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं मनुष्य का जो रहन सहन है, हाँ, वो जीविकोपार्जन जो है, उनके साधन जो भी रहने की बहुत तीव्र गति से बदलते जा रहे हैं। विज्ञान के इस तीव्र देवी वेगी जो विकास के मनुष्य हैं, वो भौतिक सुख सुविधा और मनोरंजन के अनगिनत साधन दिए हैं। फलतः मनुष्य जो है वैज्ञानिक साधनों पर अधिक निर्भर करने लगा है। उसकी आवश्यकताएं तथा प्रलोभन के विषय भी अधिक बढ़ गए हैं, जिसके जिससे उसके जो मस्तिष्क पर अभूतपूर्व दबाव है, इस दिमागी थकावट के हालत जो है में मनुष्य क्या कर सकता है? दैनिक कार्यों में जो निर्णय लेता है वे भी ऐसे त्रुटिपूर्ण होते हैं कि वे उनसे और समस्याएं खड़ी हो जाती है तथा वह और उलझ जाता है। यह हाल न केवल मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से है, बल्कि आज देश विदेश अंतर्देशीय में भी स्थित है। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि योग लगाना किससे है, योग करना किससे है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान और अतीत में सबसे जो मुख्य अंतर यह है कि आज हर मानव के मन में तनाव सा तना हुआ है और शहरों का भी यही हाल है। शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहर चारों ओर जो है चारों ओर फैल रहे हैं और इनमें जो मोटर कारों की ओपों और दूधों कारखानों की जो खड़खड़, स्कूटरों की आवाज इत्यादि जो है कर्कश ध्वनि और बड़े बड़े बाजारों में अनियंत्रित भीड़ का ऐसा शोर है जो मनुष्य की नस नस नाड़ियों में इतना बुरा प्रभाव डाल रहा है कि वह सारा दिन चिड़चिड़ापन और थकावट अनुभव करता है। पहले ना तो कभी इतने बड़े शहर थे, ना यातायात के ऐसे मतलब साधन थे, ना इतने कारखाने थे और ना ही इतना शोर था। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए कुछ सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योग। योग की जो अभिलाषी है वो कहते हैं हम आत्मा का परमात्मा से मिलन मनाना चाहते हैं। उनकी यह अभिलाषा सच्ची और सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इसके लिए साथ ही उन्हें क्या करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए कि परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है। आज बहुत से लोग हैं, हाँ आज बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा है, इच्छा रखते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में तो कोई अंतर नहीं है, बल्कि वे दोनों तो एक हैं। एक ओर तो वे परमात्मा को शिव मानते हैं और दूसरी ओर शिवोहम कहते हैं, तो इसका स्मरण करते रहते हैं। इस प्रकार उनके अपने ही मंतव्य परस्पर विपरीत हैं। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर प्रभु मिलन कैसे कर सकते हैं? मिलन तो किन्हीं दो में होता है ना, किसी संबंध के आधार पर होता है। मिलन का अपना एक विशेष जो है सुख होता है। जब कोई बिछड़े हुए प्रेमी मिलते हैं, हाँ, तो उनके हृदय भी उनसे मिलकर अपने में गदगद हो जाते हैं। कई प्रेमी जो होते हैं, कई प्रेमियों के नैनों से तो मिलन के क्षणों में प्रेम की मोती झड़ने लगते हैं और अन्य कई प्रेम से पुलकित हो उठते हैं और उस मिलन के आनंद में खो जाते हैं। वास्तव में पारंपरिक संबंध का बहुत महत्व है, जिसे कई लोग यथारूप नहीं जानते। संबंध ही संसार के सारे व्यवहार एवं व्यापार का संचालक है। माता अपने पुत्र के साथ अपने संबंध से उत्पन्न सहज स्नेह अथवा वात्सल्य के कारण ही उसकी सेवा में, उसके पालन पोषण में लगी रहती है। सखा अपने सखापन के संबंध के कारण ही अपने दिल का सारा हाल बता देता है, जो वह अन्य जनों से गुप्त रखता है। पति पत्नी के साथ अपने विशिष्ट संबंध के कारण ही उसे अपना स्नेही भाजन बनाता है तथा उसके लिए वस्तु वस्त्र की व्यवस्था करने में जुट

जाता है। इन संबंधों के कारण ही मनुष्य सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, भूख प्यास आदि को सहन करता है। ये संबंध ही मनुष्य में एक दूसरे के लिए उत्सर्ग एवं सेवा की भावना पैदा करते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो हमारा आज का विषय है योग। यहाँ पर सभी जानते हैं, अध्यात्म में ये भी कहा जाता है कि ये जाना बहुत आवश्यक प्रश्न है कि परम आत्मा के साथ आत्मा का क्या संबंध है। यह मालूम होने से विषय का महत्व ठीक समझ में आता है। हर एक योगाभिलाषी को मालूम होना चाहिए कि परमात्मा आत्मा का परम पिता है, वह उसकी माता भी है, उसका शिक्षक और सदगुरु भी है। आत्मा चिरकाल से उससे बिछड़ी हुई है। अब क्या अपने उस सर्व संबंधों से मिलन मनाना ही तो योग है? स्वयं ही को शिव अथवा आत्मा ही को परमात्मा मान लेना तो योग का विपरीत भाव है। परमात्मा के साथ अपना संबंध मनाने में अपना संबंध जो मानते हैं, संबंध ही को मानने से ही उसके प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होता है और प्रेम ही तो मन को मग्न करने एवं जोड़ने का साधन है। अतः हर एक योगाभ्यासी जो होते हैं, हर एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस सत्य

का मनन करते हुए इस भाव में, हाँ इस भाव में लवलीन हो कि परमात्मा हमारा परम प्रिय परम पिता है, वह हमारी ममता भरी माँ है और वही हमारा परम मित्र भी है तथा अविनाशी शिक्षक और सद्गुरु भी है। परमात्मा के साथ हाँ माता पिता का संबंध होने से ही तो हमें उनकी ईश्वरीय संपत्ति पवित्रता और शांति आदि की प्राप्ति होगी। उसके साथ शिक्षक विद्यार्थी का संबंध जोड़ने से ही तो हमें उससे क्या होगा, ईश्वरीय विद्या का लाभ होगा और मार्गदर्शन मिलेगा हाँ, तथा गति और सदगति प्राप्त होगी। इन संबंधों के प्यार में हाँ, पगे रहना तथा इनकी याद का रस लेते रहना ही योग है। तो हम समझते हैं योग का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध, परमपिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जब जुड़ता है तो यही होता है योग। तो आज का कार्यक्रम हम इसी के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन है

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं मीता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: करत करत अभ्यास के लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, पंकज, दृष्टि, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, उन्नति।
2: और फिर मिस ने कहा, चलो तुम खड़े होकर सुनाओ कि तुमने छुट्टियों में क्या किया।
3: फिर तुमने क्या बताया?
2: क्या बताती, तुम्हें तो पता ही है कि सबके सामने से एक क्लास में बोलने में मैं कितनी झिझकती हूँ।
4: ग्लोसोफोबिया।
1: क्या क्या?
4: ग्लोसोफोबिया ये होता है पब्लिक स्पीकिंग का भय।
5: पर ये तो किसी में भी हो सकता है, मतलब ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सबके सामने
1: जैसे स्पीच जैसे देने में भय लगता है।
6: हाँ वो तो है, मुझे भी लगता है, टांगे कांपती हैं, दिल जोर से धड़कता है, हाथ पैर ठंडे से हो जाते हैं, पसीना आता है माथे पे, पर कुछ देर बाद फिर ठीक हो जाता है।
7: मुझे भी
2: और मुझे तो है ही।
4: अरे बस बस, पता है कहते हैं मृत्यु से डरने वालों की संख्या उनसे कम है जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। पर मेरा ये मानना है कि किसी भी भय को भगाया जा सकता है, उसे ओवरकम किया जा सकता है।
8: कैसे कैसे?
9: बताओ दीदी।
10: क्यों तो मुझे पढ़ने की बात है दीदी।
4: बताती हूँ, पहले आज एक गेम खेलेंगे।
1: इसके बाद जरूर बताना।
4: ठीक है, आज हम सब अपनी अपनी 10 खूबियाँ बताएंगे।
2: खूबियाँ?
4: हाँ, अच्छाइयाँ, प्लस पॉइंट्स।
2: मेरे में तो कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ।
4: क्या मम्मी पापा तुम्हें कुछ भी करने को कहे तो तुम मना कर देती हो, उनका कहना नहीं मानती?
2: नहीं, ये मैं कोशिश करती हूँ, कभी ना हो माँ बाबूजी की आज्ञा का पालन तो मुझे एक प्रार्थना जैसा लगता है।
4: यानी माता पिता की आज्ञा का पालन का गुण तुम में है, मानती हो?
2: हाँ ऐसा तो है, पर
4: यही संदेश मैं इस खेल द्वारा तुम सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। ऐसे कितने ही गुण हैं जो हम सब में भरे हुए हैं, पर हमारी नज़र उन पर पहुँचती ही नहीं।
3: मतलब हम उन पर ध्यान ही नहीं देते?
4: बिल्कुल, बस ये ही सोचते रहते हैं, हम में ये नहीं है, हम में वो नहीं है, हम यह काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। अरे भाई, कभी अपनी अच्छाइयों पर भी ध्यान दो।
1: दीदी याद आया फिर से, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
4: गुड आइडिया, चलो इस खेल को खेलने से पहले इस प्रार्थना को गा लेते हैं।

0: ये तो एक प्रकार से आत्मविश्वास को बढ़ाने का तरीका हुआ।
1: और क्या, अपने बारे में सकारात्मक ढंग से सोचना, अपने ताकतों को याद करना, उन पर विचार करके फिर अपने दुर्बलताओं को दूर करना।
2: पर इसका तो मतलब यह हुआ कि हमें अपनी दुर्बलताओं का भी ध्यान होना चाहिए।
3: मतलब जैसे हम अपनी ताकतें गिन रहे हैं वैसे दुर्बलताएं भी गिननी चाहिए।
0: पर मैं तो कई बार दुर्बलताओं को गिनने में गड़बड़ कर देता हूँ।
3: क्या मतलब?
2: जैसे मैं सोचता हूँ, नहीं ये दुर्बलता मुझ में नहीं है। जैसे वो गाना है ना,

0: मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ। मैं ये मनवाना चाहता हूँ, मान जाए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता।
1: यानी इस खेल की सबसे बड़ी जरूरत है बिल्कुल सच्चाई, दूसरों से तो है ही अपने आप से भी। तो चलो शुरू करें।
2: दीदी पहले सिर्फ 5-5 से शुरू करते हैं, 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ।
3: हाँ, ये ठीक है।
1: चलो शुरू करते हैं।
2: पहले आप है दीदी।
1: ओहो, तुमने तो मुझे ही फंसा दिया। अच्छा चलो शुरू करते हैं। पहले 5 अच्छाइयाँ। सोचने दो, बताती हूँ। मैंने भी बड़े दिनों से नहीं सोची। तो मत अब तुम सब। हाँ मुझे कुछ भी सीखना हो तो मैं बस उसके पीछे पड़ जाती हूँ और सीख के ही दम लेती हूँ।
2: मतलब आप बहुत पक्के इरादे वाली हो।
1: वाह, क्या एनालिसिस है।
4: करेक्ट।
1: मुझे झूठ बोलना बहुत ही बुरा लगता है। कभी बहुत मजबूरी में, जैसे किसी का दिल ना टूटे या कोई मुसीबत में हो और मेरे चुप रहने से उससे बच रहा हो, तो तभी तो बोल ही देती हूँ मैं। पर अच्छा

0: नहीं लगता।
1: मतलब आपको सच्चाई पसंद है।
0: एक और एनालिस्ट। इससे मुझे याद आया कि मैं सच्चाई पसंद के साथ साथ सफाई पसंद भी हूँ। आसपास कूड़ा करकट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कितने हो गए? मैं धार्मिक हूँ, ईश्वर में पक्का विश्वास रखती हूँ और मैं इसे अपना सबसे बड़ा गुण या बल या तो फिर ताकत या कुछ भी कहो मानती हूँ। तो सब में विश्वास रखना, ये भी गुण मुझ में अपने आप ही आ जाता है।
2: इसका मतलब है कि अगर कोई कहे कि मुझ में सच्चाई का गुण है तो निर्भयता का गुण भी होगा ही, क्योंकि सच्चाई के लिए निर्भय होना जरूरी है और निर्भय होने के साथ साथ मनोबल का सशक्त होना। और फिर
3: इसका मतलब अगर हम अपनी अच्छाइयाँ गिनने बैठे तो कितनी और सामने प्रकट हो जाएंगी जो हम जानते ही नहीं थे।
1: ये तो बहुत अच्छा होगा ना।
4: शायद दीदी के इस खेल का यही महत्व हो, अपनी छिपी हुई अच्छाइयों को पहचानना।
0: हाँ, और बुराइयों को देखने से या कमजोरियों को देखने का भी यही मकसद है कि उन्हें ढूंढना और उन पर विजय पाना।
5: पर कई बार तो अपनी अच्छाइयों को गिनते गिनते हमें अपनी बुराइयों को खत्म करने के रास्ते भी मिल सकते हैं।
0: जैसे अगर मैं दृढ़ निश्चय हूँ तो किसी भी बुराई का अंत करने का निश्चय कर लूँ तो सब हो सकता है ना।
6: ये तो बड़ा अच्छा खेल है, पर दीदी आज हम सब अपनी अपनी पांच पांच अच्छाइयां ही बताएंगे।
0: चलो ठीक है, अपनी बुराइयों का मनन तुम सब खुद करना और एक डायरी में लिख लेना और खुद ही सोचना उन्हें कैसे दूर करना है। अच्छा चलो शुरू करते हैं।
5: दीदी पहले मैं अपनी अच्छाई बताऊं?
0: हाँ हाँ बताओ।
5: मैं बहुत हेल्प करता हूँ सबकी, और ये पहली अच्छाई हुई। दूसरी अच्छाई ये है कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, और अपनी मम्मी की मैं बहुत मदद करता हूँ सफाई करने में, और हमेशा अपने दिनचर्या के अनुसार चलता हूँ। और पांचवी अच्छाई यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, जैसे इसने अपनी अच्छाइयाँ बताई वैसे तुम सब भी बारी बारी बताओ।
3: दीदी अब मैं बोलूँ?
0: बोलो।
3: मेरी पहली अच्छाई ये है कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक लाता हूँ, और दूसरी मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरी चौथी अच्छाई ये है कि मैं खेलता भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरी पांचवी अच्छाई ये है कि मैं रोज सफाई रखता हूँ घर की।
0: बहुत अच्छे, अब दूसरा कौन आएगा?
2: दीदी मैं।
0: हाँ बताओ।
2: मैं अपने से बड़ों का हमेशा आदर करती हूँ, मैं हमेशा लोगों की मदद भी करती हूँ, मुझे सच बोलना बहुत पसंद है, और मैं एक्सरसाइज रोज सुबह करती हूँ, और मुझे गाना गाना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह, ये तो बहुत अच्छी खूबियाँ है। देखा, धीरे धीरे तुम सब अपनी खूबियाँ बता रहे हो, खुद पहचान रहे हो। चलो अब दूसरा तीसरा कौन है? यश अब तुम बताओ।
1: मेरी पहली अच्छाई है मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ, और मेरी दूसरी अच्छाई है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, और स्कूल में मैं अपनी क्लास में। मेरी तीसरी अच्छाई है कि मैं मेरे स्कूल में हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेता हूँ, और मेरी चौथी अच्छाई है कि मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, और मेरी पांचवी अच्छाई है कि मैं शाम में अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाता हूँ।
0: चलो यश ने तो अपनी अच्छाइयाँ बता दी, अब चलो आदि अब आप अपनी अच्छाइयाँ बताओ।
4: मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करता हूँ, क्लास में भी अच्छे रैंक्स लाता हूँ, और चारों सफाई रखता
0: हूँ। ये तो बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। चलो सैंडी अब आप बताओ।
7: मेरी पहली अच्छाई कि मैं घर पे मम्मी पापा की हेल्प करता हूँ, और दूसरी अच्छाई कि मैं कोई भी काम समय पे करता हूँ, और मेरी तीसरी अच्छाई कि मैं क्लास में मेरी मैम है वो मेरी कोई भी काम मुझे ही बोलती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर काम समय पे करता हूँ, और चौथी अच्छाई कि मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ, और पांचवी अच्छाई मैं हर गेम में पार्टिसिपेट करता हूँ।
0: ये भी बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। चलो पंकज अब आप बताओ।
8: मेरी पहली अच्छाई ये है मैं हर स्पोर्ट में आगे रहता हूँ, और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और दूसरी अच्छाई ये है कि मैं अपने पापा की हेल्प करता हूँ बिजनेस में, और तीसरी अच्छाई है कि मैं अपने घर पे भी मम्मी पापा की छोटे मोटे कामों में हेल्प करता हूँ, चौथी अच्छाई ये है कि मुझे गाना पसंद है और

0: गाता हूँ। मेरी पांचवी अच्छाई है कि मैं कुछ भी नया सीखने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ।
1: देखा, सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं, अलग अलग अच्छाई है,
2: वो सब ठीक है। पर दीदी, आपने कहा था कि आप हमें डर को जीतने का तरीका बताएंगे।
1: किसी भी डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना।
3: हैं? अच्छा।
1: हाँ, जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है उसे
3: बार बार पब्लिक में बोलने का मौका देना चाहिए, यानी प्रैक्टिस।
1: जी हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलते पड़े निशान।
4: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
5: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माय चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
4: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुरहुतान सुरह के फिल्म में हम कहते हैं बेसुरा है एंड म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो। तो वो सुरीली इतनी है कि उनके चक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना नहीं।

मुझे तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ, जाती हो तो जाओ पर जाओगे कहाँ, बाबू जी तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ।

फकीरे चल रे अमीरन टक टक टक पक चल रे फकीरे दिबी चक दिबी चक धीरे धीरे बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी बिड़ी मेरे ओ बंदरिया अपने बंदर से झगड़।

यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

के कहाँ चली, ओ मेरी चंपा कली। पलट ए पलट ए पलट, तेरा ध्यान किधर भाई। रूठ के कहाँ चली, ओ मेरी चंपा कली। कब तलक फिरूंगा मैं इस तरह गली गली, तेरे बिना मेरे दिल की दिल में रही जाए। हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय। तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय। यूँ शुरू हुआ है ये

ए तुसी ग्रेट जी, दिल चुरा के चल दिए वहाँ क्या कमाल है, चोर जैसी हरकतें मोर जैसी ढाल है, माल भी चुराए और आंख भी दिखाए। यूँ शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय।

जाते हैं तो जाइए, हाथ न मलिए जनाब, होंठ न चबाइए, बेसगर हो प्यार क्या है तुम न समझ पाए। हाय हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, तेरा यूँ नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूँ शुरू हुआ है ये फसाना।

मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, ये मैं हूँ तुम्हारे दम से। यू टेल मी समथिंग एंड आई टेल यू समथिंग, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया ये तुम्ही ने सिखाया, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच मच। सच सच सच ओ डियर, सच सच आई लव यू वेरी मच।

0: गार्डन गुलाब है दोनों खिलके, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा तू चमन दिल के। गली उल्फत की ये गुल उल्फत का, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच वो डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। Let the people talking, let the people talking, हम रॉक रॉक रॉकिंग, न मान किसी का कहना। यू यू भी अकेली एंड आई आई भी अकेला, तू साथ हमारे रहना। पीछे पीछे आना रुक मत जाना, आई वॉन्ट यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। सच सच सच ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी।
1: ओ डियर डियर

रहो झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूम बन के घूमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेके